मीडियम वेव 305.8 एक मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। आज गुरुवार है, शक्सुमत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026, 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में

0: होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का शुभारंभ इस मातृभूमि वंदना से।

समूह स्वर में ये थी नारायण लाल परमार की देशभक्तिपूर्ण रचना वंदना में लीजिए अब सुनिए शंकर महादेवन के स्वर में संत सूरदास का भक्तिपद।

शंकर महादेवन के स्वर में संत सूरदास का भक्ति पद अभी आपने सुना। आइए अब सुने सुरेश वाडकर के स्वर में नादान की भक्ति रचना।

अभी आपने सुना सुरेश वाडकर के स्वर में नादान का लिखा ये भजन। वंदना में आइए अब सुनिए हरिओम शरण के स्वर में ये भजन।

0: इस भजन के साथ ही हमारी आज की वंदना अब संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। आइए अब सुनें चिंतन। आलेख श्री रमेश चंद्र मेहरोत्रा का है।
1: स्वस्थ का मतलब है जो स्वयं में स्थित हो, और स्वास्थ्य का मतलब है स्वस्थ रहने की स्थिति। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य मन और शरीर दोनों दृष्टियों से उत्तम होता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन की पहली आवश्यकता रहता है, जिसके अभाव में मनुष्य रोगग्रस्त कहलाता है। पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ रहने के लिए जितना संतुलित और सुपाच्य भोजन चाहिए, उतना ही शरीर की आवश्यकता के अनुसार आराम चाहिए। पर बात यहीं पूरी नहीं हो जाती। तीसरी आवश्यक वस्तु है कसरत, जो खेलकूद, आसन, प्राणायाम, टहलाई घुमाई आदि किसी भी रूप में हो सकती है। कहने की जरूरत नहीं है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात आवश्यकता से अधिक होना हर क्षेत्र में मना है। बीमार न पड़ना एक नियामत है, लेकिन यदि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर और वैद्य कहाँ जाएंगे? दरअसल आजीवन पूर्णतः स्वस्थ रह पाना बिरलों का ही काम है। उसके लिए हमें हमेशा और बेहद सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। 100 में 100 नंबर लाना आसान काम नहीं होता। मान्यता अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य का जीवन काल 100 वर्ष स्वीकार किया जाता है, जिसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। विविध तीर्थों का सुखदायी भ्रमण करना और चारों धामों की जीवंत यात्राओं को विधिवत संपन्न करना स्वस्थ जीवन का ही परिचायक है। आजकल वृद्धाश्रमों का महत्व बढ़ गया है। कारण अज्ञात नहीं है, वृद्ध होना मजबूरी है, इससे कोई नहीं बच पाता। लेकिन वृद्धावस्था में भी स्वस्थ रहा जा सकता है, यद्यपि उसके मापदंड युवावस्था की स्वस्थता के मापदंडों से भिन्न रहते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति अपने दीर्घ अनुभवों के आधार पर कितनी ही बार युवाओं पर भारी पड़ते हैं। शारीरिक बल से न सही, वे अपने मन के बल से अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। ठीक ही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नौकरी से रिटायर होने की उम्र 60 और 62 रहती है, जिसे 65 करने की मांगें चलती रहती हैं। कहा जाता है कि इसके आगे आदमी सठिया जाता है और कार्यक्षमता की दृष्टि से उसका शरीर ढीला पड़ता जाता है। लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कार्य करने वाले लोगों के लिए रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। व्यापारी वर्ग भी पर्याप्त लंबी उम्र तक अपना व्यापार संभाले रखता है। सिद्ध है कि उम्र चाहे कुछ भी हो, मन और शरीर का स्वस्थ रहना कामधाम और सही जीवन यापन की दृष्टि से सर्वोपरि है। बड़े लेखकों की लेखनी समाज हित में उम्र के नाम पर रुकने का नाम ही नहीं लेती। बुजुर्गों द्वारा किया गया हमारा पालन पोषण आदि हम पर उनका ऋण होता है, जिसे चुकाना हमारा कर्तव्य होता है। यदि हम उन्हें स्वस्थ रखते हैं तो अपना ही

0: स्वार्थ पूरा करते हैं, क्योंकि उनका अर्जित और संचित ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है।
1: चिंतन अभी आपने सुना, आलेख श्री रमेश चंद्र मेहरोत्रा का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

भरत के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधुमत, लोकमत, राजनीति तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया, किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्री राम के प्रेम की रीति देखी है। उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

0: प्रसारण 6:45 मिनट हुए हैं। कृषि चर्चा में आज ट्रैक्टर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें, इस विषय पर जानकारी दी है डॉक्टर आदित्य सिरमौर ने।
1: आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रैक्टर खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ट्रैक्टर खरीदने से पहले हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे कि क्या ट्रैक्टर मुझे किराए पे नहीं मिल पा रहा है या समय पे नहीं मिल पा रहा है। यदि मैं जब अपना खुद का ट्रैक्टर खरीदूंगा तो क्या उसे मैं अपने इस्तेमाल के लिए यूज करूंगा या उसे मैं रेंट पे भी चलाऊंगा। क्या मैं कृषि कार्य के अलावा उसे दूसरे काम पे भी लगाऊंगा, जैसे कि लेवलिंग हो गई, थ्रेसिंग हो गई। और हमें यह भी कैलकुलेट करना जरूरी है, जब आप ट्रैक्टर रेंट पे लेते थे तो कितना खर्चा आता था और जब आप ट्रैक्टर ले लिए हैं तो उसमें कितना खर्चा आ रहा है और कब आपका पैसा भरपाई हो जाएगी और आप मुनाफा कमाने लगेंगे। इन बातों का ध्यान रखकर ही आपको ट्रैक्टर खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए। यदि किसान भाई ट्रैक्टर खरीदने का यदि डिसीजन ले ही लिए हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहला प्रमुख बात है कि ट्रैक्टर किसान भाइयों को कितने HP का ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। कि सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि उसके पास कितना एकड़ की खेती के लिए वह ट्रैक्टर खरीद रहा है। 5 एकड़ की यदि खेती है तो 30 से 35 HP के ट्रैक्टर का चयन करें। यदि 10 एकड़ की खेती है तो 40 HP तक के ट्रैक्टर का चयन लें। यदि उसे 20 एकड़ से ज़्यादा की खेती करना है तो 50 HP के ऊपर तक के ट्रैक्टर का चयन करें। उसकी जो ज़मीन है वो हार्ड है तो ज़्यादा HP का ट्रैक्टर लें। यदि सॉफ्ट है तो कम HP के ट्रैक्टर लेने से भी काम हो जाएगा। और किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना है कि वो ट्रैक्टर से कौन कौन से उपकरण चलाएंगे, उन्हें कौन कौन से उपयोगों में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि किसान भाई यदि ढुलाई का कार्य कर रहे हैं तो 30 HP तक का ट्रैक्टर काम कर जाएगा, पर यदि चढ़ाव क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो 50 HP तक के ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी प्रमुख बात है कि ट्रैक्टर 2-व्हील ड्राइव लें या 4-व्हील ड्राइव लें। किसान भाई बहुत इनके मन में बहुत जिज्ञासा रहती है कि हम 2-व्हील ड्राइव लें या 4-व्हील ड्राइव लें। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा, आधुनिकीकरण के ज़माने में जब जो उपकरण आ रहे हैं ट्रैक्टर के अटैच उपकरण, वो हैवी आने लगे हैं, फीचर से भरे हुए आ रहे हैं, तो ऐसे समय में 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना उपयोगी है, जिसमें चारों चक्के में पावर पहुँचती है, पकड़ मजबूत बनती है, स्लीपेज की समस्या कम रहती है, जो पहाड़ी क्षेत्र में भी आसानी से काम करती है, पडलिंग का काम कर रहे हैं, बुवाई धान का बुवाई के लिए आप मचाई का काम कर रहे हैं तो भी ये अच्छे से कार्य करती है। यह 2-व्हील ड्राइव के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा जरूर होता है, पर ये आपके समय के साथ आपका पैसा पूरा वसूल करके देगा। तीसरी बात मैं यदि करूँ तो कौन से कंपनी का ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो भारतवर्ष में बहुत सारी कंपनी के ट्रैक्टर उपलब्ध हैं, तो हमें ऐसा कंपनी का चयन करना चाहिए जो ट्रैक्टर बनाने में जिसको महारत हासिल हो, जिसकी सेल्स एंड सर्विस अच्छी हो, जिसके पार्ट्स आसानी से मिल पाए, जिसके पार्ट्स रिलायबल हो, जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो। इन सभी बातों का किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर खरीदने से पहले। चौथा प्रमुख बात है उस ट्रैक्टर का फ्यूल का कंजप्शन कितना है, ईंधन की खपत कितनी है। ईंधन की खपत कम होगी तो निश्चित ही किसान भाई अपना पैसा बचा पाएंगे। जो उसकी उठाने की क्षमता होती है ट्रैक्टर की, जिसे हम लिफ्टिंग कैपेसिटी कहते हैं, आजकल हैवी इंप्लीमेंट आ रहे हैं जिसका वजन 2000 से लेकर 2500 केजी तक का रहता है, तो हमारी लिफ्टिंग कैपेसिटी कम से कम 2500 केजी तक की होनी चाहिए। ज़्यादा स्पीड वाले गियर इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की डेट में 48 फॉरवर्ड 48 रिवर्स तक के गियर आ रहे हैं। इसका इस्तेमाल करने से हमारी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। ड्यूल क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं, गियर बॉक्स हम चयन कर सकते हैं। यदि 50 HP तक के हम ट्रैक्टर ले रहे हैं तो हमें पार्शियल सिंक्रोमाइज टाइप गियर बॉक्स लेना चाहिए। यदि 40-45 HP का यदि ट्रैक्टर यदि आप चयन कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टेंट मेस टाइप का गियर लीजिए। CRDI टाइप का यदि आपका बजट, आपका जेब यदि अलाउ करता है तो आप CRDI टाइप का इंजन लें, जिसे हम कहते हैं कॉमन रेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंजेक्शन, जिसमें पावर अच्छा मिलता है, टॉर्क भी अच्छी मिलती है और फ्यूल की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी रहती है। नमस्कार किसान भाइयों।
0: कृषि चर्चा में अभी ट्रैक्टर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें, इस विषय पर जानकारी आपने सुनी, जानकारी दी डॉक्टर आदित्य सिरमौर ने। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 हुए हैं, समय है कार्य

रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में कलाकार थे चतुर सेन और राजेंद्र काचरू। आकाशवाणी की इस संगीतमयी प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। ये है आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल ओवल लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे रात 10:30 से खेल की समाप्ति तक। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर होगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। बच्चों का कार्यक्रम बाल वाटिका सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में। इसमें बेरा के बात होगी पेड़ पौधा धरती के आभूषण आए इस विषय पर। क्रम यहूला जानाओ में श्री सूर्यकांत तिवारी बताएंगे हमर देश मां कैसे होते बारिश। और सुनिएगा लईकमन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फुलवारी और होंगे बाल गीत भी। सुबह 9 बजे प्रगति के सोपान इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अग्रणी जिला प्रबंधक मोहम्मद मोफिस से भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे रमा शंकर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे सुबह 9:45 पर गंगाबाई गेडाम और साथी, शाम 6:30 पर रामशरण वैष्णव और उनके साथी और रात 8:15 पर मदन मेहर और उनके साथी। सुबह 10 बजे होगा गैर फिल्मी गीतों गजलों और कव्वालियों का कार्यक्रम स्वरधारा। इस कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे अनूप चलोटा और कोयल और आशा भोसले। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने सुनिएगा दिन में 11:05 पर। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोकसुधा में दोपहर 12:30 पर सुनिएगा हल्बी गीत। कलाकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ और उनके साथी। शहरी महिलाओं के कार्यक्रम मिलिया में दोपहर 1:30 पर आज की बात होगी जैसा रहे अन्न वैसा रहे मन। क्रम सृजन संसार में सुनिएगा प्रमता ठाकुर की कहानी नामकरण। कुछ बातें कुछ गीत के साथ ही आप सुनेंगे क्रम दीदी की सलाह में रूसी से बचने के उपाय भी। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुनेंगे शाम 5 बजे। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी आज आप सुनेंगे शाम 5:10 पर छत्तीसगढ़ी में। इसमें अपन गोट का विषय होगा गाँव माँ खेल के शुरुआत करण। साथ ही होगा क्रम माटी के आखिर, इसमें सुनिएगा गणेश्वर पटेल का कविता पाठ और होंगे माटी के गीत भी। शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा ये माह के पशुपालन कार्य। शाम 7:30 पर किसानवाणी में क्रम आज की सलाह में डॉक्टर अभय बिसेन बताएंगे कटहल के व्यावसायिक खेती के बारे में। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15 पर। 10:30 पर दोपहर 1:05 पर 2 बजे 2:30 पर शाम 7 बजे रात 8 बजे रात 9:15 पर और रात 10 बजे भी। कही देबे धनी ला संदेश ये रूपक सुनिएगा रात 9:30 पर। लेखक श्री जीवन यदु और प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहन सी रामानी।

0: कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। समाचार पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रच

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पेंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

नमस्कार, रायपुर के सुरीली परिचय धुन के साथ कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तारकेश्वरी, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

श्रोताओं, जुलाई का महीना यानी चंद्र पंचांग के अनुसार आषाढ़ और सावन का महीना, जब चौमासा अपने चरम पर होता है और खूब बरसते हैं काले काले मेघ। हालांकि इस साल अभी तक बारिश की वो तेज बौछार अभी तक महसूस नहीं हो पाई है, फिर भी हम सब इंतजार में हैं कि कब आसमान से बरसती नन्ही नन्ही बूंदों का जादू चले और हमारे तन और मन के साथ धरती भी हरिया जाए और इसी हरियाले मौसम में बारिश ऐसा उत्सव बन जाए जिसके आने से सारा आलम झूम उठता है। और ऐसे में यानी जुलाई के पहले सप्ताह में हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय वन महोत्सव। भारत के हर नागरिक को वृक्षों की महत्ता के प्रति जागरूक करने, वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने, पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सन 1950 में भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने राष्ट्रीय वन महोत्सव की शुरुआत की थी। वन यानी जीवन की अविराम बहती धारा, वन यानी वसुंधरा का हरियाला सिंगार।

श्रोताओं, इस गीत से पहले चर्चा हो रही थी राष्ट्रीय वन महोत्सव की, वनों की। पृथ्वी पर जीवन के आरंभ से ही अपने भोजन और आवास के लिए मानव सहित सभी प्राणी वनों पर निर्भर हैं। वन का मतलब पेड़ों का समूह नहीं है। वन तो तरह तरह के जीव जंतुओं, पक्षियों और कीट पतंगों की आश्रय स्थली है। हम मनुष्यों के जीवन को भी सरल सहज बनाने वाले अनेकानेक उत्पाद, जैसे हर तरह की लकड़ी, प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए कच्चा माल, रबर, फल, औषधियां वगैरह वनों से ही मिलते हैं। वन के पर्यावरणीय फायदों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। ये वन मिट्टी को बहने से रोकते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, वायु प्रदूषण और जल असंतुलन को रोकते हैं और वातावरण के तापमान को नियंत्रित करने का एकमात्र कारगर उपाय हैं ये वन। वनों की उपयोगिता और महत्ता को समझते हुए सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति निर्धारित की गई। इस नीति के अनुसार देश के 33.3% क्षेत्र में वन होने आवश्यक हैं। लेकिन विकास की अपनी असीमित आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए मानव समुदाय ने बिना सोचे विचारे वनों का अंधाधुंध सफाया किया है। सारा विश्व ही वन क्षेत्र में आई कमी के दुष्परिणाम, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक और खनिज संसाधनों का अभाव और जैविक असंतुलन झेलने को विवश है। पर इसमें बदलाव लाया जा सकता है। राष्ट्रीय वन महोत्सव के दौरान स्कूल, कॉलेजों, घर, दफ्तरों और गली मोहल्लों में व्यापक पौधरोपण करके। लेकिन सिर्फ पौधे रोप देने से कुछ नहीं होगा। इन पौधों की तब तक देखभाल, सार संभाल करनी होगी जब तक ये अपनी जड़ें मिट्टी में गहराई तक न जमा ले, कम से कम बारिश के पूरे 4 महीनों तक। यकीनन इतने समय तक इनकी देखरेख के बाद ये पौधे पेड़ बन चुके होंगे और कुछ सालों बाद इन घने पेड़ों के साथ फलेगा फूलेगा भावी पीढ़ियों का भविष्य भी। आइए अपनी वसुंधरा को हम और सुंदर और हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें और कम से कम एक पेड़ लगाएं अपनी धरती माँ के नाम।

श्रोताओं, खेल बड़े ही मनोरंजक होते हैं। कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार का एक शानदार तरीका है, तो कुछ के लिए करियर का बेहतरीन क्षेत्र। जी हाँ, खेल से रोजगार के कई अवसर भी उत्पन्न होते हैं। मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों से लेकर स्टेडियम के बाहर खड़े विक्रेताओं तक, खेल सभी के लिए फायदेमंद है और शामिल होने वाले हर व्यक्ति के लिए भरपूर अवसर और संभावनाएं बना सकते हैं खेल। खेल प्रेमी अपने पसंदीदा खिलाड़ी को मैदान पर खेलते या दौड़ते हुए देखकर रोमांच का अनुभव करते हैं। वे खेल को बेहतर ढंग से समझने और खेल के बारे में अधिक जानने की अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए लाइव कवरेज, खेल रिपोर्टिंग, कमेंट्री और मैच से पहले और बाद के विश्लेषण भी जानना पसंद करते हैं। इसीलिए खेल जगत पर प्रभावी ढंग से रिपोर्टिंग और विश्लेषण करने के लिए खेल पत्रकारों की आवश्यकता होती है। खेल पत्रकारिता एक विशेष प्रकार की रिपोर्टिंग होती है जो खेल से संबंधित समाचारों और घटनाओं पर केंद्रित होती है। खेल पत्रकारों के विविध कौशल को सम्मानित करने के उद्देश्य से हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। जी हाँ, आज का दिन दुनिया भर के खेल पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने और खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना करने के लिए समर्पित है। इस दिन की शुरुआत 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान की गई थी। खेल पत्रकार अपने सटीक कवरेज से पेशेवर प्रमुख खेल आयोजनों जैसे फीफा वर्ल्ड कप या ओलंपिक की बेहतर रिपोर्टिंग, साक्षात्कार और विश्लेषण प्रदान करते हैं। प्रिंट मीडिया यानी अखबार और पत्रिकाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया, टेलीविजन और रेडियो पर खेल पत्रकारिता के ढेरों अवसर उपलब्ध हैं। खेल पत्रकार हमें खेल समाचार

और विश्लेषण प्रदान करने के साथ साथ खेल जगत में उत्पन्न होने वाले जटिल और कभी कभी विवादास्पद मुद्दों को समझने में हमारी मदद करते हैं। खेल पत्रकारिता में समुदायों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है। स्थानीय खेल टीमों और आयोजनों को कवर करके खेल पत्रकार सामुदायिक गौरव और सहभागिता की भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। वे प्रशंसकों को जुड़ने और खेलों के प्रति अपने प्रेम को साझा करने के लिए एक मंच का निर्माण करते हैं। तो जुड़े रहिए खेलों से और सुनते रहिए आकाशवाणी रायपुर, जहां आज रात 10:30 से आप सुनेंगे ओवल लंदन में खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री। पर फिलहाल पेश है ये गीत।

अति आवश्यक रक्त की आवश्यकता है। कृपया शेयर करें। हम सभी ने अक्सर ऐसे संदेश देखे हैं, पढ़े हैं और साझा किए हैं, जब किसी के परिजन को तुरंत किसी मेडिकल इमरजेंसी के चलते रक्त की आवश्यकता होती है तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। अधिकांश लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता होता। किसी दुर्घटना की स्थिति में या गंभीर बीमारी की चिकित्सा में, सर्जरी के दौरान या प्रसव के दौरान रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। रक्त आपूर्ति के लिए अक्सर रोगी के परिजन अस्पतालों और ब्लड बैंक्स के चक्कर लगाते हैं, परेशान होते हैं। भारत में इसी समस्या से निपटने के लिए ई रक्तकोश पोर्टल का निर्माण किया गया है। दुनिया भर में रक्त केंद्र यानी ब्लड बैंक्स स्वैच्छिक रक्तदान पर निर्भर करते हैं। ऐसे भी रोगी हैं जो जीवन रक्षक उपायों के रूप में रक्त आधान पर ही निर्भर हैं, जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल के रोगी। इसीलिए देश में रक्त केंद्रों पर सुरक्षित रक्त की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना बेहद जरूरी है। भारत भर में रक्त बैंक और रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी एक साथ उपलब्ध कराने का एक राष्ट्रीय मंच है ई रक्तकोश। ई रक्तकोश ब्लड सेल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की पहल के तहत विकसित किया गया है। ये भारत में सभी रक्त से संबंधित सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल है। ई रक्तकोश का उद्देश्य एक ही जगह सारी जानकारी उपलब्ध कराना है। इस पोर्टल पर एक मानक अनुरूप केंद्रीकृत रक्त बैंक प्रबंधन प्रणाली, जिसमें कठोर नियम आधारित प्रवर्तन तंत्र शामिल है। ई रक्तकोश नागरिक केंद्रित पोर्टल के अलावा मोबाइल ऐप की तरह भी उपलब्ध है। उमंग, ई अस्पताल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल और सी डैग ई सुश्रुत और ई उपकरण के प्रमुख उत्पादों के साथ एकीकृत है, यानी सारी जानकारियां एक साथ इसी पोर्टल पर हासिल की जा सकती हैं। इस पोर्टल पर रक्त के जरूरतमंद रोगियों के साथ साथ स्वैच्छिक रक्तदाता भी अपना पंजीकरण कराकर समय समय पर रक्तदान कर सकते हैं। तो विकट आपात स्थितियों से निपटने के लिए ई रक्तकोश वेब पोर्टल, एंड्रॉइड मोबाइल ऐप या iOS मोबाइल ऐप की पहल का हिस्सा बने और देश का जिम्मेदार नागरिक होने की अपनी भूमिका का निर्वहन करें। पर अभी आपके मनोरंजन की जरूरत को समझते हुए हमने चुना है आपके लिए ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। और अब नमस्कार रायपुर में कुछ बातें हमारे घर, दफ्तर और लगभग हर भवन की सुरक्षा के बारे में। श्रोताओं, आजकल लगभग हर भवन विद्युत उपकरणों से लैस है। हर घर में पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और कई अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग होता है। इन उपकरणों का सुरक्षित संचालन तभी संभव है जब उनकी अर्थिंग सही ढंग से की गई हो। अर्थिंग वो प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्युत उपकरण के धातु वाले भाग को एक चालक तार के माध्यम से पृथ्वी से जोड़ा जाता है। यदि किसी कारण उपकरण में करंट का रिसाव हो जाए तो करंट इस प्रक्रिया से सीधे जमीन में चला जाता है। इससे बिजली का झटका लगने और आग लगने जैसी दुर्घटनाओं की आशंका काफी कम हो जाती है। सामान्यतः प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग और स्ट्रिप या वायर अर्थिंग का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इनमें पाइप अर्थिंग सबसे अधिक प्रचलित और किफायती मानी जाती है।

इसी का उपयोग अधिकांश घरों और भवनों में किया जाता है। सही अर्थिंग केवल जनहानि से सुरक्षा नहीं करती, ये महंगे विद्युत उपकरणों को भी नुकसान से बचाती है। उचित अर्थिंग शॉर्ट सर्किट, बिजली के उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशन और अन्य विद्युत दोषों के प्रभाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए नए भवन का निर्माण हो या पुराने भवन की वायरिंग, अर्थिंग का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और हाँ, समय समय पर किसी योग्य इलेक्ट्रीशियन से अर्थिंग की जांच भी करानी आवश्यक है। यदि बिजली के उपकरणों में हल्का करंट महसूस हो, स्पार्किंग दिखाई दे या बार बार फ्यूज उड़ने जैसी समस्या हो, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, तुरंत जांच करवाएं। तो श्रोताओं, सही अर्थिंग सुरक्षित जीवन की गारंटी है। थोड़ी सी सावधानी हमें और हमारे परिवार को बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकती है। इस जरूरी बात के बाद अब बारी है एक और गीत की।

और अब सुनिए, बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए रोजगार संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर जनरल बैंकिंग स्ट्रीम में 779 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच निर्धारित है। आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य वर्गों के लिए ₹850 है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क ₹175 निर्धारित किया गया है। चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू देना होगा। लिखित परीक्षा में कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो दो विषय से संबंधित होंगे, अंग्रेजी और प्रोफेशनल नॉलेज। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही इंटरव्यू के पात्र होंगे। यदि आप भी बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक और पात्र हैं, तो 20 जुलाई से पहले बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक और विस्तृत जानकारी इसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो जुट जाइए तैयारी में, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

श्रोताओं, आज के दौर में इंटरनेट संचार और सूचना प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। कुछ साल पहले तक इंटरनेट तक पहुंच को विलासिता का सूचक माना जाता था, पर अब तो इंटरनेट सभी की जरूरत बन गया है। डिजिटल माध्यम लाखों नागरिकों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनकर उभरा है। डिजिटल साक्षरता के महत्व को देखते हुए ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा बनाते हुए इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। इसीलिए इंटरनेट का सही और सुचारू इस्तेमाल करना सीखना भी सबके लिए जरूरी है। भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए ही राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के तहत तकनीकी दृष्टि से निरक्षर वयस्कों को डिजिटली साक्षर बनाने के प्रयास किए गए। डिजिटल साक्षरता इंटरनेट का प्रयोग करने और डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनने के लिए बेहद आवश्यक है। आज प्रिंट माध्यम का दायरा धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों का दायरा बेहद व्यापक है। इन ऑनलाइन जानकारियों को

समझने के लिए डिजिटल साक्षरता जरूरी है। इंटरनेट का इस्तेमाल सीखने के लिए उसी का सहारा लिया जा सकता है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग संबंधी जानकारियां उपलब्ध हैं या फिर किसी जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में डिजिटल साक्षरता के गुर हासिल कर किए जा सकते हैं। बढ़ते डिजिटल साक्षरता के चलते हमारे वे श्रोता जो दूर दराज से हमें पोस्टकार्ड के जरिए अपनी फरमाइशें, तारीफें, सुझाव और शिकायतें भेजा करते थे, वे अब ईमेल का उपयोग करने लगे हैं, जो त्वरित, सस्ता और सुलभ भी है। हमारे अनेक श्रोता हमें इंटरनेट पर न्यूज ऑन AIR ऐप पर दुनिया के किसी भी कोने से सुन रहे हैं। सब जुड़े नई तकनीक, नए संचार माध्यमों से और सब बने डिजिटल साक्षर और आनंद उठाएं जीवन में आ रहे इन नए बदलावों का।

शुद्ध रोटी कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थायी नौकरी पा लेने की चाह हर बेरोजगार युवा में होती है और इसी चाहत में कड़ी मेहनत करते प्रतिभावान और योग्य युवा इसी तरह अपने बूते पर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल देते हैं। कई बार जब कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ बेरोजगार युवाओं को असफलता का सामना करना पड़ता है तब वे अवसाद और निराशा से घिर जाते हैं और उनकी इसी मनोदशा का नाजायज फायदा उठाकर जालसाज ठग बड़े बड़े दावे करके उन्हें नौकरी दिलाने का वादा करके उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। हाल ही में ऐसी कई खबरें पढ़ने सुनने में आई हैं जिनके अनुसार नौकरी दिलाने का वादा करके ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आपका ध्यान भी इस ओर गया ही होगा। असामाजिक तत्वों के लुभावने झांसे में आने से पहले युवा ये जरूर सोचें कि इस तरह नौकरी नहीं पाई जा सकती, क्योंकि हर नौकरी के कुछ तयशुदा नियम और कायदे होते हैं। और ये भी तो सोचिए कि गलत तरीके से नौकरी पाने की चाह में भ्रष्टाचार जैसी बुराई को बढ़ावा देना क्या ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जीवन में नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी का स्थान सबसे ऊपर आता है। इनका कोई विकल्प भी नहीं है। पैसों से खुशियां, मन का सुकून, संतोष या शांति जैसी चीजें खरीदी नहीं जा सकती। तो सफल होने के लिए ठगों के दावों पर नहीं, अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन पर भरोसा रखिए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार रायपुर में आज बस इतना ही। आप सभी को तारकेश्वरी का नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की।

0: सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी।

0: व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गो पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं डूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची

0: इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। दो क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26.

0: बच्चों
1: जय हिंद।
2: बाल वाटिका सुनैया जम्मो नानी संगी मन के स्वागत है आज शीतला दीदी के डहले। नानी संगी हो पेड़ पौधा रुख रही हम सबो बरहे सुखदाई। जम्मो प्रदूषण लहर लेथे देथे हमला जीवन दान। तभी तक कही थे एक ठिन रुखा हो थे दस जन बेटा बेटी के समान। सियान मन के कहे गोटला भुला के अपन स्वार्थ बर जंगल झाड़ी ला काटत जावत हन। थोकिन सोचन के कैसन विकास के रद्दा ला हम मनखे मन अपनावत हन। संगे माँ कल कारखाना के धुंगिया प्लास्टिक हा रुख रही ला बड़ जनावत है। तभे ता कहूँ बाढ़ कहूँ सूखा कहूँ भूकंप जैसन प्राकृतिक आपदा रोज दिनावत है। अभिन तको नहीं चेतेन त हो जही नुकसान बड़ भारी। अभिन तको नहीं चेतेन त हो जही नुकसान बड़ भारी। हमर भुइया के आभूषण है रुख रही एला बचावन संगवारी। बिन रुख रही नहीं बाँचे जिंदगी अब तो मान लेवन। बिन रुख रही नहीं बाँचे जिंदगी अब तो मान लेवन। नान्हे नान्हे पौधा लगा के अवैया पीढ़ी न घलो कुछ ऐसा नारो दे के मौका देवन।

0: माया खापड़े और हेमेन ठाकुर के गाए गीत ला भी सुने नानी संगी हो और ये सुघर गीत था बरसाला आरो देवत रहीस और यही बरसा ले जुड़े है हमार आज के यहूला जानो जेमा श्री सूर्यकांत तिवारी मन बतावत है कि हमार देश में कैसे होते बारिश तो चलो सुननी वार्ता।
1: बाल वाटिका कार्यक्रम के अगोरा करैया जम्मू नाने संगवारी मल्ला सूर्यकांत भैया के जय जोहार। कैसन हो सब्बो जन? मैं जानत हूँ सब्बो जन बढ़िया बढ़िया हो हूँ। काबर के बारिश के मौसम में नाने संगवारी मन के मन हा एक मन आगर रथे। बारिश जब होते तब उमे भीग थे, खेल थे, नाच थे, नहा थे, कागज के डोंगा बना के चला थे।

ओमन ला अपन प्रकृति के जुड़े के मौका मिलते और गाना तको गाथे का गाथे गोल गोल रानी इत्ता इत्ता पानी है ना संगवारी हो। तो आज हमन ह यही विषय में गोड बात करबो। तो हमर देश में ऋतु कैसे बदलते, मानसून काला कैथे, ये बादल कैसे बनते, बरसात कैसे होते, कंसादाई जिला इंद्रधनुष कथन ओमा केठन रंग होते, और सबले बड़े बात ये पानी के ये बरसात के अगोरा मनखे मल्ला तो रहीबे करते, का रूख राई चिड़ई चुरगुन जंगल झाड़ी ला तको ये बारिश के अगोरा रहते। तो यही विषय में विस्तार से चर्चा करबो। तो रेडियो के आवाज़ ला थोकन बढ़ाओ और मोर संग बने रहू, आवो जानथन। तो संगवारी हो, सबले पहली हमन जानबो ऋतु का होते और ऋतु परिवर्तन कैसे होते। बछर के वो बेरा जेमा मौसम के दशा तापमान और जलवायु ह एके बरोबर रथे वही ला ऋतु कहे जाते। हमर भारत देश में छह आने आने प्रकार के ऋतु हवे। पहला हरे बसंत ऋतु जेन हा चैत और बैसाख महीना में आते। दूसर हरे गर्मी ऋतु जेला घाम के दिन तको कथन, ये हा जेठ आषाढ़ के महीना में आते, यही धरी लू तको चलते नौ टप्पा आते। तीसर हरे बरसात ऋतु जेला बरखा ऋतु तको कथन, जेला हमन पानी वाला दिन घलो कथन, यही महीना मा खेती किसानी वाला काम होते। चौथा हरे शरद ऋतु, ये ऋतु कुंवार कार्तिक मा आते, यही महीना ला पानझर तको कथन। पांचवा हरे हेमंत ऋतु, अगहन पूस के महीना मा आते, नवा धान के दिन तको कथन, कोनो कोनो ह यही ला सियारी ऋतु तको कथे। छठवा हरे शीत ऋत जाड़ के दिन, ये है मांग फागुन के महीना में आते, यही महीना में कोहरा देखे ल मिलते, ओस गिरते, सियान मन है यही महीना ला सियार महीना तको कथे। हमन सबो जन पढ़े हन कि हमर धरती है हमर पृथ्वी है सूरज के चारों मुड़ा चक्कर लगाते और संगे संग अपन धुरी में भी घूमत रहते, लेकिन जानथो संगवारी हो पृथ्वी है अपन धुरी में सीधा नहीं है, वो है 23.5 डिग्री झुके हवे। जब ये धरती है सूरज के चारों मुड़ा चक्कर लगात रथे तो एकर झुकाव है कभू उत्तर गोलार्ध कोती तो कभू दक्षिण गोलार्ध कोती होते। तो उही बेरा जेन हिस्सा है सूरज कोती होते वहाँ गर्मी पड़ते और जेन कोती सूरज के अंजोर है नहीं पड़े वहाँ जाड़ के महीना आते। यही बदलाव है का कहलाते संगवारी हो, ऋतु परिवर्तन कहलाते। अब जानथन मानसून के बारे में जेला हमन चौमासा कथन। ये मानसून शब्द है अरब भाषा के शब्द हरे जेखर मायने होते ऋतु मौसम या हवा के रुख में बदलाव। बरखा पानी के संगे संग मौसम के हिसाब ले हवा पानी के चलना है मानसून कहलाते। बछर में दो बार हवा है अपन रुख या दिशा ला बदलते। एक होते दक्षिण पश्चिम मानसून जेन हा अंग्रेजी महीना के जून ले सितंबर तक सक्रिय रथे जेला हमन झनझनिया कथन। एमे का होते ए बेरा धरती के गरम होए ले ओखर ऊपर के हवा घलो गरम हो जाते, जेखर ले धरती के ऊपर कम हवा के दबाव के क्षेत्र बन जाते। अरब सागर और बंगाल के खाड़ी ले नमी ले के नम हवा हा भारत मा वर्षा करते। 70-80% वर्षा यही बेरा होते। और दूसर होते उत्तर पूर्व मानसून जेला लौटत मानसून तको कथन। यह अंग्रेजी महीना के अक्टूबर ले दिसंबर तक सक्रिय रथे। ए बेरा हिंद महासागर के पानी धरती के तुलना में ज्यादा ठंडा रहते, जेखर से समुद्र ऊपर ज्यादा हवा के दबाव बनते, तेखर से ती जाड़ के महीना में पानी गिरते। कहाँ कहाँ पानी गिरते संगवारी हो, ये पानी गिरते तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ कुछ हिस्सा में। अब जानबो बरसात काला कथे। संगवारी हो सबले पहली भाप बनते। अब ये है कैसे बनते, सूरज के गर्मी के सेती तरिया के पानी नदिया के पानी और समुन्दर के पानी है गर्म होकर के भाप बन के ऊपर उड़ाते जेला हमन वाष्पीकरण कथन। और यही उड़ाए भाप है ऊपर में जाके ठंडा हो जाते और नान नान कण असन एक दूसर ले जुड़ जाते जेला विज्ञान के भाषा में संघनन कथन। माने यही कण मन जब एक दूसर ले पूरा जुड़ जाते तब हमन ला ऊपर कोती दिखाई देते जेला हमन बादल कथन। और यही बादल में जब नमी

ज्यादा हो जाथे त इही ला संतृप्ति कथन, जेन ह पानी के बूंद बन के नीचे धरती में आते, जेला हमन बारिश बरखा या बरसात कथन। अउ ये कैसे कैसे आते संगवारी हो, कभू ये कोढ़ा छनके कस माने फुहारा बरोबर, कभू जोरदार झमाझम बारिश त कभू करा असन गिरते। अब ये करा कैसे गिरते, जब बादर के भीतर ऊपर और खाले में हवा चलते त दोनों कोती के हवा के सेती पानी के बूंद ठंडा होके जम जाते और परत बना लेते, जेन गरू होके धरती में करा बन के गिरते। लेकिन संगवारी हो, कभू कभू सुने हो कि कोनो जगह बादल फटगे करके ऐसन हा पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा सुनाई पड़ते। एमे का होते, बादर के पानी है ज़्यादा नम हो जाते, जेन एक साथ एक ही जगह में गिर जाते, जिला बादर फटना कथन। हमर देश में सबले ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में होते, जेन हा मेघालय प्रदेश में हवे। आप जानबो इंद्रधनुष के बारे में, संगवारी हो, जब आकाश ले पानी गिरते और ओखर तुरंत बाद

0: एमे का होते बादर के पानी है ज्यादा नम हो जाते जेन एक साथ एक ही जगह में गिर जाते जिला बादर फटना कथन। हमर देश में सबले ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होते जेन हा मेघालय प्रदेश में हवे। अब जानबो इंद्रधनुष के बारे में। संगवारी हो, जब आकाश ले पानी गिरते और ओखर तुरंते बाद घाम निकल जाते त आकाश में एक बड़े और सुंदर सात रंग के तिरछा पट्टी दिखाई देते जेला हमन कंसादाई इंद्रधनुक या इंद्रधनुष के नाम से जानथन। यह कैसे बनते? पानी गिरे के बाद हवा में नान नान पानी के बूंद तैरत रहते और यही बूंद ले होके जब सूरज के अंजोर निकलते तब बूंद मन नान नान सीसा के काम करते। पानी के बूंद सूरज के अंजोर ला साथ आने आने रंग में बांट देते। यही पाए के आकाश में हमन ला सुंदर गोल धनुष कस आकार देखे ला मिलते। एकर के ठन रंग होते संगवारी हो? इंद्रधनुष के सात ठन रंग होते जेला हमन बजानी हप्पी नाला कैथन। वैसे बैगनी, जासे जामुनी, नीसे नीला, हसे हरा, पी से पियर, ना से नारंगी और ला से लाल रंग के होते। इंद्रधनुष प्रकृति के वो जादू हरे जेन बताते कि सूरज और बारिश मिलके आकाश ला रंग से भर देते जेन ला देख के संगवारी मन के मन उल्लास से भर जाते है ना संगवारी हो। आप जानबो कि बरसात के अगोरा कौन कौन ला होते? बरसात के अगोरा सबो जीव ला रहते। सबले पहली वो किसान मन के बारे में जेन हा जैसे ही पानी गिरते अपन फसल के तैयारी में लग जाते, अनाज उगाते जेखर से भोजन के जुगत या बंदोबस्त होते। चिड़ई चुरगुन से लेके सबो नान्हे बड़े जीव के चारा और पानी के व्यवस्था होते। धरती पूरा हरियर हरियर हो जाते जेला देख के मन हा गदगद हो जाते। जानथो संगवारी हो, जब पहली बार पानी गिरते त धरती ले माटी के महक ममहाथे जेन हा मन ला मोह लेते। बारिश के मौसम में अब्बड़ अकन सांस्कृतिक तिहार मनाए जाते। छत्तीसगढ़ में तो पानी गिरे के बाद ही पहली तिहार हरेली मनाते, ओखर बाद भोजली, पूरा तिहार, तीजा तिहार और नवाखाई तिहार मनाए जाते। संगवारी हो, पानी बरसात के अगोरा एखर सेती भी सबो झनला रथे, काबर गर्मी ले राहत मिलते, वातावरण हा अच्छा हो जाते, सब जगह खेती किसानी के काम शुरू हो जाते। बरखा के दिन आए से छत्तीसगढ़ में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में बरखा के गीत तको गाए जाते। जीवन के पुनर्जागरण, जब सूखा धरती में पानी गिरते तब फिर से नया रुख राई पेड़ पौधा जागते जेन बताते कि पानी है जीवन के आधार हरे। प्रकृति और पर्यावरण के बीच तालमेल होते, जल चक्र के संतुलन होते, नदियां तरिया सबो जगह पानी से भर जाते। पेड़ पौधा रुख राई जंगल झाड़ी सबके विकास होते। वातावरण में तापमान के संतुलन तको बने रहते, हवा है शुद्ध होते। एखर सेती कही सकथन पानी है जीवन के आधार हरे। तसंगवारी हो, आज हमन हा बरसात और बरसात के महत्ता ला जाने हन, समझे हन। उम्मीद करथो सबो झन ला समझ ऐसो ही। आज के हमर गोड बात है यहाँ तक के रही से। धन्यवाद, जय जोहर।
1: हमर देश मा कैसे होते बारिश, ये वार्तालाप भी सुनेन क्रम यहू ला जानो मा। वार्ताकार रहिन श्री सूर्यकांत तिवारी मन और नाने संगी हो। अब सुने जाए आप मन के पसंद के कार्यक्रम फुलवारी।

0: हमर छत्तीसगढ़ में गांव ले शहर तक नोनी मन के शिक्षा बर बड़ अकन छात्रवृत्ति और पुरस्कार के व्यवस्था करे हे। जब नोनी ह पढ़ते त ओकर घर में आत्मनिर्भरता आते, शिक्षा के प्रकाश ले अपन आसपास और घर द्वार ला साफ सुथरा रखते, तेकर से स्वास्थ्य अच्छा रहते, बीमारी दूर रहते। शिक्षा के प्रचार ले हमर समाज में कई ठन कुरीति मन ल दूर करते। जब पढ़ते लिखते त ओकर घर में गरीबी दूर होते और ओकर समाज में बढ़िया आदर सत्कार होते। हमन सब जन ला मिल के नारी शिक्षा ला बढ़ावा देना है, ऐसन हमन संकल्प करत हन। नोनी ला पढ़ावो और देश बढ़ावो।
1: मोर नाव डिंपी देवांगन है। मैं हाँ बालोद जिला के गांव कांदुल के मिडिल स्कूल के कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं यहाँ आप मल्ला गांव के समस्या और समाधान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भारत के असली पहचान ओकर गांव से है। हमर ज़्यादातर जरूरत भोजन, दूध, सब्जी आदि गांव हाँ पूरा करते। भारत के अर्थव्यवस्था के आधार गांव और किसान हरे। अगर गांव हाँ विकसित हुई तभी देश हाँ विकसित हुई। आज के विकास के समय में भी आज गांव में बड़ा घन समस्या हवे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सही सुविधा नहीं है। इकरे वजह से किसान मन ला कई समस्या के सामना करना पड़ते। बहुत झन किसान मन अपन लइका ला बढ़िया शिक्षा नहीं दिला पाए, जेकर कारण उमन पिछवा जाते। तेकर शक्ति में सरकार ले अनुरोध करता कि समय समय में हमार गांव में पहुंच के जानकारी ला बता जाए और उगर समस्या के समाधान ला कर जाए। एकर ले हमार गांव और समाज हा बहुत जल्दी विकसित हुई और समृद्धि के मार्ग में चली जाए। जय जय छत्तीसगढ़।
2: मैं संभव वर्मा कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। मोर कहानी के नाम है प्यासा कौआ। एक ठन कौआ ला जोरदार प्यास लगत रहीस, पानी खोज खोज के थक गे रहीस, फिर ओला पानी नहीं मिलत रहीस। अचानक से ओला एक जगह माटी के गगरी दिखीस। कौआ सोचीस पक्का ओमा पानी मिल जाही, ओला पी के मैं अपन प्यास बुझा लू। कौआ हा गगरी के तीर में गिस, गगरी के बारा में बैठ गए। ता देखते कि पानी बिकट खाले में, ओहा पानी ला अमरे के अब्बड़ कोशिश करीस, पानी हा नहीं अमरीस। कौआ हा सोचे धर लेते मैं कैसे का करो, कर से पानी हा ऊपर आ जाही। तहन कौआ के मन में एक विचार आते, आजू बाजू के छोटे छोटे कंकड़ ला गगरे में डालू ता पानी हा जरूर ऊपर आ जाही। विचार के वो हा कंकड़ गगरी में डाले धर लीस। कुछ टाइम तक कंकड़ डालने से पानी हा ऊपर आईस, लेकिन अभी भी कौआ ला नहीं अमरात रहीस। कौआ हा मा औ कंकड़ डाले लगीस, अब पानी हा पिए के लायक ऊपर आ गे रहीस। कौआ हा पानी ला पी से ओकर प्यास बुझ गे। कहानी से सी समय में दिमाग से काम लेना चाहिए।
3: मोर नाम सरांश वर्मा है। मैं UKG के छात्र हूँ। मैं सोहेला बलोदा बाजार में रही थो। मोर कहानी शेर और चूहा के बारे में है। एक बार के बात थे, जंगल में शेर सुते रही थे, उही में एक ठक चूहा हा खेले रही थे। वह खेलत खेलत शेर के ऊपर चढ़ थे, कर कारत शेर की रीत खुल जाते, बहुत गुस्सा हो जाते। वह चूहा ल पकड़ लेते, चूहा दर्रा जाते, शेर ओला मारने वाले रहते। चूहा वो कसे हाथ जोड़ का माफी मांगते, बोलते कि महाराज मोला छोड़ दो, मैं तो कई काम आ सकता हूँ। शेर जो करते हंसे धर लेते, कहते होते से चूहा मेरे काम क्या आते। तब भी ओला शेर छोड़ देते। वह भाग जाते, बस जंगल में एक शिकारी आते, जानवर पकड़े बस जाल बिछाते। वो जाल में शेर फंस जाते। शेर बहुत निकले के कोशिश करते, वो निकल नहीं पावे, बहुत जोर जोर से धारे लगते। ओका धान सुन के चूहा ओकर आ जाते, अंदाज

0: नानी संगवारी हो, आज के जोन फुलवारी है ना, वो बड़ सुघर ढंग ले सज के आए हैं। तो भाई देखो, बड़ कन लेका मन सकलाए हैं, तो हमन तो भाई अब कुछ नहीं बोलन। अब जोन हमार जिन नानी संगवारी मन है ना, वो मन बोली।
1: जय जोहार, मोर नाम नमिता ठाकुर है। मैं हाँ बालोद जिला के गांव कांदुल के मिडिल स्कूल के कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं हाँ आप मल्ला नोनी मन की शिक्षा के बारे में बताना चाहत हूँ। कहे जाते जब एक आदमी पढ़ते तब वो एक जन भर पढ़ते, फिर जब एक नोनी हाँ पढ़ते तब वो अपन संगी संग अपन पूरा परिवार ला पढ़ाते। नारी शिक्षा ले हमार समाज में काफ़ी बदलाव आते और अपन परिवार ला ज्ञान ले सवारते और प्रगति के रास्ता में चले भर सिखाते।

0: से ओशेला काट के जाल को आजाद कर देते। तो कर बहुत धन्यवाद करते। इस कहानी से सीख मिलते हैं कि समझना चाहिए।
1: जय जोहार। मोर नाम धारणी साहू है। मैं यहाँ बालोद जिला के खांडुल गांव में रहता हूँ। आज मैं यहाँ हमारे लोक संस्कृति और पर्यावरण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य न है, यह सुघर हरियर जंगल कलकल पोहात नदियाँ नरवा और सीधा साधा मनखे मन के पावन भूया है। हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति के जतका घलो विशेषता है वो सबो प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े है। हमन प्रकृति ल सिर्फ देखथन नहीं बल्कि ओकर पूजा करथन। तिहार मन म पर्यावरण के संदेश। हमर छत्तीसगढ़ में 12 महीना में 13 तिहार मनाए जाते और जम्मो तिहार मन पर्यावरण ल सहेजे के संदेश देते, जेकर से प्रकृति के प्रति आदर झलकथे। आओ सब मिलके कसम खायन, रुख राई ल सहेज के पुरखा के रीत निभाओ, पर्यावरण ल बचाबो और छत्तीसगढ़ ल सुघर बनाबो।
2: मोर नाव जास्मीन देवांगन है। मैं हाँ शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कांदुल कक्षा 8वीं के छात्र हरों। मैं आप मन ला छत्तीसगढ़ी में जनौला पूछत हूँ और आप मन हाँ ओकर उत्तर ला बताहू। चलो शुरू कर बो।
3: हाँ।
2: एक थारी मोती और सबो के मुड़ मा लोटी, बताओ का हरे।
3: आकाश के चंदेली।
2: बिल्कुल सही। चार भाई कुदुक कुदुक के जाए, एक भाई खड़े रहा है, बताओ का हरे।
3: गाड़ी के चक्का और दूरी।
2: यहू सही। कारी गाय कजरी खाए, दूहत जाए पन्हात जाए, बताओ का हरे।
3: कुआं।
2: हरिया डिबिया करिया गोटा, ओला नहीं जानी तेकर मूड़ हा मोटा, बताओ का हरे।
3: कलिंदर।
4: और आज हमारे स्टूडियो में ना कई झन संगवारी मन घलो आए हैं जेमन कराते के प्रशिक्षण लेवत हैं। तो चलो इखर मन संग गोट बात करे जाए। तो एक नाने संगवारी है हमारे, बहुत छोटे हैं। आपके नाम बताओ, आपके नाम का है?
5: मोर नाम रोली धनगर है।
4: रोली, कौन से कक्षा में पढ़ता हूँ आप मन?
5: कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ।
4: कक्षा 6वीं में। और ये कराते के प्रशिक्षण कब ले लेवत हो?
5: मोला 1 साल हो गए कराटे खेलत।
4: और पढ़ाई भी बराबर चलते साथ में?
5: हाँ।
4: हाँ, अच्छा, ये प्रशिक्षण लेके मन कैसे लगी इसके? मोला ये कराते सीखना है, खेल तो बहुत अकन है हम मन जानते है ना।
5: मोर इच्छा रही एला खेले बर, अपन आत्म रक्षा के लिए एक हर सती में एला खेले बर चुने।
4: वाह, कतका सुंदर बात बताए। नोनी है और नोनी तो अपन आप में शक्ति के प्रतीक है और वह भाई आत्मरक्षा बर प्रेरित करत है। अच्छा, ये बताओ कि कतका मेडल या कतका अपन स्पर्धा में भाग ले हो, कतका मेडल जीते हो?
5: मोर पास स्टेट लेवल में 2 गोल्ड मेडल है।
4: अच्छा, ये कराते जो होते इमा बेल्ट भी होते ना?
5: हाँ।
4: कई रकम के बेल्ट होते, तो हमन तो ज़्यादा नहीं जानन, आप मन बताते हो कतका ठन बेल्ट होते हो, उमा कैसे कैसे आप मन आगू बढ़ते हो?
5: सबसे पहले जब हमन जाथन तो हमन ला वाइट बेल्ट मिलते, ओ सबसे जूनियर बेल्ट रही थे, सबसे सीनियर बेल्ट ब्लैक बेल्ट रही थे, जो 2-3 साल खेले के बाद मिलते।
4: अच्छा, तो हमार डहरली भाई आपला शुभकामना है कि आपला जल्दी से जल्दी ब्लैक बेल्ट मिले, है ना। और हमारे एक जन संगवारी यू है, तो आपके नाम बताओ, आपके नाम?
6: मोर नाम आकृति बंछोर है।
4: अच्छा आकृति, जैसे अभी हमन रोली से बात करत रहे, तो रोली बताए इसके आत्मरक्षा पर हमन ला कराते सीखना है, तो आपला भी यही कारण से कराते सीखना है या आप इला करियर के रूप में इला देखा था?
6: मोला भी यही कारण से ही कराते सीखना है और करियर भी है इसमें, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा वो है, इंटरेस्ट है इसीलिए।
4: अच्छा, और पढ़ाई कैसे चलते फिर आपके, कैसे योजना कैसे बनाते हो कि कराते भी है फिर आप मन बीच बीच में प्रतियोगिता में भाग ले बर भी जाते हो, तो कैसे संतुलन बनाते हो?
6: दोनों को ना बैलेंस करके चलना पड़ता है।
4: अच्छा,
6: स्टडी को भी और कराटे को भी।
4: और आप ला कतका मेडल मिले है और आप मन कौन कौन से प्रतियोगिता में गए हो?
6: मैं अभी स्टेट लेवल में गई और मोला सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल मिले।
4: अच्छा, तो आप ला भी बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन यहाँ आए हो हमारे से गोट बात करे हो। आपके नाम का है बताओ?
7: मोर नाम भव्यांश यादव है।
4: अच्छा भव्यांश, एक बात बताओ, कौन से कक्षा में पढ़ता हो आप मन अभी?
7: मैं 5th में हूँ।
4: कराते सीखे के मन कैसे लगी?
7: सेल्फ डिफेंस,
4: माने आत्मरक्षा पर, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप मन कराते के प्रशिक्षण लेता हो तो इमा तो भाई बहुत मेहनत लगते, सामने वाला ला भी हम कर शक्ति ला भी देखे लगते, अपन शक्ति ला भी देखे लगते, तो खाए पिए में का

0: खा थो पी थो आप मन
1: हेल्दी फूड फल फ्रूट
0: फल फूल खा थो। चलो ये तो बहुत अच्छा बात है। हमारे संगवारी मन कई जन फल फूल खाए से साग सब्जी खाए से थोड़ा ढेरियाते ना मन बोलते नहीं नहीं हमला तो जंक फूड खाना है तो मैंने कराते है सीखना है तो मन ला ये जो बाजार के और पैकेट वाले चीज़ ला नहीं खाना चाहिए हेल्दी बनना है ना। अच्छा ये बताओ अभी आप मन ला कौन से बेल्ट मिले हैं?
1: मोला ब्राउन बेल्ट मिले हैं।
0: अच्छा एकर बाद कौन से बेल्ट मिली आप ला?
1: एकर बाद ब्राउन फर्स्ट मिली फिर ब्लैक बेल्ट।
0: अच्छा एक बेल्ट के बाद आप मन ब्लैक बेल्ट हो जाओ। अरे वाह। और आप मन कौन कौन से प्रतियोगिता में अभी तक भाग ले हो?
1: मैं नेशनल में और स्टेट लेवल में।
0: और कौन कौन से मेडल मिले हैं आप ला?
1: मैं स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और नेशनल में भी।
0: अरे वाह। तो आप मन ला भी बहुत बहुत बधाई। नाने संगी हो हमारे एक जन और नाने संगवारी ही तो चलो उनखर से पूछे जाए कि वह कब से कराते के प्रशिक्षण लेवा थे। आपके नाम बताओ संगवारी हो?
2: जानवी यादव।
0: जानवी कौन से कक्षा में पढ़ता हो आप मन?
2: तीसरी।
0: तीसरी कक्षा में। कराते सीखे के मन कैसे हुई?
2: अपन आत्मरक्षा के।
0: आत्मरक्षा पर। अच्छा आप मन पढ़ाई भी करता हो और पढ़ाई के संग कराते भी? समय मिल जाते दोनों पढ़ाई में और कराते सीखे में? और एक अभ्यास तो बहुत कड़ा अभ्यास होते ना। आप तो एकदम सुंदर दुब्बर पातर हो तो एमा तो हम सुने हन के एक दूसर ला पकड़ के पटक थे भी बहुत शक्ति लगते तो ओकर बर माँ कुछ अच्छा चीज़ खवाते कि आप मन भी मतलब जोन मिलते वो खा लेते हो पैकेट वाले या बाहर वाले बाजार के?
2: मम्मी खिलाते वो खाते।
0: मम्मी जो देते वो खाता। अच्छा एक बात का करना है आप ला पढ़ाई में आगू बढ़ना है कि कराते के चैंपियन बनना है?
2: दोनों करना है।
0: दोनों करना है। चलो तो एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अकन शुभकामना बालवाटिका परिवार के डहार ले। आप जम्मो संगवारी मन ला जोन आप मन चाहत हो कि आप मन चैंपियन बनाओ तो भाई हमारे डहार ले बहुत अकन शुभकामना है। नानी संगवारी हो ये तरी आज की फुलवारी नानी संगी हो बड़ सुघर लगीस ना आज की फुलवारी काबर के मारी ही हमर नानी नाने लैका मन के भागीदारी कहूँ आपो मन इसने फुलवारी में भाग लेना चाहत हो तो अपन दाई बाबू गुरुजी दीदी भैया मन संग आकाशवाणी रायपुर में आ सकत हो। ये फुलवारी की रिकॉर्डिंग हर मंगलवार के शाम 4 बजे ले 5:30 बजे तक करे जाते जेमा आप मन अपन गीत कविता कहनी सुना सकत हो। फिर सुरता रखो आप मन ला के लग कब भून आना है ना। तो नानी संगी हो आज की बाल बाटिका आप मन ला कैसे लगी सपन चिट्ठी पाती या फिर ई मेल में लिख के हमला जरूर पठो हो। पता है लेकिन मन की चिट्ठी बालवाटिका द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर पिन कोड है 4920001 और हमारे ईमेल आईडी है आपला अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखना है राय लेकिन मन की चिट्ठी 14@gmail.com। और नानी संगी हो एक संग आज के बालवाटिका के बेरा सिरावत है तो अब अपन शीतला दीदेला देव विदा
3: बच्चों।

0: छत्तीसगढ़ी में बच्चों का कार्यक्रम बाल वाटिका अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं, प्रगति के सोपान। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अग्रणी जिला प्रबंधक मोहम्मद मोफिस से भेंट वार्ता। भेंट करता है रमा शंकर।
1: श्रोताओ नमस्कार, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, यूं तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। हमारे भारत में देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से बैंकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। बैंकों में आम लोगों के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे लोगों को लाभ मिलता है और लोग इससे सशक्त होकर अपनी जीविका, अपने घरों की जरूरत को पूरी करते हैं। श्रोताओं, बैंकों में ऐसी योजनाएं होती हैं जिसके द्वारा हम अपने लिए कुछ छोटे मोटे रोजगार से लेकर बड़े रोजगार तक की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए लोन मुहैया कराए जाते हैं और इसमें सरकारी योजनाएं भी चलती हैं जिससे लोन लेना और आसान हो जाता है। तो श्रोताओं, बैंक द्वारा ही एक ऐसी ही योजना चलाई जाती है जिसमें भारत सरकार का

0: सहयोग होता है और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि मुद्रा योजना क्या है और इस मुद्रा योजना का लाभ हम कैसे ले सकते हैं और इसके नियम और शर्तें क्या होती हैं। और श्रोताओं, इस योजना पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है मोहम्मद मुफीस, जो अग्रणी जिला प्रबंधक है बैंक ऑफ बड़ौदा रायपुर में। तो मोहम्मद मुफीस जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद रमाशंकर जी।
0: जी मोहम्मद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह योजना क्या है और इस योजना का उद्देश्य क्या है।
1: सबसे पहले तो श्रोताओं को नमस्कार। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, ये एक भारत सरकार की एक पहल है जो कि गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजना जो थी वो 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि उन छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना जिनके पास औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं होती। इसका स्लोगन ही था कि फंडिंग द अनफंडेड। जो मुद्रा MUDRA जो मुद्रा है, इसका जो फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मतलब सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी।
0: जी, तो मुफीस जी, हम पीएम मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है
1: इस योजना के लिए? यदि कोई व्यक्ति आवेदन करना चाहता है तो वो या तो बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन भी वो आवेदन कर सकता है ना। वो अपना जो भी जरूरी दस्तावेज है, जिसमें उसका KYC है, उसके व्यवसाय के पहचान का प्रमाण पत्र है और उसके फोटोग्राफ्स हैं, ये वो बैंक में जाके जमा करता है और बैंक में आवेदन कर सकता है। लोन के लिए यदि हम बात करें तो 3 कैटेगरी है, एक तो शिशु, दूसरा तरुण और तीसरा दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। और अभी वर्तमान में एक नई श्रेणी जोड़ी गई है, तरुण प्लस। और यदि इसके बारे में कितना ऋण इसमें मिलता है वो अगर देखा जाए तो जो शिशु लोन है उसमें अधिकतम 50,000 रुपये तक का ऋण है। ये उन लोगों के लिए होता है जो नया व्यवसाय अपना आरंभ कर रहे हैं, तो उनके लिए है। और किशोर जो योजना है उसमें आप 50,000 रुपये से ज़्यादा और 5 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। और तरुण श्रेणी के अंतर्गत आप 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और जो नई श्रेणी है तरुण प्लस, उसमें अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है।
0: जी, तो मुफीस जी, इसमें यदि कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो उसके दस्तावेज क्या हो सकते हैं और इसमें जो है योग्यता की क्या शर्तें हैं?
1: योग्यता की शर्त ये है कि उसको कोई व्यवसाय प्रारंभ करना है, उसको उसके पास व्यवसाय की कोई कार्य योजना होनी चाहिए कि कौन सा व्यवसाय चालू करना चाहता है। और दस्तावेज में उसको सिर्फ उसका KYC, मतलब उसके जो पहचान का और पते का प्रमाण और उसके व्यवसाय का प्रमाण, है ना, ये दोनों उसके पास होना जरूरी है। ये दोनों यदि होता है तो वो आवेदन कर सकता है। आवेदन चाहे तो वो अपने समीपस्थ बैंक शाखा में जहाँ उसका खाता है ना, या फिर वो अपना ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। और कोई भी भारतीय नागरिक, है ना, जो और किसी भी जो गैर कृषि आधारित क्षेत्र के लिए, वो कोई भी, चाहे वो निर्माण का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे सेवा का, किसी भी क्षेत्र के लिए वो आवेदन कर सकता है।
0: जी, तो मुफीस जी, यदि कोई व्यक्ति इसके लिए आवेदन करना चाहे तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा आवेदन करने के लिए?
1: देखिए, आवेदन के लिए वो अपनी बैंक शाखा में जा सकता है और बैंक शाखा में जाके आवेदन दे सकते हैं, और नहीं तो एक पोर्टल है, भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, उद्यम मित्र पोर्टल, इसमें जाके वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, अपने बैंक का चयन करेगा कि किस बैंक से उसको लोन चाहिए, और उसमें वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके ये कर देगा, वो संबंधित बैंक के पास वो प्रपोजल ऑनलाइन ही चला जाएगा।
0: जी जी, तो मुफीस जी, जब इस योजना के अंतर्गत लोन दिया जाता है तो उसमें ब्याज की क्या शर्तें होती है इसे और इसका भुगतान की क्या शर्तें होती है?
1: इसमें जो ब्याज है वो कोई छूट तो नहीं है, लेकिन इसमें ब्याज थोड़ा रियायती दर पे, जो MSME जो क्षेत्र के लिए जो ब्याज लगता है उसी तरीके का रियायती ब्याज दर पे ही ऋण है। और जो चुकौती अवधि है वो 3 साल से 5 साल और कुछ परिस्थितियों में 7 साल तक भी इसकी चुकौती अवधि होती है।
0: मुफीस जी, जब कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए उम्र की क्या सीमाएं होती है इसमें?
1: उम्र की 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। अधिकतम उम्र की वैसे कोई सीमा नहीं लिखी हुई है, लेकिन फिर भी बैंक ये देखता है कि आप व्यवसाय करने के लिए सक्षम है तो आपको वो लोन देता है। अधिकतम 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
0: जी, तो मुफीस जी, जब हम मुद्रा योजना की बात करते हैं तो इसमें एक मुद्रा कार्ड काफी सुनने को मिलता है, तो ये मुद्रा कार्ड क्या है, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं?
1: ये एक डेबिट कार्ड की तरह होता है जिसमें उद्यमी

0: अपनी जो कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी का मतलब यह है कि उसको व्यवसाय के चलाने में जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, जैसे बिजली का किराया है ना, आपका जो उनके जो पास जो काम कर रहे हैं उनको वेतन भुगतान करना है, कच्चा माल खरीदना है, या जो भी परचेसिंग वगैरह जो करनी है उसके लिए एक डेबिट कार्ड है, जो डेबिट कार्ड के माध्यम से रकम का आहरण करके वो ये मतलब काम कर सकता है, अपने वर्किंग कैपिटल की जो आवश्यकता है, जो कार्यशील पूंजी की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकता है।
1: जी, तो मौफिसी, जब कोई व्यक्ति मुद्रा लोन अप्लाई करता है तो उसे किस किस व्यवसाय के लिए लोन मिलता है? यदि हम बात करें कृषि को छोड़कर, और यदि कृषि में भी ये लोन दिया जाता है तो कृषि से संबंधित किन किन व्यवसाय के लिए दिया जाता है?
0: देखिए, इसमें लगभग सभी तरह के व्यवसाय के लिए लोन दिया जाता है। कृषि जैसे फसल उत्पादन आदि के लिए इसमें ऋण नहीं दिया जाता, लेकिन कृषि से संबंधित कुछ गतिविधियां हैं, जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है ना, मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया है ना, इन सब के लिए वो ऋण उसमें ले सकता है। ये जो नई जो कृषि से संबंध जो गतिविधियां हैं ये पहले नहीं थी, लेकिन 2016 के बाद में इनको भी इसमें जोड़ा गया है। और लगभग सभी तरीके की गतिविधियां हैं, चाहे वो निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र, ये तीन कैटेगरी में आप किसी भी क्षेत्र में वो ऋण बैंक से ले सकता है मुद्रा योजना के अंतर्गत।
1: जी जी, तो मुफीस जी, जब हम बैंकों से कोई ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसमें एक निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाता है, तो मुद्रा योजना के लिए भी क्या ये लागू होता है?
0: मुद्रा योजना में जो शिशु लोन है जो कि 50,000 रुपए तक है, उसके लिए तो कोई भी किसी भी तरीके का शुल्क बैंक नहीं लेता, लेकिन जो बाकी जो तीन कैटेगरी है किशोर, तरुण और तरुण प्लस, उसमें कुछ नॉमिनल शुल्क बैंक उसमें ले सकता है। ये संबंधित हर बैंक का अलग अलग शुल्क होता है, ये काफी नॉमिनल होता है, लेकिन शिशु लोन के लिए किसी भी तरीके का कोई शुल्क बैंक नहीं लेता।
1: जी, तो मुफीसी, जब हम बात करते हैं इसमें लोन की, तो एक हमारा जो आरक्षित समुदाय, उसमें जो बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास की, तो इसमें जो इनको कुछ छूट दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं?
0: नहीं, इनको अलग से कोई आरक्षण या कोई छूट का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इस योजना का एक बड़ा हिस्सा है इन आरक्षित वर्ग के छोटे उद्यमों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने पर केंद्रित है ये।
1: जी जी, तो मुफीस जी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, चूंकि हम भारत सरकार की जब बात करते हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बातें होती हैं, और जब कोई योजना की बात होती है तो उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, उनको सशक्त करने का भी एक कार्य किया जाता है, तो मुद्रा योजना के तहत अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो इसमें महिलाओं के लिए अभी तक हम देखें तो कितना कार्य हुआ है जिससे महिलाओं उद्यमियों को लोन दिए गए हों?
0: देखिए, जब हम देखते हैं कि जो लोन है, मुद्रा लोन जो है, वो महिलाओं को काफ़ी मतलब इसमें ये दिया गया, कुल लोन का लगभग जब हम देखते हैं तो लगभग 65% जो लोन है वो महिलाओं को, महिला उद्यमियों को दिया गया है, और महिला उद्यमी काफ़ी सफलतापूर्वक इसमें अपना कार्य कर रही हैं, ऋण लेके काफ़ी कार्य कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इस योजना से लाभ लेके अपना काफ़ी अच्छा व्यवसाय स्थापित किया और एक समाज में एक उदाहरण बन रही हैं।
1: तो मुफीसी, जब कोई व्यक्ति इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहे या लोन लेना चाहे, तो उसे कहाँ संपर्क करना चाहिए?
0: कोई भी व्यक्ति जो मुद्रा लोन के लिए आवेदन करना चाहता है, तो अपने जो वो जहाँ पे रहता है उसी में, उसके समीप में कोई ना कोई बैंक जरूर रहती है, वो अपने समीपस्थ बैंक शाखा में जा सकता है, या चाहे तो वो ऑनलाइन जो है उद्यम मित्र जो पोर्टल है उसके माध्यम से भी वो आवेदन कर सकता है। उद्यम मित्र जब पोर्टल में आवेदन करता है तो उसे बैंक शाखा का चयन करना पड़ता है कि किस बैंक शाखा में वो आवेदन करना चाहता है, वो उसमें उसको ये दर्शित होता है कि कौन से बैंक शाखा में आवेदन करना है, वो स्वतंत्र है, किसी भी बैंक से वो लोन लेने के लिए आवेदन कर सकता है।
1: जी जी, तो मुफीस जी, आपने कार्यक्रम के शुरू में बताया था तरुण प्लस श्रेणी का लोन जो इसमें नया जोड़ा गया है, तो हम यदि इस तरुण प्लस की बात करें तो इसका लाभ कौन कौन ले सकते हैं?
0: देखिए, यदि कोई व्यक्ति तरुण श्रेणी का जो 10,00,000 रुपए तक का लोन ले चुका है और लेने के बाद उसको उन्होंने उसकी चुकौती भी कर दी है, तो वो तरुण प्लस में आवेदन कर सकता है। पहले जो मुद्रा लोन थी 10 लाख तक थी, चूंकि मुद्रा लोन कोलेटरल फ्री लोन है, मतलब कोई भी संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं लगती, तो सरकार ने पहले इसको 10 लाख रुपए तक रखा था, लेकिन 2024 के बाद से इसमें तरुण प्लस की श्रेणी जोड़ी और कोलेटरल फ्री लोन की जो सीमा है वो 20 लाख रुपए तक बढ़ा कर दी है। तो जो भी तरुण कैटेगरी में लोन जिसने लिया था और अपने लोन का भुगतान कर

0: चुका है वो तरुण प्लस की श्रेणी में भी लोन के लिए आवेदन कर सकता है, उसे 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन जो है वो मिल सकता है।
1: जी जी, तो मुफीस जी अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की और पूरे भारत की, तो कितने अभी तक मुद्रा योजना के तहत ऋण दिए जा चुके हैं?
0: देखिए पूरे भारत में यदि हम देखें तो लगभग 52 करोड़ लोगों को ऋण इसमें प्रदान किया जा चुका है मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण, छोटे ये तीनों मतलब सभी कैटेगरी मिला के लगभग 52 करोड़ लोगों को इसमें ऋण प्रदान किया जा चुका है।
1: जी, तो मुफीस जी जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तो मेक इन इंडिया की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का कितना योगदान है?
0: देखिए मेक इन इंडिया का तो उद्देश्य ये था कि जो भी चीज़ें हैं वो हम अपने भारतवर्ष में खुद ही बनाएं, और जो मुद्रा योजना है ये तो छोटे उद्यमी से लेके एकदम आसान ऋण उपलब्ध कराती है। हर व्यक्ति जो अपना व्यापार करना चाहता है, कोई नया व्यवसाय का विचार उसके दिमाग में है, वो इसमें ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। तो मेक इन इंडिया जो हमारी योजना थी, जो विचारधारा थी, उसको पूरा करने में जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये एक अग्रणी भूमिका निभाती है, क्योंकि ये छोटे से छोटे वर्ग को लेके है ना, आगे 20 लाख रुपए तक का जो ऋण इसमें मिलता है तो वो उसको किसी भी व्यक्ति को छोटे स्तर से उठा के आगे बढ़ाने तक मदद करता है।
1: जी, तो मुफीस जी कार्यक्रम में चले उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितना लाभकारी है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है?
0: मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं, तो कोई भी व्यवसाय आपके दिमाग में है कि मैं ये व्यवसाय करना चाहता हूँ, तो आप बैंक की शाखा में जाके मुद्रा योजना के संबंध में जानकारी लीजिए। आप जो ऑनलाइन जो माध्यम से है ना, आप अपने मोबाइल पे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और साथ में है ना बैंक में आप आवेदन कर सकते हैं। व्यवसाय यदि आप अच्छे से कर रहे हैं है ना, तो शिशु कैटेगरी में तो आपको 50,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा। आप शिशु कैटेगरी के बाद यदि आप वो ऋण पटा देते हैं, ऋण जमा चुकता कर देते हैं, तो उसके बाद आपको किशोर जो कैटेगरी है उसमें मिलेगा 5 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। ये भी पूरा करने के बाद आप तरुण और तरुण प्लस की भी सुविधा आप ले सकते हैं, तरुण उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, और छोटी शुरुआत करके आप बड़ी ऊंचाई तक इसमें पहुंच सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे मोहम्मद मुफीस जी से, जो एक अग्रणी जिला प्रबंधक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा रायपुर में। तो मुफीस जी कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद रमाशंकर जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: प्रगति के सोपान। इस कार्यक्रम में अभी आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अग्रणी जिला प्रबंधक मोहम्मद मोफिस से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे रमा शंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। पहले ये संदेश।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यारे का तो फराए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म तीसरी मंजिल से, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत R.D. बर्मन का है।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।
5: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
6: घर आंगन, ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शे का लिखा गीत। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, फिल्म का नाम है मर्यादा।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत राहुल देव बर्मन का है, फिल्म का नाम है कारवां।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

आशा भोसले की आवाज में इंदिवर का लिखा गीत अभी आपने सुना, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। फिल्म डॉन के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप हमारी इसी सभा में 10:30 से फिर सुन सकेंगे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं गंगाबाई गेडाम और उनके साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए गंगाबाई गेडाम और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे गंगाबाई गेडाम और उनके साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वीबीजी रामजी योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड की गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में श्री साय ने कहा कि एआई मिशन के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और नवाचार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में एआई कौशल विकास, स्टार्टअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स और सुरक्षित एआई नीति के साथ मोबाइल नेटवर्क विस्तार, भारत नेट फेज 3 और सेवा सेतु पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में राज्य में लगभग 1000 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। वहीं भारत नेट फेज 3 के तहत राज्य की 4114 ग्राम पंचायतों को आधुनिक इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री

0: टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजों में प्राचार्यों की पदोन्नति पूरी करने को कहा गया। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातकोत्तर स्तर तक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकार से समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। वहीं 3 जुलाई को सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ होगी। जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डटसेना और सभी नवनिर्वाचित पार्षद पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। रायपुर में आज गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक इस मानसून के दौरान मौसमी वर्षा सामान्य से 60% कम दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वीबीजी रामजी योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी गीत, गजल और कव्वालियों का कार्यक्रम स्वर धारा। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं अनूप जलोटा और कोयल और आशा भोसले। कार्यक्रम में पहले सुने कोयल और अनूप चरोटा के स्वर में ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों, गजलों और कव्वालियों का कार्यक्रम स्वर धारा। इस कार्यक्रम में आइए अब सुने आशा भोसले को। आशा भोसले की आवाज में लीजिए सुनिए फैज अहमद फैज की गजल।

गैर फिल्मी गीत, गज़ल और कव्वालियों का कार्यक्रम स्वरधारा अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे अनूप जलोटा और कोयल और आशा भोसले। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में हमने चुने हैं कुछ ऐसे फिल्मी गीत जिनमें अनुरोध है न जाने का। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं साहेब बीवी और गुलाम का गीत, गीता दत्त की आवाज में। शकील पदवीनी ने इस गीत को लिखा है, संगीत हेमंत कुमार का है।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

अपने प्रिय से न जाने का अनुनय करता एक और गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये था फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का गीत। अगले गीत से पहले श्रोताओं एक सूचना सुनिए, आगामी शुक्रवार यानी कल 3 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा धान की उन्नत सीधी DSR पुवाई विधि। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजय द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक शस्त्र विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कल यानी शुक्रवार 3 जुलाई को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद न जाने की विनती करते हुए कुछ फिल्मी गीत आपको सुनवा रहे हैं चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में। आइए अब सुने बड़े दिल वाला, इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत राहुल देव बर्मन का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म बड़े दिलवाला का ये गीत। चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं वे चुनिंदा फिल्मी गीत जिनमें मनोहार है अपने प्रिय से न जाने की। तो कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है कर्मा।

न जाने की जिद करता एक और गीत सुनिए अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है खुदा गवाह।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं, आइए समाचार सुने।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइचे भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया गया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लौटकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के हालात की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल भेजा जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ

0: अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सहमेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुनें।

आपकी पसंद की कुछ सुरीले नगमे लेकर हाजिर हूं मैं तारकेश्वरी। कार्यक्रम ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने में, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा से। गीत लिखा है कमाल अमरोही ने, संगीत गुलाम मोहम्मद का है। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश अपने ईमेल में की है हमारे इन श्रोताओं ने। खैरागढ़ राजलालपुर से मोतीलाल भीमटे, सुशीला भीमटे, मेघा नेहा, येशु भीमटे, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम चमदाड़े, भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, भीमकोच तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, उमेश लक्ष्मी, प्रतिभा शीतल गुप्ता, अडार नांदघाट से भूपेश दीपेश वर्मा, सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम, लोकेश रामकिशन, दुल्लीचंद और सत्यम साहू, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम निप्पी साहिनी, मोहम्मद अफजल मलिक, डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान, रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू और नेपानगर मध्य प्रदेश से

सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, आप सबकी फरमाइश पर फिल्म पाकीज़ा का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुने। इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाएं फिल्म 9-2-11 के गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत SD परमन का है और इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, भानबेड़ा मंगवाल से रूपनारायण हुपेंडी, कमला हुपेंडी, चिमरोबाई और पवित्र हुपेंडी, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, सिनेमा लाइन भाटापारा से राम कुमार सेन, विक्की सेन, जवाहर नगर दुर्ग से RC कांबड़े, करुणा और विपुल कांबड़े, चरडुंगरी पिपरिया कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, सहसपुर से सतीबाई साहू, उर्वशी माही, अंशु दामिनी, पार्वती साहू, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी और अरुण कनौजिया, बाजारवाट महासमुंद से भीष्मदास, नर्मदा हिरमनी, दीपक लक्ष्यदास, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा और कौशल सेन, मिचका सोंढूर नगरी से भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा नाग, लेखिल और तरुणदीप नाग, धमनी राजिम से सम्मीलाल धीवर, मुन्नी धीवर, गोविंद, ममता, कुणाल और युवांश धीवर, देवरी भाटापारा से फानेश्वर रजक, उमेश कन्नूलाल रजक और पुनेश्वर रजक, गेंदाटोला बाजार चौक राजनांदगांव से अंजलि गुप्ता, योगिता, वीरेंद्र कुमार गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता, सिंगारवाड़ी घुटकू से भगतराम पटेल, किशन सोनम, मानवी पटेल और धुर्राबंधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार और युवराज साहू। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म 9-2-11 का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म मेरे हुजूर के बाद आइए अब आपको सुनवाएं फिल्म तलाश का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत है सचिन देव बर्मन का, और इस गीत को सुनवाने की फरमाइश करते हुए ईमेल भेजे हैं आप सबने। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूनाराम और कृष्णा देवांगन, सौंगा मगरलोर से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, गजेंद्र कुमार चंदन, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छनूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ राजेश्वरी, आस्था प्राची, देवरी भाटापारा से के आर साहू, मुरली क्षत्रिय, सौंगा धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, भलेसर महासमुंद से बलराम सेन, इंदु सेन।

छगन सिन्हा, द्वारिका सिन्हा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, हरदेव लाल पारावाड़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव, कन्या बालाघाट से अखिलेश कुमार यादव, ज्योति, अंकित, श्रद्धा, सौरभ यादव, लगान पंढरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, भारती और साहिल बघेल, बठेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद वर्मा, सौंगा मगरलोड से मोहित कुमार चंदन, देविका रानी, हेयांश कुमार चंदन, गुढ़ाराज से मनोज साहू, चित्रेखा साहू, देवेंद्र, लवीना, चंचल, वासनी और गरिमा साहू, वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया से शिवा यादव, राज यादव, चिंटू, तरुण यादव, कोका भिलाई से उत्तम से जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंगेल, और धरसीमा बस स्टैंड से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना, रानू, खुशी। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म तलाश का ये गीत।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें।

0: तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं आप ही की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुने। अगले गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है आप सबने। तेंदुभाटा मगरलोड धमतरी से उमेन कुमार निषाद, महेश्वरी देविका पोषण, नूतन सुरेंद्र, नरगुड़ा से कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिम्पल मीनाक्षी गोस्वामी, रेवे बेरला से अजय पांडे, अदिति पांडे, अनन्या पांडे, गंडई पंडरिया से कन्हैया यादव, निर्मला चोवराम, कन्हैया समडील, नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति, राधे दीपक, अंकुर राघव गुप्ता, कोटा रायपुर से शैल मिश्रा, प्रतीक, साक्षी मिश्रा, पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन, सहा मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी, आकाश, प्रतिभा, पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, अमलीडी साजा से खिलेश्वर सिंह चौहान और मालती देवी चौहान, सिंगारपुर पैलीमेटा से चिंताराम ध्रुवे, कामिन, चंद्रध्वज और सानू ध्रुवे, बिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल, बाबू, प्रियांश, भाव्या देवांगन, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, भाटापारा से दान से रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, लाखाटोला बिडोरा से पंचू यादव, भूखिन, पिया, सेवक, ऋतु, गोपिका यादव, हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू और शांतिनगर भाटापारा से पुनियाबाई और नारायण यदु। आप सबकी पसंद पर फिल्म प्रियतमा का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार हैं योगेश, संगीत राजेश रोशन का है।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये था फिल्म प्रियतमा का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आइए अब आपको सुनवाएं फिल्म कामचोर का गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत एक बार फिर राजेश रोशन का है और इस गीत को सुनवाने की फरमाइश अपने ईमेल्स में की है हमारे इन श्रोताओं ने। शहीद नगर खमतराई रायपुर से हीरा साहू, हथनीपारा भाटापारा से दुलारी बाई और चोवाराम वर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर कैथल, बड़गा कोदवा गोटान से श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी रजनी, राहुल पूजा मरावी, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक कुमार, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, भोईनापार लाटाबोर से टोकेश कुमार साहू, गंगाराम, त्रियांश कुमार और दुलेश्वरी साहू, यहीं से देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी और उमाबाई साहू, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल और यश वर्मा, कन्नेवाड़ा से संतोष सोरी, रेवती, लक्ष्मण सोरी, देवेंद्र सोनमानी, लक्ष्मी सोनवानी, करहीबदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, श्रद्धा, लोचन विद्यार्थी, चंद्रिका और जमुना निर्मलकर, आरंग भिलाई से वासुदेव साहू, रेणुका, हिमांशु और झिलमिल साहू, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, शारदा, जीत वर्मा, नेहरूवाड़ भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू, और चिरमिरी कुरासिया कालेरी से इंद्रबान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म कामचोर का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाएं फिल्म ओम शांति ओम का ये गीत, जिसके लिए आवाजें श्रेया घोषाल और अभिजीत की हैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत विशाल और शेखर का है। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश करते हुए ईमेल भेजे हैं आप सबने कर्मा चौक लोहारी डी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी लालिमा कुशांत निशांत साहू, लोरमी ग्राम तिलकपुर से चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार मालती, मयंक मरावी, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल, चंपा साहू, खल्लारी भीमखोज से जीएल साहू, सरोज साहू, छोटी पिंकी, कुटेना पांडुका गरियाबंद से टीकम घुरवा, भूषण कुसुम वासु, मोक्ष गेंदी, पुष्पा और जीतू, हटौद बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल, सुंदरनगर बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया जानवी, तृप्तेश देवांगन, सिमगा से लवकुश सेन, सविता प्रदीप और प्रदीप जैन और रमेश यादव, निवई उतई से विक्की देवांगन, उर्वशी, जतिन जयंत और कुनिका देवांगन, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, अडार नांदघाट से माखन चांदनी वर्मा, राहुल गोपी वर्मा और सोनाडी से सुब्रत और शांतना चौधरी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुने ओम शांति ओम, इस फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में आइए अब सुने कॉकटेल फिल्म का गीत, नीरज श्रीधर, कविता सेठ और साथियों की आवाजों में। गीत इरशाद कामिल ने लिखा है, संगीत प्रीतम का है और इस गीत को सुनवाने की ख्वाहिश अपने ईमेल में जताई है आप सबने। साल्हेबाटा महासमुंद से जीतू ध्रुव, केवल किरण, दिव्यांशी और खेमो ध्रुव, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजेश साहू, रेशमा साहू, नागर कोहरा, राजनांदगांव से प्रेम साहू, पूजा दुष्यंत, प्रांजल साहू, देहान बांदा बाजार राजनांदगांव से हरिओम साहू, रेवा राम, रानू सरस्वती, प्यारी राम और परमानंद साहू, आमा खोडरा रेंगाखार से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्ष प्रिया और गीत सरगम नेताम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना, भूतकचार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम और धनराज मरकाम, भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पडोटी, जयंती पडोटी, हेमंत उमंग और मोक्ष पडोटी, खमारमुड़ा से शिवाय गिरी गोस्वामी, एकांशी गोस्वामी, सतीश गिरी गोस्वामी और श्रेयांश गिरी गोस्वामी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल राजेश, आवरा डबरी से श्यामलाल साहू, मोंगरा संगीता केशरी साहू, टेकापार बालोद से चिंताराम यादव, रवि प्रकाश यादव, कुई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम ध्रुवे, जामुनबाई, फिरतराम ध्रुवे, मलती ध्रुवे, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और लाखाटोला बिडोरा से मन्नू यादव, दुर्गेश, गोपीचंद, मुस्कान और रुक्मणी यादव। आप सबकी फरमाइश पर फिल्म कॉकटेल का ये गीत नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में।

फिल्म कॉकटेल के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने को यहीं समाप्त करने की अब अनुमति दीजिए। आप सभी को तारकेश्वरी का नमस्कार।

0: श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुने, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायवाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है, अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। राजधानी रायपुर में कल से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और गरियाबंद जिले में पुलिस ने 48 किलो से अधिक गांजा बरामद कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजों में प्राचार्यों की पदोन्नति पूरी करने को कहा गया। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातकोत्तर स्तर तक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकार से समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। वहीं 3 जुलाई को सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ होगी। नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आगामी 4 और 5 जुलाई को 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। इस शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की भी समीक्षा की जाएगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किसानों से मिश्रित खेती अपनाने की अपील की है। कांकेर में किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान धान के साथ दलहन और तिलहन की खेती करें तथा खेतों की मेड़ों पर मुनगा लगाएं। उन्होंने कम लागत और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री नेताम ने खेती के साथ मछली पालन, मुर्गी पालन और पशुपालन अपनाने की सलाह दी। उन्होंने जैविक खेती अपनाने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपये आदान सहायता प्रदान करेगी। वरिष्ठ IPS अधिकारी बद्री नारायण मीणा ने बुधवार को बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सुंदर राज पी का स्थान लिया है, जिन्हें भारत सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर NIA में पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। संस्कृति और राजभाषा संचालनालय ने वर्ष 2026-27 के सांस्कृतिक आयोजनों के लिए

0: कलाकारों और सांस्कृतिक दलों से 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित कलाकारों को शास्त्रीय संगीत और नृत्य, रंग तरंग वाद्यंत्र संगम, रंग परब, नाट्य श्रृंखला और लोक रंग पर्व जैसे आयोजनों में प्रस्तुति का अवसर मिलेगा। गरियाबंद जिले के अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट खुट गांव पर पुलिस द्वारा की गई दो अलग अलग कार्रवाई में 48 किलो से अधिक का गांजा बरामद किया गया है। चार पहिया वाहन के जरिए ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहे गांजे की कीमत 24 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 चार पहिया वाहन और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। दुर्ग पुलिस ने लगभग 1149 खातों की पहचान कर 39 लोगों पर FIR दर्ज की है। इस मामले में अब तक 165 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में खुलासा हुआ है कि आम लोगों के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट यानी किराए का खाता बनाकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। राजधानी रायपुर में कल से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और गरियाबंद जिले में पुलिस ने 48 किलो से अधिक गांजा बरामद कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
0: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं

0: समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
0: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
0: जी,
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया।

0: प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
4: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
5: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
5: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
4: क्यों दे दो?
5: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
4: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
5: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
8: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
8: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
8: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है।

0: वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
0: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
6: गाड़ी में बैठ कर
7: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। इसके पास नहीं
6: जा रहा है।
7: देवदत्त तो कर्म का है।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
8: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
9: महाराज जय हो,
10: महाराज जय हो, महाराज जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
12: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी, हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में।

0: शांत हो जाओ। आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
1: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
2: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
1: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
2: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
3: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
2: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
3: जी, मेरा नाम श्रुति है।
2: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
4: सूर्य ग्रह है या तारा?
2: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
1: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
2: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
1: अच्छा सर।
5: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
3: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
2: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
5: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
2: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
5: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
2: शाबाश, समझ गए ना?
1: जी सर।
3: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
5: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
2: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
1: जी सर।
2: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
2: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
5: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
2: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
1: जी सर।
2: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
5: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
2: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
1: जी सर।
3: सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
2: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक

0: होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
2: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
4: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का। ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं बलबीर सिंह कच्छ और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। पहले सुनिए बलबीर सिंह कच्छ और साथियों के स्वर में ये हल्बी गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोकसुधा। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं बलबीर सिंह कच्छ और उनके साथी।

0: जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोकसुधा में अभी आप सुन रहे थे हल्बी गीत। कलाकार थे बलबीर सिंह कच्छ और उनके साथी। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
3: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग

0: हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

शान और विजय येसुदास के स्वर में अभी आपने सुना इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का था और फिल्म का नाम था ढोल। आइए अब सुनते हैं अल्तमश फरीदी की आवाज़ में फिल्म खानदानी शफाखाना का ये गीत। गौतम जी शर्मा और गुरप्रीत सैनी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है रोचक कोहली ने।

राजनीति फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान और अंतरा मित्रा के स्वर में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था प्रीतम ने। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा धान की उन्नत सीधी बुवाई विधि। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉ. संजय द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक शस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। और आइए अब चित्रपट संगीत के कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं चमेली फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई है संदेश शांडिल्य ने।

सुनिधि चौहान के गाए चमेली फिल्म के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आइए आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज शाम 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओवल लंदन में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आप सुनेंगे रात 10:30 से मैच की समाप्ति तक। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

अभी 1:30 पर सुनिएगा शहरी महिलाओं की कार्यक्रम बिंदिया में। आज की बात विषय होगा जैसा रहे अन्न वैसा रहे मन। क्रम सृजन संसार में सुनिएगा प्रमदा ठाकुर की कहानी नामकरण। होगा क्रम कुछ बातें कुछ गीत और दीदी की सलाह। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ और युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युवावाणी सुनेंगे शाम 5:10 पर। इसमें अपन गोठ में सुनिए गांव में खेल के शुरुआत करो। क्रम माटी के आखिर में होगा गणेश्वर पटेल का कविता पाठ और होंगे माटी के गीत। शाम 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे रामशरण वैष्णव और साथी। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा ये माह के पशुपालन कार्य। शाम 7:30 पर किसानवाणी में सुनिए आज की सलाह कटहल के व्यावसायिक खेती। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अभय बिसेन। साथ ही सुनेगा आज का प्रश्न और बाजार भाव। मदन मेहर और साथियों को आप सुनेंगे रात 8:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में।

कही देबे धनी लास संदेश। श्री जीवन यदु राही का लिखा ये रूपक सुनिएगा रात 9:30 पर। प्रस्तुत करता होंगे मोहन सी रामानी। चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा दोपहर 2 बजे 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 9:15 और रात 10 बजे।

संदेश टू सोल्जर्स रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओवल लंदन में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आप सुनेंगे रात 10:30 से मैच की समाप्ति तक। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

बिंदिया कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को रीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगी और बदलते मौसम में अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही होंगी। तो चलिए बहनों, आज बात करते हैं रसोई से हमारे मन के रिश्तों की। बूढ़ी दादी कहती थी, बेटा अन्न ही ब्रह्म है, और विज्ञान भी आज यही कहता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये एक गहरा भारतीय दर्शन है, जिसका अर्थ है कि भोजन सीधे हमारे विचारों और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। ताजा और सात्विक शुद्ध आहार खाने से मन शांत रहता है, जबकि तामसिक या अशुद्ध भोजन से अशांति और तनाव बढ़ जाते हैं। बहनों, भोजन और मन का संबंध बहुत गहरा है। सात्विक भोजन, फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज और दूध मन में दया, शांति और एकाग्रता बढ़ाते हैं, जबकि अधिक मसाले युक्त भोजन, खट्टे नमकीन पदार्थ राजसिक भोजन कहलाते हैं। इससे अधिक महत्वाकांक्षा, उत्तेजना और बेचैनी हो सकती है। इसके अलावा नशीले पदार्थ और अन्य वर्जित खाद्य पदार्थों का सेवन तामसिक कहलाता है, जो क्रोध, आलस्य और नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। लेकिन श्रोता बहनों, अब हमें क्या करना होगा? आधुनिक युग में महिलाओं के पास समय की कमी होती है और काम का दबाव भी बहुत अधिक होता है। ऐसे मुश्किल हालातों में सात्विक भोजन बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। महिलाएं रसोई बनाते समय क्रोध, चिंता या तनाव बिल्कुल भी ना रखें, साथ ही सकारात्मक विचार, शांत मन और प्रेम की भावना से बनाई गई रसोई परिवार के शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी मजबूत करती है। रसोई बनाते समय डिब्बा बंद या फ्रोजन फूड की जगह ताजी सब्जियों का उपयोग करें। अत्यधिक मिर्च, गर्म मसालों का उपयोग कम करें। रेफ्रिजरेटर में कई दिनों तक का रखा हुआ बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। खाना उतना ही बनाएं जितना एक बार में खत्म हो सके। इस तरह आप अपना और परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं। तो बहनों, ये बातें तो ही खान पान की। बहनों, स्वस्थ मनोरंजन भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मधुर संगीत मन को सुकून देता है और दिल के तारों को स्वास्थ्य से जोड़ देता है। जब भी बेचैन हो मन, तो कोई धुन गुनगुना लिया करो। संगीत में है दवा छिपी, ये बात दिल को बता दिया करो।

0: धर्मवीर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। बहनों, कथा साहित्य अपने विचारों को, अपने भावों को प्रस्तुत करने का एक सरल माध्यम है। इसी क्रम में अब प्रस्तुत है कहानी नामकरण। कहानीकार हैं प्रमदा ठाकुर।
1: संजना को इस बात की बड़ी खुशी थी कि शादी आराम से निपट गई। चांद सी बहू पाकर संजना फूली नहीं समा रही थी। उस पर इतना सारा दहेज बिना मुंह खोले मिल गया। वैसे तो सुनील भी दहेज के पक्ष में नहीं थे, लेकिन लड़की वालों की तरफ से उन्हें बतौर शगुन एमबीटिया की विदाई का वास्ता देकर समधी जी ने दोनों पक्षों का मान रख लिया था। सभी ब्रांडेड कंपनी के सामान थे। दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाह संपन्न हुआ, जिसकी रिश्तेदारों में काफ़ी चर्चा भी हुई और तारीफ भी। सभी नाते रिश्तेदार जा चुके थे, बस कुछ घर में खास रिश्तेदार बचे हुए थे जिनके बीच एक दो रस्म बच गई जिन्हें निपटाना भी जरूरी था। एक तो बहू मृणाल के हाथों की रसोई, दूसरा बहू मृणाल का नया नाम जो उनके घर के खास रस्मों रिवाज में शामिल था। राहुल की बुआ जी भी अपने घर जाने की रट लगाने लगी थी, सो उस रस्म की अदायगी भी लाजमी थी। संजना अपनी देवरानी, बेटी रीता, बुआ सास, भाभियों के बीच बहू मृणाल के नए नाम पर उत्साहित थी और हंसी मजाक के साथ आने वाली खुशनुमा शाम का इंतजार भी कर रही थी। राहुल मन ही मन अपनी नवब्याहता पत्नी के लिए अनेक नाम सोचने लगा था, गूगल भी सर्च कर चुका था। ननंद रीता तो नामों की लिस्ट ही निकाल लाई थी। संजना की भी तहकीकात जारी थी, उसकी बहू का नाम एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, आखिर वो हमारे घर की बहू है, थोड़ा हटकर तो होना ही चाहिए। सब एक दूसरे का पत्ता काटने में लगे थे। हिंदी के शब्दकोश से ढेरों नाम के साथ बुआ जी भी अपना खाता खोले बैठी थी, लेकिन बुआ जी को मना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। खुद संजना के पति सुनील को भी नहीं थी। घर की सिर चढ़ी बेटी रीता ने कुछ विरोध जताया। क्या बुआ जी, यह भी कोई नाम है? मृगनैनी, मंदाकिनी, ये सब नाम आजकल नहीं चलते। रखना हो तो मुस्कान रखिए, लवली रखिए, स्वीटी प्रीटी, इनमें से कोई भी चॉइस कर। बात रीता की अधूरी रह गई। बुआ जी ने डपट दिया, चुप कर, प्रीटी स्वीटी ये भी भला कोई नाम होता है? रीता पैर पटकते वहाँ से चली गई। खैर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। बहू की रसोई थाली परसने का नेक तो हुआ, लेकिन नामकरण का मसला सरकारी योजना की तरह फाइल में बंद हो गया। यह डर तो सभी को सताने लगा था कि बुआ जी के जाने के बाद इस रस्म को करना आग में घी डालने के समान था। घर में बुआ जी की धाक और दबाव के सभी कायल थे, लिहाजा आज ही निपटाना भी जरूरी था। परिवार के सभी सदस्य आंगन में बैठकर सलाह मशवरा करने में लगे। हर कोई अपने अपने नाम के अर्थ और लेटेस्ट होने का दावा ठोक रहे थे। घर का कोई भी मेंबर एक दूसरे के मत से सहमत नहीं था, लिहाजा नामकरण का मसला बहुत जटिल होते जा रहा था। तभी राहुल बोल पड़ा, मुझे एक तरकीब सूझ रही है, कहो तो तुम सबको बतलाऊं। राहुल की बात समाप्त भी ना हो पाई थी कि संजना बोल पड़ी, हाँ हाँ बतलाना, रात के 12 बज गए, अभी तक हम लोग एक नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी बोल। संजना काफ़ी थकी हुई थी, जम्हाई लेते हुए बोली। राहुल ने कहा, क्यों ना चिट सिस्टम से नामकरण का मसला हल करें। सभी सदस्य अपनी अपनी तरफ से एक एक नाम लिखकर कटोरी में डालेंगे और मृणाल से चिट उठाने बोलेंगे, जो चिट मृणाल के हाथों आएगा वही उसका नाम रखा जाएगा। इससे आज की रस्म भी पूरी हो जाएगी और मृणाल को अपना नया नाम भी मिल जाएगा, है ना धासु आइडिया? राहुल की बात

पर सभी रजामंद हो गए। घर में कोई 10-12 मेंबर्स थे। सब ने अपनी अपनी पसंद के नामों को लिखकर एक कांच के कटोरे में डाल दिया और मृणाल को बुलाकर उसे निकालने को कहा। जो नाम मृणाल पढ़ेगी वही नाम उसे यहाँ दिया जाएगा। लगातार 2 दिवस चल रहे इस नामकरण का सत्र अब समापन की ओर बढ़ने लगा था। रीता दौड़कर मिठाई का डब्बा ले आई। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के कगार में था, लिहाजा मृणाल को कमरे से बुलाया गया। बड़े लाड़ प्यार से संजना ने उसे अपने पास बिठाया और इशारे से एक चिट निकालने को कहा। मृणाल, जो अब तक अपने कमरे में बैठी बैठी सारी बातें सुन रही थी, बाहर आकर दोनों हाथ जोड़ ससुर के सामने खड़ी हो गई और चिट उठाने से मना कर दिया। ससुर सुनील हैरान से देखते रह गए। बोली, क्या बात है बेटा, चिट उठाओ। आवाज़ में कोमलता के साथ नम्र आदेश भी था। रीता ने चूहलबाजी की, जल्दी से उठा लो भाभी, वरना राहुल भैया खुद ना उठा ले। बुआ जी ने कहा, अरे

हाथ जोड़ ससुर के सामने खड़ी हो गई और चिट उठाने से मना कर दिया। ससुर सुनील हैरान से देखते रह गए। बोली, क्या बात है बेटा, चिट उठाओ। आवाज़ में कोमलता के साथ नम्र आदेश भी था। रीता ने चूहलबाजी की, जल्दी से उठा लो भाभी, वरना राहुल भैया खुद ना उठा ले। बुआ जी ने कहा, अरे उसे बोलने तो दे, वह क्या बोलना चाहती है। बुआ जी ने कड़कती आवाज़ में कहा। मृणाल जो अब तक चुप बैठी थी बोल उठी, मम्मी जी मैं पहले क्षमा चाहती हूँ। फिर पापा जी सुनील की तरफ हाथ जोड़कर कहा, पापा जी मैं क्षमा चाहूँगी। उसने बड़ी कोमल व नम्रतापूर्वक एक ठहराव के साथ अपनी बात जारी रखी। उसने कहा, पापा जी क्या आप लोगों को दहेज में मिली चीज़ें, मेरा मतलब सोफ़ा आलमारी फ्रिज आदि पसंद नहीं आए। अरे बेटा तुमसे यह किसने कहा, जरा बतलाओ भी। सभी सामान तो ब्रांडेड कंपनियों के हैं, उत्तम क्वालिटी के हैं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। हमने तो बेटा कुछ मांगा भी नहीं था, जो मिला सामान वह भी तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। सुनील जी ने समझाते हुए पुनः कहा, देखो बेटा हमने तो दहेज की बात की नहीं थी, फिर तुम क्यों पूछ रही हो। बुआ जी ने हाथ नचाते हुए कहा, ए लो जब कुछ मांगा ही नहीं फिर भी तोहमत लगा रही हो। सुनील जी ने हाथ जोड़कर बुआ जी को मना करते हुए कहा, अरे उसे बोलने तो दो। हाँ बोलो बेटा, सुनील की आवाज़ में कोमल एहसास के साथ भरोसा भी परिलक्षित हो रहा था। मृणाल का साहस बढ़ा। मृणाल ने अपनी बात जारी रखी, पापा जी दहेज की सारी चीज़ें मेरे मम्मी पापा ने खुद पसंद कर लिया, क्वालिटी पर ध्यान दिया, तो क्या आप लोग उसे बदल देंगे। सुनील जी तपाक से बोल उठे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन सामानों में तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद है, स्नेह प्यार शगुन है। भाई हमें तो कोई शिकायत नहीं और ना ही हमारे घर में ऐसी बातें होती, मगर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो। क्या राहुल या रीता ने तुम्हें कुछ कहा। राहुल बीच में बोल उठा, नहीं पापा जी मैं भला क्यों बोलूँगा। रीता ने भी घबरा कर अपनी सफाई देनी शुरू कर दी, लेकिन मृणाल ने उन दोनों से क्षमा याचना करते हुए कहा, नहीं पापा जी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। पुनः यह सवाल क्यों उठा रही हो मृणाल, बेटा सुनील ने बहुत कोमल स्वर में पूछा। तब मृणाल ने कहना शुरू किया, जब किसी की शादी होती है तब वो अपना सब कुछ मायके में छोड़ आती है, ससुराल आते ही उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है, उसका रहन सहन ही नहीं पूरा वजूद बदल जाता है, उसे अपने अतीत को छोड़कर आने वाली नई दुनिया को अपनाना होता है। जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी शादी सगाई इन सब में एक ही चीज़ है जो उसका अपना अपनी पहचान उसके माता पिता से मिलती है। यहाँ तक हमारी शादी से पूर्व कुंडली का मिलान भी हमारे नाम से किया गया था। सब दम साधे मृणाल की बातें तन्मयता से सुने जा रहे थे। कभी कोई बोलना चाहता तो सुनील जी इशारे से मना कर देते। मृणाल अपने रो में बोले जा रही थी, यहाँ तक कॉलेज स्कूल प्रमाण पत्र हो या बैंक अकाउंट हो, सभी में आधार कार्ड या अन्य कोई भी जरूरी कागजात हो, वही नाम इस्तेमाल किया जाता है जो माँ बाप हमें जन्म से देते हैं। यह हर माँ बाप का सपना होता है जो नाम वे हमारे जन्म के पूर्व सोच लिया करते हैं। हमारा यही नाम हमारी व्यक्तिगत पहचान बन जाती है। जब दहेज की वस्तुओं में माता पिता का आशीर्वाद होता है, शगुन के रूप में स्वीकार किया जाता है, तब शादी के बाद हमारा वही नाम क्यों स्वीकार नहीं किया जाता। मृणाल की बातें सभी दम साधे सुन रहे थे। अभी बातें पूरी नहीं हुई थी, उसने बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बातें जारी रखी, पापा जी क्या मेरा नाम मेरे मम्मी पापा ने अच्छा नहीं रखा। लड़कियों का बस यही नाम तो है जो उसे अपने मायके से जोड़ रखता है, वरना हर लड़की का सारा जीवन और वजूद तो शादी के बाद ही बदल जाता है। हम बेटियों को बहुत तकलीफ़ होती है जब हमसे वह नाम भी छीन जाता है जिसके साथ हम बचपन से अभी तक का सफ़र करते आते हैं। बचपन से लेकर यही एक नाम है जो हमारे अतीत से हमें जोड़े रखता है। बहुत कठिन है पापा जी अपने नाम को मिटाकर नया नाम अपनाना। मैं कल से इसी बात से कश्मकश से गुजर रही थी, लेकिन आज सबके सामने मैंने अपनी दुविधा रख दी। अब आप लोग जो सोचेंगे मैं उसे निभाने के लिए प्रयत्नशील रहूँगी। मृणाल की बातों से कुछ देर सन्नाटा सा छा गया। सभी हतप्रभ थे। इस रिवाज के अंदर लड़कियों की मानसिकता का अब तक कोई अवलोकन नहीं हुआ।

0: रिवाज की परिपाटी जो उनके घर में स्थापित थी उसकी इतनी गहराई से विवेचना भी हो सकती है। सुनील जी अपनी जगह से उठे, बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा, सच है बेटा, नाम का बदल जाना, वजूद का मिट जाना होता है। इतनी गहराई से हमने कभी सोचा ही नहीं था। सच है, बच्चों के नाम के साथ अप्रत्यक्ष रूप से उनके माता पिता का वजूद कायम रहता है। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम मृणाल ही रहेगा। अब खुश? मृणाल की आंखें भर आई, आंचल संभाल कर उसने ससुर जी के चरणों में अपना माथा टेक दिया।
1: नामकरण। अभी आपने पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी सुनी। कहानीकार थी प्रमदा ठाकुर। और बहनों, अब बारी है कुछ बातें कुछ गीत की। कुछ तो चाहत होगी इन बारिश की बूंदों की, वरना कौन गिरता है इस जमी पर आसमां तक पहुंचने के बाद। बहनों, इन दिनों गर्मी से कुछ राहत मिली और बारिश के रिमझिम फुहारों का मौसम बन चुका है। गर्मी की तपिश के बाद ये मौसम हम सभी को ठंडक दे रहा है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, ठंडी हवाओं के झोंके और पानी की बूंदों का मधुर संगीत मन को सुकून दे जाता है। और इस समय बारिश में भीगे भीगे फिल्मी गीत इसी मन को रोमांचित कर जाते हैं। मौसम की पहली बारिश में तुम मिले, जैसे धरती मिल गई हो आसमां से।

गुलाम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। जतिन ललित के संगीत निर्देशन में रचना थी समीर की, आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। बहनों, बारिश के आते ही प्रकृति का रूप पूरी तरह बदल जाता है।

चारों तरफ एक नई जिंदगी और ताजगी का एहसास होने लगता है और इस मौसम में मन के भाव भी शब्द बन जाते हैं। न जाने क्यों आपकी याद आ गई, मौसम क्या बदला, बरसात भी आ गई। मैंने छू कर देखा बूंदों को तो हर बूंद में आपकी तस्वीर नजर आ गई।

फूल और कांटे इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शब्द रचना रानी मलिक की थी, संगीत दिया था नदीम शवर ने, आवाजें थी कुमार सानू और अनुराधा पौंडवाल की। और अब बारी है बहनों आपकी दीदी के सुझाव की। बहनों बारिश के दिनों में नमी के कारण और बालों की उचित देखभाल ना होने से अक्सर रूसी होने लगती है। डैंड्रफ को दूर करने के लिए 2 चम्मच गुनगुने नारियल तेल में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर 10 मिनट मालिश करें और आधे घंटे के बाद इसे शैम्पू कर लें। और अगर इससे भी आराम ना मिले तो सादे दही को सिर की त्वचा और बालों में लगाएं, उसे कुछ मिनट सूखने दें और फिर शैम्पू से साफ कर लें। इसके अलावा अपने आहार पर भी विशेष ध्यान दें। डाइट में विटामिन और जिंक से भरपूर आहार शामिल करें। इसके साथ ही आपकी मित्र रीता श्रीवास्तव आपसे इजाजत चाहती है। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम बिंदिया। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: अनुपमा फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। कैफे आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल।

सुराग फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। कैफे आज़मी के बोल थे, संगीत बप्पी लहरी का था। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और अमित कुमार के स्वर में गुलशन बाबरा की रचना। संगीत आर डी बर्मन का है और फिल्म का नाम है जवानी।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव

0: वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मानसून के मौसम में 21,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ.

0: जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और AI सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर

0: से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म सुजाता का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यारे का
1: कुछ आवाजें गीतों के संग घुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

0: आनंद बख्शी की रचना अभी आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था दुश्मन।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आप।

आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हो फिर पढ़ के भुला जाते हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तैं मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है समाधि।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म का नाम था प्रिंस। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। अगले गीत के लिए आवाज गीता दत्त की है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं ओपी नैयर और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

0: कंपन होती है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
3: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
4: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुआ। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरी पिल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic.

शकील बदायूनी का लिखा यह गीत था। नौशाद के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर की आवाज थी। फिल्म का नाम था आदमी। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब

नमस्कार। दोपहर की धूप जब अपने पूरे उजास के साथ धरती पर बिखर जाती है, तब मन भी चाहता है कि दिन की एक रस्ता में कुछ सुरों की चंचलता घुल जाए, कुछ ऐसी धुनें जिनमें पांव अनायास ही लय पकड़ लें, अधरों पर मुस्कान उतर आए और स्मृतियां भी गुनगुनाने लगें। तो आइए, आज की इस मधुर बेला में आपका स्वागत है, एक ऐसे संगीत सफर में जहां सुनहरे फिल्मी संगीत की चपल धुनें, मादक लय और उत्साह से भरे तराने आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके और हमारे मनपसंद कार्यक्रम मन भावन में। मैं हूं प्रियांशी भटनागर और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और अपने संदेश ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई बात जो मन में ठहर गई हो, कोई छोटा सा संकल्प या स्नेह भरा संदेश, अपने मनपसंद गीत के साथ हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी इन भावनाओं को हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकें। तो श्रोताओं, देर किस बात की, हमें भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर। हमारा ईमेल पता है fmgoldairdelhi@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने प्रिय गीत भेज सकते हैं 9868868753 पर। मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ, ईमेल है fmgoldairdelhi@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर अपने प्रिय गीत भेज सकते हैं 9868868753 पर। आज मन भावन कार्यक्रम में सुनते हैं आपकी फरमाइशों से सजा वो संगीत जिसने कभी महफिलों में उल्लास जगाया, युवाओं के कदमों को लय दी और अनगिनत दिलों की धड़कनों में अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। तो आइए, इस सुरमई दोपहर को कुछ और सजीव, कुछ और स्पंदित बना दें उन गीतों के साथ जिनकी लय आज भी मन को सहज ही झूमने पर विवश कर देती है। आइए कार्यक्रम का आरंभ करें।

संगीत की इस रोमांचक लहर के बाद आइए सुनते हैं अब आपकी आवाज। देखते हैं कौन कौन हमें संदेश भेज रहा है और कौन सा गीत आपने दिल से चुनकर हमें भेजा है। अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने अर्चना, प्रणय और हीरामन शेंडे इनके साथ हैं। शिवाजी नगर से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर, इंदिराबाई और छकुलीताई। खांडवी बुढ़ाना से दीपाली रामधाड़े और स्वराज रामधाड़े हमें लिख रहे हैं। और अमरावती से सुनैना और तनुज पवन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। खंडवा मध्य प्रदेश से ममता और संजय मारकंडे और इनके साथ हैं बेबी किटू। और सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशा जी, सोनाली और सईद मसरूर भी इनके साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, आपके अन्य संदेश भी पढ़ेंगे इस अत्यंत रोमांचक गीत के बाद।

आइए श्रोताओं, अब फिर आपके भेजे हुए कुछ संदेश पढ़ें। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल भी हमारे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी और आकाशा चावला हमारे साथ जुड़े हैं। इनके साथ और भी हमारे साथ सुन रहे हैं कुमारी अंकिता जोशी और बेबी वैदेही और बेबी हंसिका। करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष, अमर, हितेश और बंटी हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और पृथव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, अब फिर चलें हमारे संगीत सफर पर। आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी भटनागर आपके साथ जुड़ी हूँ। कार्यक्रम है मन भावन, वो सुनहरा सरोवर जहाँ सिर्फ सुर कानों तक नहीं पहुँचते, दिल को भी छूते हैं। तो आइए आपके भेजे हुए और संदेशों पर भी नजर डालें। ऊपरकोट चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्याला से उमेश कुमार, दिनेश, अनुज और सोनित हमारे साथ जुड़े हैं। कोहका भिलई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत, आयुष

और नंदिनी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये अगला गीत। पर उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी भी हमें अपना प्रिय गीत और संदेश नहीं भेजा है तो जल्द ही लिख भेजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर। मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ, हमारा ईमेल पता है fmgoldairdelhi@gmail.com और हमें आपकी ईमेल का बहुत इंतजार है। जल्द ही लिख भेजिए अपना फरमाइशी गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर और भेज दीजिए हमें। आइए फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

आइए श्रोताओं, अब फिर समय हो चला है आपके भेजे हुए संदेश पढ़ने का। संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं आपके मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार शेख शागीर, शेख वजीर, सोहेल शेख, सईद तैमूर, शामीर खान और अलजान के। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या कुमारी हमारे साथ जुड़े हैं। पिंगावाला चौक जालंधर पंजाब से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत और कमल

रानी हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तम नगर नई दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

और पप्पी भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी जुड़े हैं और ग्राम लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और इनके पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से संदेश प्राप्त हुआ है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी हमारे साथ जुड़े हैं। सराय सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ अंसारी। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये रोमांचक गीत।

श्रोताओं, समय शीघ्र ही इशारा करने वाला है, पर आइए पहले आपके कुछ और नाम शामिल कर लें। अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और पूरा रामेकर परिवार हमारे साथ जुड़ा है। कमलकांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता बहुत देर से हमारे इंतजार में हैं पिपरिया से। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया हमारे साथ जुड़े हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और छत्रपति संभाजी नगर से पार्थ रेडियो क्लब के श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आइए श्रोताओं, इनकी फरमाइश पर अगला गीत सुनेंगे, पर उससे पहले आपसे भी विदा ले लें। आपकी फरमाइशों ने इस दोपहर को नई लय, नई उमंग और एक मधुर चंचलता से भर दिया। जिन गीतों ने कभी अनगिनत कदमों को थिरकने का निमंत्रण दिया था, उन्होंने आज भी अपनी वही ताजगी और आकर्षण बिखेरा। श्रोताओं, आपके संदेश, आपकी शुभकामनाएं और आपका स्नेह हमारे लिए सदैव अमूल्य है। हमें यथासंभव आपकी अधिक से अधिक फरमाइशें इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी फरमाइश आज ना शामिल हो पाई हो तो हमारी व्यवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा और अपने मनपसंद गीतों की ये डोर यूं ही हमसे जोड़े रखिएगा। इसी आत्मीयता के साथ मैं प्रियांशी भटनागर आपसे अनुमति चाहूंगी। मिलते हैं फिर समाचार के पश्चात। जुड़े रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 1.6 नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका, आपके साथ शाहिद और आप इंस्पेक्टर कुमार ऋतु राज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल के तरफ से, मैं कुमार ऋतुराज, सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत पूर्ण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक मोइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर, अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया?
1: ये सफर तो काफी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है, ऑफिसर से लेकर जितने आपके सबऑर्डिनेट है, जितने भी कार्मिक हैं,
0: जी,
1: तो इसमें मेहनत करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सब योगदान इसमें था, भले मेडल ऐसी, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे अपने काम करने वाले पार्टी हैं, सबका महत्वपूर्ण काम होता है। जी,
0: एक टीम वर्क है, लेकिन सर आप सबसे करके अपनी पहचान जो ऑप्शंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी आप सक्सेसफुल रहे तो आइए
1: जी। ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हमारा सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, हमारे कमांडेंट श्री दीपक और सुमित डीआईजी थे जो अभी आईजी हैं, और संजय सर थे वो ईयर में थे, उनका इन लोग का बहुत हमको हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, हमेशा इसी पहले शुरुआत से ही होता था कि कम से कम हम लोग का ज्यादा हम क्षति कर सकें, तो अभी तक जो हुआ
0: जी आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो

0: बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत जबरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेंस फॉरेस्ट है कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन काफी चली, परिणाम
1: और

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला इनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: उसमें 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा।
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था, उसमें बहुत
0: अच्छा।
1: सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था, ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये

0: पहला इनकाउंटर था
1: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
0: हमने नहीं, हमारी टीम और हाँ सब
1: एसएसबी की जी. टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिल करके।
0: कुछ कोई ऐसा नहीं होता कि कोई कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी।
0: हाँ एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबका सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आपको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: और सर हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप। तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
0: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
1: अच्छा
0: जी जी जी हाँ।
1: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
0: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
1: जी। फिर तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
0: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स। अच्छा। में ज्वाइन किया जी
1: जी। तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
0: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
1: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
0: हाँ टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
1: अच्छा।
0: भी एनडीएफबी के खिलाफ काम हम लोग किए जो मेरी टीम थी उसके साथ।
1: अच्छा।
0: हाँ वहाँ फिर एनडीएफबी के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
1: तो सर आपकी जो जी, एक तो एसएसबी का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
0: हाँ
1: जी। इंडो भूटान तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
0: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय असम जल रही थी एनडीएबी का उससे।
1: अच्छा।
0: तो उसमें एनडीएबी पर भी हम लोग काफ़ी काम किए थे, हमारे बटालियन एसएसबी बहुत अच्छा काम किए थी उसमें। उसमें एनडीएबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय जी।
1: अच्छा। हाँ तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: जनरल ड्यूटी जी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
1: तो ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
0: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
1: जी।
0: हाँ और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सलोनबारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की?
0: सलोनबारी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
1: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग।
0: हाँ उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
1: तो 23 बटालियन असम में आपने शुरुआत? अच्छा।
0: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से शुरुआत।
1: अच्छा।
0: हुआ जी।
1: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
0: हाँ असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई गांव में। 31st बटालियन जी जी।
1: अच्छा।
0: जी जी।
1: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे?
0: हाँ 32 बटालियन, उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था।
1: अच्छा।
0: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई।
1: अच्छा।
0: असम में आ गई हॉली में जी।
1: ओके। तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं?
0: हाँ 72 बटालियन सिक्किम युक्सुंग में मेरी पोस्टिंग हुई है।
1: अच्छा एक चीज़ सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग्स रहीं जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है?
0: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश

0: रहता है कि ख़त्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
1: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
0: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का। उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी।
1: जी
0: जी हाँ।
1: लेकिन तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
0: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा वो, उस चीज़ को हम याद
1: अच्छा
0: करते हैं। जी हाँ।
1: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था।
0: जी
1: जी, तो इसको आप सबसे ज़्यादा याद रखते हैं?
0: जी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा। टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हर छोटे चीज़ से हर बड़े चीज़ में।
1: जी
0: जी जी जी।
1: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
0: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
1: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
0: हाँ, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है।
1: जी जी,
0: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा। क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
1: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
0: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है, तब ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं।
0: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं।
1: जी,
0: तो
1: ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ, ग्रेजुएशन
1: क्राइटेरिया। जी सर, हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड RJ साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ओवर बिलवड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माय ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्टफेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोधे फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से, जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम, आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए।
0: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है, तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
1: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी, अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं,
0: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार हैं ये जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी। ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
0: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
0: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
1: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही

0: आपने रिलेटेड चीजें
1: फोर से ही मैंने जी जी
0: जी आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर कभी कोर्स किया है सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये जी।
0: अच्छा।
1: इसमें कैसे कैसे नक्सल से कैसे आतंकवादी से लड़ना ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे एसएसबी में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है और ज़्यादा हार्श और ज़्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं
0: अच्छा
1: खाना। और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है,
0: ओके,
1: कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है।
0: अच्छा,
1: चलने से लेकर हर चीज। और
0: अच्छा,
1: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल
0: अच्छा,
1: से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी,
0: पूरा टैक्टिक्स। तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर
1: जी जी,
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके?
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी जी जी। जंगल
0: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरमेंट में अपने आपको ढालना होता है,
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है।
0: अच्छा।
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया और फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है।
0: तो एक लीटर पानी में,
1: 1 लीटर पानी में,
0: और वो भी 72 घंटे,
1: 72 घंटे इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे उसमें आपको एकदम।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है।
0: 1 महीना?
1: जी जी जी जी।
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज। मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ वो सब भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है?
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं।
0: अच्छा, यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा भरे रखते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल।
1: जी जी जी, हाँ, तो हो जाता है उसमें।
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
0: अच्छा।
1: तो हाँ, तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो हाँ, कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है।
0: अच्छा।
1: अचानक सब चीज़ होता है,
0: पहले से नहीं बताते?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके।
1: हाँ,
0: एक तरह से ड्रिल
1: ड्रिल ड्रिल। हाँ,
0: अच्छा,
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
0: यानी कि एक भी कोई अगर कमजोर पड़ा,
1: कमजोर
0: पूरी टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी। हाँ,
1: तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है,
0: मोटिवेटेड रखने।
1: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा टीम के रूप में ही उनको ढाला जाता है।
0: सर अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
1: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। जी हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं
0: जी।
1: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
0: जी
1: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे
0: जी। आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं, रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
1: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर
0: अच्छा
1: करना है जी, उसके
0: अच्छा
1: उसके बारे में।
0: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आपको

0: मजबूत बना सके, वो भी आपने किया हुआ है।
1: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना
0: जी, जी
1: उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है।
0: जी जी सर, ये जो अब जैसे हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
1: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
0: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
1: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब एंजॉय ही किया।
0: अच्छा। जी सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: राजवीर का यहाँ पर मैसेज आया है और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूँ, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर आपका कोई रिएक्शन?
1: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
0: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गाँव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
1: जय हिंद आपको भी।
0: आपकी सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचरस और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतु राज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में, जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए
0: जी,
1: जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफरेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा,
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: ओके।
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजीडी चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं।

0: सर आपके लिए, आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिल के काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए। मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज। इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: यह खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर्स शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद, भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं। सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके एसएसबी में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड वन से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं। और ये भी बताएं कि एसएसबी के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुँचाएं अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
0: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
1: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
0: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
1: जय हिंद आपको भी।

तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए, बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर

0: बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 5 बजे हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: भी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये बंसी

0: जोधपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये पिंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, अखोरा, कुंदी कला, जामदोहर, बदौली, रेवतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये पड़ौली, जमीरा, मसगा, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, गढ़गांव, बरडाण, दाती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये अम्बाचुआ, जामटोली, टुकुपानी, बोडालता, कूड़ेकेला, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 106 है। ये कूड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोड़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये गीत कुंवारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये चारमार, नागदरहा, पंडरी पानी, चिमटा पानी, बंगूरसिया, जुनवानी, भैंस गढ़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मोहदा, सहिया भाटा, बरबसपुर, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर, खुदमुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओड़, ताराझर, डडई पानी, होलापारा, बुडार, जिडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आइए आपको हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओवल लंदन में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आप सुनेंगे रात 10:30

अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे। इसमें अपन गोठ में सुनिए गांव मां खेल के शुरुआत कराओ। क्रम माटी के आखिर में होगा गणेश्वर पटेल का कविता पाठ और होंगे माटी के गीत। शाम 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे रामशरण वैष्णव और साथी। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा ये माह के पशुपालन कार्य। शाम 7:30 पर किसानवाणी में सुनिए आज की सलाह कटहल के व्यावसायिक खेती। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अभय बिसेन। साथ ही सुनिएगा आज का प्रश्न और बाजार भाव। मदन मेहर और साथियों को आप सुनेंगे रात 8:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में। कही देवे धनीला संदेश श्री जीवन यदुराही का लिखा ये रूपक सुनिएगा रात 9:30 पर। प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहन सी रामानी। चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा शाम 7:00, रात 8:00, रात 9:15 और रात 10:00। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और अब सुनिए कल के कार्यक्रमों की जानकारी। कल रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम करंट अफेयर्स। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:00 आप सुनेंगे वायलिन वादन वसंत तिमोथी से। राग होगा जन सम्मोहिनी। कल सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इनसे मिलिए भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी श्री रघुवीर यादव से भेंटवार्ता आप सुन सकते हैं कल इस कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर। भेंट करता होंगी सुप्रिया भारतीयन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति होगा। कल सुबह 9:00 कार्यक्रम नवा बिहान में सुनिएगा एक पेड़ माँ के नाम 2026। इस विषय पर पर्यावरणविद श्री राम नारायण यादव ले वीरभान साहू के बातचीत। कल सुबह 9:40 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे संतोष दिवाकर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 10:00 भी आप सुनेंगे वसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग नट भैरव। कल दोपहर 12:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल दोपहर 12:30 पर सुनिएगा बेगम अख्तर को। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल दोपहर 1:30 पर पंडित पृथ्वीराज कुमार का पखावज पर बजाया राग ताल चौताल आप सुनेंगे। कल शाम 5:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ और कल शाम 5:10 पर युवाणी में युवा श्रोता सुनेंगे क्रमाज कल में रिश्तों की शुरुआत के लिए चाहिए एक पहल होगा क्रम मार्गदर्शन और अपनी पसंद। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: वर्षा के आहोले बाद बैठे हमार माया रुख संगवारी मल्ला तुहर मितान सुमित तिवारी के राम राम
1: संग मा महू आयो तुहर मितानी तृप्ति भारती और डहाले झोकाओ जय जोहार।
0: तृप्ति ओ सब बने बने
1: एकदम बढ़िया। सुमित आज भारी देर कर देस भाई आए मा
0: या काला बताओ मैं ना गांव को चल दे रही हूँ। तृप्ति
1: कैसे कुछ विशेष कार्यक्रम की बिहाव न्योता सा पे

0: ये लगे रहे।
1: नहीं जी, बिहावी नहीं होता, नहीं रही से,
0: हाँ?
1: एक ठन थोड़ा जरूरी काम रही से मोर।
0: अच्छा, सियान मन कहे है सुमित कि अपन संगवारी मन तेरा कुछ छिपाना नहीं चाहिए।
1: या यार, देखा था संगी हुए ला, किसे कहा था वे? ले ले बतावा था हूँ, है ना, का हुई से मुर्गाम ना एक ठन दुचारी कड़सन के ना परिया जमीन खाली पड़े हवे, ता ओला सब घुरुआ सन ना कांदी कचरा फेंक दे ओमा। तब हम सबो संगवारी मन हा सोचे कि ये जगह के कोनो विशेष है ना उपयोग होना चाहिए इसी के। तब हम सबो जन संगवारी मन मिल के ना वो जगह साफ सफा करे हन और बने खेल के मैदान असन बना दे हमन, है ना, और वही सफाई करे बर मैं गे रहे हूँ। आह का मस्त बढ़िया हमार मेहनत के फल मिलिस तृप्ति, बड़ सुग्घर अकन वो मैदान हो गए है। अब माँ क्रिकेट फुटबॉल हॉकी जैसे ना बड़े बड़े खेल और आसानी से खेल सकबो।
0: माने बनेज बड़का मैदान मिल गए लइका मन ला।
1: हाँ तृप्ति, गांव में सब पारंपरिक खेल तो खेलबेज करते, फिर बड़का अंतरराष्ट्रीय खेल तक जरूरी है, तभी तक गांव के नाम विश्व पटल में आगुआ ही।
0: सिरतोन कहा था सुमित, एक बेरा रही जब गांव में सिर्फ गिल्ली डंडा पचरंगा खो खो बांटी भौरा खेले जाए, फिर बेरा के संग संग गांव में लइका मन घलो ओलंपिक विश्व कप जिसे खेल के सपना दिखा थे।
1: भाई पहली के जमाना में कोनो लेका कहती ना कि हाँ। मैं हाँ ओलंपिक खेलूं की के तान भाई के गांव वाले मन हाँस दे कि खेलकूद में कुछ नहीं रखे जी, है का कर खेलकूद के की के। फिर अब वही लेका मन है ना आज भारत देश भर मेडल ऊपर मेडल लावत हवे।
0: संगी हो, खेल के असली ताकत का हरे जानते हो?
1: का हरे तृप्ति?
0: खेल सिर्फ हार जीत नो हरी, खेल माने अनुशासन, आत्मविश्वास, भाईचारा और स्वस्थ जीवन के आधार।
1: गोट गोट भाई, जैन गांव में खेल के माहौल रहते ना वहाँ के लइका मन गलत संगति के रद्दले ना दुरिया जते। संगी हो,
0: संगी हो, इतिहास गवाह है बड़े बड़े खिलाड़ी मन गांव ले ही निकल थे।
1: संगी हो, खिलाड़ी जब मैदान में उतरते ना तो अपन बन नहीं भलुक अपन देश भर खेलते।
0: पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ये सोच हा मुला नहीं समझ आई सुमित।
1: बिल्कुल संगी, यहाँ ना है ना अति अति ले बचाया बर बोले गेरी से, फिर समझ के फिर है और वो खर आने अर्थ हो गए। अब आज के बेरा में जत का पढ़ना जरूरी है ना उतके खेल और कूद जरूरी है। पढ़े ले बौद्धिक विकास होते और खेल कूद ले भौतिक विकास होते।
0: संगवारी हो, पारंपरिक खेल सीमित दायरा तक रही थे, फिर अंतरराष्ट्रीय खेल हा विश्व मा पहचान देवा थे।
1: फिर इसका मतलब ये नो है संगी हो कि अपन मूल खेल भुला जमन, भलुक पारंपरिक संग खेल के आनंद लेवन।
0: पोटगोट के सुमित, यही कारण है कि गांव में खेल ला बढ़ावा देना बड़ जरूरी है। गांव में मैदान है, हमन बने आसपास के 10-15 गांव ला सकेल के ऐसे खेल जिन अंतरराष्ट्रीय पहचान देवा थे। क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन कुश्ती जैसे खेल के प्रतियोगिता करना चाहिए, जेखर ले लइका मन के विकास और प्रतियोगिता के भावना
1: जागे जाते। बिल्कुल भाई संगी हो, गाँव के माटी में मेहनत हमला पहली ले सनाए मिलते, बस वाला सही बेरा सही जगह चाहिए सफल होए बर।
0: सेतो आज के बेरा माना संगी हो, सरकार तको कई खेल संगठन के माध्यम ले प्रतिभा लख हो जाते।
1: सेतोन कहा था खेलो इंडिया, फिट इंडिया, खेलो प्रतियोगिता जैसन योजना मन के माध्यम ले खेल में तको करियर बनाए के मौका मिले था वे युवा मल्ला और संगे संग देश के प्रतिनिधित्व करके मान अलग बढ़ावा था भाई।
0: संगवारी हो, खेल के एक बहुत सुंदर गोट है कि खेल मा भेदभाव नहीं होवे, ये मा न धनवान न निर्धन, न बड़े न छोटे होवे, जिन मेहनत करते वो आगु बार थे।
1: तो संगी हो, पढ़ो लिखो और संग मा खेलो कूदो और बने बने नाव कमाओ, माटी के खुशबू खेल के रंग गाँव के लड़का बढ़ाते संग संग, विश्व मंच मा चमक जाही जब वो दुनिया में जीत सकते गांव के मन।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहो माटी के सुघर गीत ला जौनला अपन सुघर सुर म पिरो रहिन गरिमा दिवाकर ह।
1: अभी अपन अंतसले सुने बर चाहरिन हमार ये संगी मन है, जिन मन है बेमेतरा ले भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा मन। हिंसा महासमुंद ले हावे अदालत दास वैष्णव, मानस, शांति, ऋचा, गायत्री, भिकम दास मानिकपुरी मन है। और पांडुगाले संगवारी हावे नरोत्तम कश्यप, नीतू, मोहनीश, अनुराग कश्यप मन है। धवलपुर गरिया बनले संगवारी मन हावे गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांति, प्रतीक्षा, अर्चना, धनंजय मिश्रा। पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता मन। और भाटापारा ले संगी मन हावे दान सिंह रावत, दानू पद्मनी, शुभम सौरभ रावत संगी मन हा।
0: संगवारी हो माटी हमर महतारी हवे, जिहा के कण कण मा मया और मिठास भरे हवे। माटी हमर मितान बरोबर हवे, जेखर आशीर्वाद ले हमर कोठी खुशहाल रही थे, और हमर कोठी खुशहाल रही थे तो हमर जीवन खुशहाल रही थे। संगी हो पुरखा मन कही थे कि मनखे चाहे कतकोन बड़े धनवान बन जाए, फिर अपन माटी ला कभू नहीं बिसराना चाहिए। माटी के ऋण हम जम्मो मन के ऊपर रही थे, जेनला चुकाए बर हमन ला यहाँ की बोली, भाषा और रीति रिवाज ला सहेज के राखे बर पर ही।
1: और संगी हो यही भाव ला अपन कविता संग पिरोवत हमार आज के क्रम माटी के आखर मा अपन कविता पाठ लधर के आए है गणेश्वर पटेल। ता आवा संगी हो सुनथन क्रम माटी के आखर।
2: पर्यावरण संरक्षण में आधारित कविता, ते उजार जन रे ते जन उजारना। पंछी परवना उड़ा जाही रे, कोलिहा भालू बेंदरा भगा जाही ना। तय उजार जन रे तय जन उजार ना, तय उजार जन रे तय जन उजार ना। हवा पानी सब फो सिरा जाही रे, अंतस भिगोए छैहा गवा जाही ना। तय झन कटाबे रे तय झन लुआबे ना, तय उजार जन रे तय झन उजार ना। रुख राई के हरियाली सब उड़ा जाही रे, पान पतयो डूहर जुच्छा सुखा जाही ना। तय झन कटाबे रे तय झन लुआबे ना, तय उजार जन रे तय झन उजार ना। पंछी परवना उड़ा जाही रे, कोलिहा भालू बेंदरा भगा जाही ना। तय उजार जन रे तय जन उजार ना, तय उजार जन रे तय जन उजार ना। जमीन जंगल में जियैया एकर बिन तड़प जाही रे, कहाँ जाही कहाँ लुकायऊ कहाँ थी राही ना। तय झन कटाबे रे तय झन लुआबे ना, तय झन उजार रे तय उजार झन ना। कोहली अपने कुहकीला कहाँ सुनाही रे, हाथी कोलिया बेंदरा सबो कहाँ नरियाही ना। सुआ अपन खोंदरा ला कहाँ बनाही रे, हिरन शेर भालू अब कहाँ भगाही ना। तय उजार झन रे तय झन उजार ना, तय उजार झन रे तय झन उजार ना। पंछी परवना उड़ा जाही रे, कोलिहा भालू बेंदरा भगा जाही ना। तय उजार झन रे तय झन उजार ना। संगवारी हो मोर दूसरा कविता है मया के गोदना। हमार छत्तीसगढ़ी जो परंपरा है वो बहुत समृद्ध है, तो ओकरले संबंधित एक है गोदना। तो गोदना से संबंधित एक ठन कविता मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ओकर जो शीर्षक है मया के गोदना। चल गोदवाई ले बो ए संगी मया के गोदना ला गोदवाई ले बो, चल गोदवाई ले बो ए संगी मया के गोदना ला गोदवाई ले बो। मुझ हंसी ला देख मन

हरियाले त्यों मया के गोदना लंतस माँ बसाई ले त्यों दोनों के मया ला गोदना चिन्हा माँ बनाई ले त्यों घेरी बेरी देख देख तोरे सुरता लमाई ले त्यों चल गोदवाई ले बो ए संगी मया के गोदना ला गोदवाई ले बो चल गोदवाई ले बो ए संगी मया के गोदना ला गोदवाई ले बो जिंदगी म मोर उजियारी ला बगराई ले तो रोज रोज सूरज कस बिहनिया मोला निंदिया ले उठाई दे तो बगरे अंधियारी माँ चंदनी बन मुछ मुछ मुस्काई ले तो बगरे चंदनी कस मोर मया ला बगराई ले तो चल गोदवाई ले बो ए संगी मया के गोदना ला गोदवाई ले बो चल गोदवाई ले बो ए संगी मया के गोदना ला गोदवाई ले बो बगिया के मोंगरा फूल कस बन के मोरे जिंदगी मा आए जाते हो आके मोरे जिंदगी ला महर महर महकाई ले तो आ जाबे संगी मोरे मन हा अघाए हे मया के दू कांवरा खावा के मोरे जिंदगी ला बचाई ले तो चल गोदवाई ले बो ए संगी मया के गोदना ला गोदवाई ले बो चल छपवाई ले बो ए संगी मया के गोदना ला छपवाई ले बो मोरे जिंदगी के करिया पन्ना मा रंग रोगन लगाई ले तो जिंदगी ला मोरे संगी रंग बिरंगी बनाई ले तो जिंदगी के कोरा पन्ना मा मया ला उकेर ले तो मया के रंग रंग चिड़ चित्रकारी ला उड़ेल दे तो चल गोदवाई ले बो ए संगी मया के गोदना ला गोदवाई ले बो चल गोदवाई ले बो ए संगी मया के गोदना ला गोदवाई ले बो। तीसरा जो कविता है ओकर जो शीर्षक है अपन हक बर गोटकार बनो गांधी और सुंदर लाल बनो। तो सबो अपन हक बर लड़त है हमर गुर्दा कब जागही रे चुप्पे बैठ मिटकाए बैठे हन हमर अभिमान कब जागही रे अपन हक बर गोटकार बनाओ गांधी और सुंदर लाल बनाओ अपन हक बर गोटकार बनाओ गांधी और सुंदर लाल बनाओ। कब तक रहबो कोंदा लड़गा कब तक रहबोन कोंदा लड़गा बेरा आगे लड़ाई के पाछू झन गुचाओ अब दम दम ने लड़ाकू अगुआ बनाओ बैरी मन बड़ उदबिरिस हो गए है बैरी मन बड़ उदबिरिस हो गए है हमर मुड़ी ऊपर चढ़त है ए बैरी मन के पोटा कापे देख के तोला ऐसे लोहा के ढांचा बनाओ अपन हक बर गोटकार बनाओ गांधी और सुंदर लाल बनाओ। अंधियारी माँ उजियारी बगराओ अंधियारी माँ उजियारी बगराओ ऐसे सुघर बिहान बनाओ चारी चुगली के गोट ल छोड़ो चारी चुगली के गोट ल छोड़ो अब क्रांतिकारी झंकार बनाओ कोनो तोला जगावे नहीं कोनो तोला जगावे नहीं तोला खुदे ला जागे ला पढ़ी अपन हक बर गोटकार बनाओ गांधी और सुंदर लाल बनाओ। छोड़ो उस निंदा बैरी ला छोड़ो उस निंदा बैरी ला अब तेज तर्रार जगवार बनाओ काबर नाचन नरवा नाली के धार बने हस काबर नाचन नरवा नाली के धार बने हस अब वो बांध टोरैया लहरा के बाढ़ बनाओ ते काबर भरवाकारी बने बैठे हस अब गठना लौठी के गाठ बनाओ अपन हक बर गोटकार बनाओ गांधी और सुंदर लाल बनाओ। ते अटकन मटकन खेलत कूदत उमहा गुमहा बैठे हस क्रांति बगरे चारो मुड़ा मा ते ऐसे गीत के नाव बनाओ चलो चलो रे गुंगवाए लुखो बम्बर आगी के आज बनाओ अपन हक बर गोटकार बनाओ गांधी और सुंदर लाल बनाओ। लेट चलैया घड़ी के कांटा हो लेट चलैया घड़ी के कांटा हो उत्ता धुरा रेंगैया सेकंड कांटा के नाव बनाओ इति ओती छरियाए बगरे मित मितानी हो इति ओती छरियाए बगरे मित मितानी हो सबो अंग्रीला एक मुठा में बांध लो ऐसे संगठन के सुघर नाव बनाओ अपन हक बर गोटकार बनाओ गांधी और सुंदर लाल बनाओ। चारों मुड़ा माँ बीरबीट अंधियारी बगरे है चारों मुड़ा माँ बीरबीट अंधियारी बगरे है चारों मुड़ा माँ उजियारी बगरा दे ऐसे सुघर मसाल बनाओ अपन हक बर गोटकार बनाओ गांधी और सुंदर लाल बनाओ अपन हक बर गोटकार बनाओ गांधी और सुंदर लाल बनाओ। संगवारी हो मैं चौथा कविता आप मन के सामने भजन के रूप में बोलना चाहता हूँ। तो हम बड़ भाग्यवान हन कि भगवान रामला जो है हमन छत्तीसगढ़ में भाचा के नाम ले संबोधन करथन और हमारे छत्तीसगढ़ में ही एक ऐसे परंपरा है जब भाचा भाची के पांव पर जाते तो कारण है भगवान राम ही है। तो भगवान राम के जो है भजन सुघर भजन है जेकर शीर्षक

0: लिखे मोर प्रभु हावे वनवासी, मोर प्रभु हावे वनवासी। चल भजन कर लो रे भाई, प्रभु श्री राम के भजन कर लो। तुम सुमिरन कर लो रे भाई, प्रभु श्री राम के सुमिरन कर लो। ओकरे चरण मा तीरथ हावे, ओकरे चरण मा तीरथ हावे, ओकरे चरण मा काशी हे, मोरे प्रभु हावे वनवासी। चल भजन कर लो रे भाई, प्रभु श्री राम के भजन कर लो। तुम सुमिरन कर लो रे भाई, प्रभु श्री राम के सुमिरन कर लो। ओकरे चरण ले अहिल्या तरी से सबरी दाई हा, तरी से सबरी दाई हा। ओकरे चरण ले अहिल्या तरी से सबरी दाई हा, तरी से सबरी दाई हा। ओकरे दरस ले हनुमान हा तरगे सब अयोध्या वासी, मोर प्रभु हावे वनवासी। चल भजन कर लो रे भाई, प्रभु श्री राम के भजन कर लो। तुम सुमिरन कर लो रे भाई, प्रभु श्री राम के सुमिरन कर लो। राम के नाम ला जपले संगी, राम नाम जिन गानी गा, राम नाम जिन गानी गा। राम नाम ला जपले संगी, राम नाम जिन गानी गा, राम नाम जिन गानी गा। राम नाम ले पत्र हतौरे, राम लगाही भव पारे गा, राम लगाही भव पारे। कर लो सब जन विश्वासी, मोर प्रभु हावे वनवासी। चल भजन कर लो रे भाई, प्रभु श्री राम के भजन कर लो। तुम सुमिरन कर लो रे भाई, प्रभु श्री राम के सुमिरन कर लो। राम के नाम ले दानव मन कांपे, कांपे दुश्मन के पाखी गा, कांपे दुश्मन के पाखी गा। राम सहारी से बिकुम करन ला, औ सहारी सहंकारी रावण ला, औ सहारी सहंकारी रावण ला। तोरे चोला हो जाही जुड़वासी ना, मोरे प्रभु हावे वनवासी। चल भजन कर लो रे भाई, प्रभु श्री राम के भजन कर लो। तुम सुमिरन कर लो रे भाई, प्रभु श्री राम के सुमिरन कर लो। कौशल्या दाई के राज दुलारा, सीता माता मन के सुहासा गा, सीता माता मन के सुहासा। चरण पखारे बर निसाज दीह, दौड़ी से सेवा करे बर भाई लक्ष्मण हा, सेवा करे बर भाई लक्ष्मण हा। दौड़ी से बनी से हे जीवन वासी, मोर प्रभु हावे वनवासी। चल भजन कर लो रे भाई, प्रभु श्री राम के भजन कर लो। चल सुमिरन कर लो रे भाई, प्रभु श्री राम के सुमिरन कर लो।
1: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो क्रम माटी के आखर, जेमा आप मन सुने कविता पाठ, जेकर कवि रहिन गणेश्वर पटेल हा।
2: सुमित, अभी कविता पाठ सुनत रहिन, तो चल संगी मन खातिर सुनथन ए सुघर अकन माटी के गीत ला।

0: तेहा का जादू डारे रे बुंदेला बही बना देना। संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो माटी के सुघर गीतला जौन ला अपन सुघर सुर में पिरोरिन विदुषी ममता चंद्राकर।
1: अवेला सुने बर चाहरीन हमर ये संगी मन हा जिन्हें कटई नवागढ़ ले शारदा वर्मा, सीमा दामिनी वर्मा मन, सिरी गातापाले संगी मन हावय धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका, पूनम साहू मन, देवरी भाटापारा ले है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, सिमगा ले है लवकुश सेन, प्रहलाद, आदित्य, आशीष, प्रकाश सेन मन हा, मगरलोड ले संगवारी मन हावय पुन्नूराम साहू, राज तेजस्वरी, राजश्री, राजवीर साहू मन हा, शीतला नगर दुर्गले हे शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, और शिक्षक नगर दुर्गले संगवारी हावे राकेश वर्मा, सचिन वाणी वर्मा संगवारी मन हा। तृप्ति भाई अषाढ़ के दिन लग गए हावे।
0: हाँ सुमित, अब जी जुड़ ही रठात गर्मी ले तो छुटकारा मिल ही।
1: फिर तृप्ति मोला एक बात बता।
0: हाँ।
1: अषाढ़ लगते तहां मनखे के जीवन और प्रकृति में का परिवर्तन आते
0: सुमित? असार लगते मतलब इस संकेत आए कि हमर किसान भाई बहिनी के दिन आगे, माने खेती किसानी के दिन आगे, जउन धान बोए बर बरखा रानी के बड़ उछाल या गोरा करत रही थी।
1: और प्रकृति में का परिवर्तन आते भाई
0: सुमित? जैसे असार आए ले मनखे के जी जुड़ा थे ना, वैसने रुख राई और जिनावर मल्ला घलो दंद ले राहत मिलते।
1: बिल्कुल भाई, सिरतोन कहा था भाई, धान बोए ले पहली खेत की घलो तैयारी करे बर पड़ते संगी हो, कांटा खोटी भी नहीं, खेत जोते, बियासी, धान बोई, सब वो असाड़ के तैयारी आए है नहीं।
0: हाँ।
1: बड़ सुघर असन किसनहा मनहा ए तैयारी में जुड़ जाते। तो चल तृप्ति, गोठला यही मेर सिरावा जुड़थन आकाश असाड़ के ये सुघर अकन गीत ले।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो माटी के सुघर गीतला जौनला अपन सुर म पिरोए रहिन सुक्तिन मरकाम और साथी मन।
1: अवेला सुने बर चाहरीन हमारे ये संगी मन है, जेमन है मोहंदी महासमुन ले रोशनी छाया रूपसी दीवान मन है, बठेना ले हावे बलकरण वर्मा अंजलि ज्योति रेखा धनेश्वरी वर्मा मन है, चटौदा सारा गाँव ले हावे सुजान वर्मा सुहाद्रा आयुषी कृत वर्मा मन है, कोरदा लवन ले संगवारी हावे भूधर प्रसाद वर्मा घनश्याम गुलशन शिव कुमारी हेमलता वेद किरण वर्मा मन, नर्मदा धाम सुरसुली रहे कैलाश यादव सुरेश डिकेंद्र योगेश यादव मन, भाटापारा दतरेंगी ले है द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर दीपक झावेंद्र कुमार वर्मा मन, और बेमेतरा ले संगवारी हावे पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भाव्या सुषमा सारथी संगी मन है। तृप्ति भाई, ये खेती किसानी के बूता में बड़ मेहनत लगते ना?
0: हाँ हो सुमित, और मेहनत के संगे संग किसानी बूता में बड़ संयम घलो लागथे।
1: सेतोन कहा था भाई, किसानी हाँ बरखा रानी के ऊपर घलो निर्भर ही थे संगी। जरूरत के हिसाब से पानी गिर के तब तो एकदम सोने सोने, फिर कम और ज्यादा होइस ताल परिस्थिति है, पर वो परिस्थिति ला धीरज लगा के स्वीकारे ला पड़ते और मेहनत ला बढ़ाए ला पड़ते।
0: सिरतोन संगवारी, फिर किसानी बूता हा मेहनत संयम के संगे संग उछा के बूता घलो आए। कैसे का?
1: कैसे भाई?
0: वो ऐसे सुमित कि खेती किसानी के बूता माँ बनिहार मन संग आनी बानी के गोठ और हाँसी ठिठोली निकलते, और खाए बर संग माँ बैठबे ना तो सबो घर के रिकिम रिकिम के साग संग दू कावरा उपराहा भात खवाथे, और दिन भर गोट बात माँ बूता घलो सरलग हो जाते।
1: बड़ सुघर गोट उसारे हैं तृप्ति। तो चलो संगवारी हो सुनथन ये सुघर अकन गीतला।

0: संगवारी हो, अभी आप मैं सुनत रहे हो माटी के इस सुघर गीत ला जउन ला अपन सुर म पिरोए हे कुलेश्वर ताम्रकार और साथी मन।
1: अविला अपन अंतस ले सुने बर चाहिन हमर ये संगी मन है जिन मन है नारायण भटापारा ले नारायण यदु, पूर्णिमा राकेश आरती यदु, डोंगरगांव ले हावे संगी मन है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये मन है, बंगला मटिया बालोर ले संगी है शिवकुमार अंगारे, अंजलि त्र्यंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे मन है, और ये संगी मन हावे भंगी टोला डोंडी बालोर ले नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम संगी मन है।

0: मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुमित, पर्यावरण के ध्यान रखे के जवाबदारी का आखर है?
4: बड़का गंभीर प्रश्न पूछे थे तृप्ति।
3: हाँ।
4: ये हम सबो मनखे के हरे और विशेष रूप ले युवा मनखे, काबर युवा शक्ति कोनो भी कारज ल ना उमंग के संग बड़ जोश से करथे।
3: सिरतोन, युवा शक्ति में ता बड़ ताकत री थे, फिर आलस आगे ना तक गड़े खूटा आसन हो जाथे, कतको डोला ले टस के मस नहीं होवे।
4: उहिस तो संगी भाई, युवा मन ला जागरूक होना चाहिए, विशेष रूप ले ऐसे मन बर जेन हमारे जीवन जिये बर बड़का भूमिका हमला देते, हमार बर एक अलग भाव बगरा के देते।
3: संगी हो, आषाढ़ लग गए हैं तो गांव में जतका खाली जगह है और सड़क के तीर ज्यादा ले ज्यादा पेड़ लगावा।
4: बिल्कुल भाई, प्रकृति के दोहन तो करते संगी हो, फिर उसका संरक्षण करे के तको जवाबदारी हमारे हावे। भाई प्रकृति प्रेमी के तहा आस पास प्रकृति प्रेमी मन वो होते संगी हो, जिमन अपन पेड़ ला लगाते और उसका विशेष रूप ले ध्यान लगते है। नहीं तो इसने सुघर सुघर गीत सुना था, तो यही विचार संग सुनता चल सुघर अकन ये गीत ला।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय

0: समरिये संगी मन ह जेमन हे मचेवा महासमुंद ले जवाहरलाल सिन्हा दीक्षा भूमि गेमन नारायणलाल जगोती सिन्हा खल्लारी भीम खोजले हे जेल सरोज छोटी पिंकी साहू मन दहान बांधा बाजार राजनांदगांव ले हावय हरिओम देवाराम रानू सरस्वती प्यारी राम साहू परमानंद साहू मन ह बागबारा भदरसी ले हे पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन मन ह सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द ले हे गुनीराम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज सूरज राजपूत मन ह अमलीडी कमरधा ले हे संतोष हेमप्रभा पूर्वी गौरव राजपूत मन ह अउ आमरा डबली ले हे श्यामलाल साहू मोंगरा संगीता केसरी चिंकी साहू मन ह पिपरलोड सरगांव ले हे दीपेश पूनम ज्योति शिवांश वर्मा भीमखोज तरपोंगी ले संगवारी मन हावय संतोष गुप्ता हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा गुप्ता मन ह अउ भदरसी ले हे घना राम सेन गीतेश दीपेश निर्मला सेन संगी मन
1: सुमित हमू मन ला अब्बड़ बेरा हो गए भाई जाए ला पर ही अब त जाए के पहली संगवारी मन ला बता दे काली के कार्यक्रम
0: संगवारी हो काली आप मन युवाणी सुनू हिंदी मा जेमा आप मन सुनू क्रम अपनी पसंद क्रम मार्गदर्शन जेमा सुने बन मिली नीट देने वाले युवाओं के लिए कृषि से संबंधित क्षेत्रों में अवसर विशेषज्ञ डॉक्टर सारंग पोपली से दीपक अटवार की बातचीत तो संगी हो कार्यक्रम आज के कार्यक्रम आप मन ला कैसे लगी समला अपन पाती लिख के जरूर बताऊ एक संग अपन संगी सुमित तिवारी
1: और तृप्ति भारती ला दो विदा
0: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड

0: अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर 6:05 हुए हैं।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।

0: और कौन आएंगे?
1: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
2: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
3: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
4: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन रहे हैं। 6:10 होने को हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हा आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ करीन। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला ले घलो आज ए योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ होइस। प्रदेश में सहायक प्राध्यापक के 700 खाली पद में जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाही, उच्च शिक्षा मंत्री हा दिन निर्देश। और राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के आयोजन करे जाही, मुख्यमंत्री हो ही शामिल। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा कहिन है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करे, ग्रामीण आजीविका ला मजबूत करे और गांव के विकास में तेजी लाए के दिशा में एक जरूरी कदम हरे। श्री चौहान हा आज तिरुपति जिला के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ करिन। कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए श्री चौहान हा कहिन कि ए योजना के उद्देश्य ए सुनिश्चित करना है कि कोनो भी गरीब मजदूर बेरोजगार ना रहे और सबोला रोजगार मिले। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत ले आज विकसित भारत जी राम जी योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ हुई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति ले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा एक कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल हुई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। एबेरा मां श्री शर्मा हा कहीन कि ए केवल रोजगार उपलब्ध कराए के योजना नहीं है, बल्कि विकसित गांव ले विकसित भारत के निर्माण के अभियान है। उमना कहीन कि केंद्र सरकार हा छत्तीसगढ़ बर 3,300 करोड़ रुपयों के प्रावधान करे है। श्री शर्मा हा बतायन कि योजना के तहत 318 प्रकार के काम शामिल करे गए है। एमा जन संरक्षण ले जुड़े 107, ग्रामीण अधोसंरचना के 90, आजीविका संवर्धन के 86 और आपदा प्रबंधन ले संबंधित 35 काम शामिल है। उमना कहीन कि अब जॉब कार्ड के जगह मा जीआरजी कार्ड जारी करे जाही। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री हा गंडई खुर्द के प्रदेश के पहली विकास काम के रूप में शेड निर्माण प्रस्ताव ला स्वीकृति दीन। प्रदेश में सहायक प्राध्यापक के 700 खाली पद में जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाही, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के

0: अध्यक्षतामा मंत्रालयमा होई समीक्षा बैठकामा ए निर्देश देगीस। संगे संग ओमन नहा 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजमा प्राचार्य के पदोन्नति के प्रक्रिया पूरा करे बर कहिन। बैठकामा बताएगीस कि ग्रामीण औ आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थी मन बर महाविद्यालयमा अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम घलो शुरू करे जाही। उहे सरकार हा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला स्नातकोत्तर स्तरमा लागू करे के तैयारी शुरू कर दे हे। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के आयोजन करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होही। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक डहल्ले आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश भरले किसान सहकारी संस्था के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होही। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होवैया ए 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत बनाए ऊपर चर्चा करे जाही। कार्यक्रम के उद्देश्य सहकारिता आंदोलन ला बढ़ावा देना और सहकार ले समृद्धि के संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उहे काली 3 जुलाई के बिहनिया 6 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करे जाही। सहकारिता के भावना के साथ एक कदम समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर थीम में आधारित ए दौड़ में युवा विद्यार्थी किसान सहकारी संस्था के सदस्य और आने वर्ग के लोगन शामिल होही। दौड़मा पुरुष और माई लोगिन वर्ग के प्रतिभागी मन भर पहली दूसरैया और तीसरैया जगह के विजेता मल्ला आकर्षक पुरस्कार दे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिला के बम्हनीडीह नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद मन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। ए बेरा मा चांपा एसडीएम पवन कोसमाहा अध्यक्ष रमेश डटसेना और पार्षद मनला पद और गोपनीयता के शपथ दिलाइन। समारोह में मुख्यमंत्री हा बम्हनीडीह दहिदा तक हसदेव नदी में पुल बनाए बम्हनीडीह में विद्युत मंडल के सब डिवीजन ऑफिस खोले और मंगल भवन निर्माण के घोषणा करीन। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल हा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के लयिका मन बर ऑनलाइन आवेदन के आखिरी तिथि 3 जुलाई ले बढ़ा के 12 जुलाई कर दे हे। इच्छुक आवेदक श्रम विभाग के पोर्टल में अपन आवेदन कर सकत हे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़बो बांचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा आज नई दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ले मुलाकात करीन। ए दौरान दोनों मंत्री मन के बीच महिला और बाल विकास ले जुड़े आने आने विषय में चर्चा हुई। श्रीमती राजवाड़े हा केंद्रीय मंत्री ला बस्तर के दूर और जनजाति अंचल में संचालित योजना के प्रगति चुनौती और संभावना के जानकारी देन। राज्य सरकार हा आज बस्तर दुर्ग और बिलासपुर संभाग ले संबंधित नगरी निकाय बर 402 एल्डरमैन के नियुक्ति करे हे। बिलासपुर नगर निगम मा 197, दुर्ग नगर निगम मा 142 और जगदलपुर नगर निगम मा 63 एल्डरमैन मन के नियुक्ति करे गए हे। एकर पहली रायपुर संभाग के कतको नगरी निकाय बर घलो एल्डरमैन के नियुक्ति करे गे रहीस। राज्य सरकार हा प्रदेश के शासकीय कर्मचारी मन बर अल्पावधि ऋण के सुविधा शुरू करे हे। ये सुविधा राज्य शासन के ई क्रोस कोष प्रणाली ले एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिया ले संचालित करे जाही। नवा व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपन पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण बर आवेदन कर सकी। आवेदन के बाद EKYC डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति के प्रक्रिया पूरा होए मा ऋण स्वीकृति और वितरण के प्रक्रिया जल्दी पूरा करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा कहिन कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारी मन के कल्याण और उखर आर्थिक सुरक्षा बर प्रतिबद्ध है। उहे वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा कहिन कि अल्पावधि ऋण सुविधा कर्मचारी मनला जरूरत के समय तुरते वित्तीय सहायता उपलब्ध कराही और ओमनला सम्मानजनक और सुविधाजनक वित्तीय विकल्प प्रदान करही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा प्रदेश के किसान मनले मौसम के परिस्थिति मनला ध्यान में रखत हुए खेती बाड़ी के समुचित योजना बनाए के अपील करे हे। उमन कहिन कि सरकार किसान मन के संग खड़े हे। मौसम विभाग हा पहले ही बताए रहिन कि अल नीनो के कारण ए बछर मानसून कमजोर रही। नवा रायपुर स्थित भारतीय

0: प्रबंधन संस्थान आईएमएम मा अवैया 4 और 5 जुलाई के चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। दो दिवसीय ए शिविर मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होही। ए शिविर के उद्देश्य बदलत तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन ला और प्रभावी बनाना है। शिविर मा सरकार के अब तक की उपलब्धि, चुनौती और भविष्य के प्राथमिकता के समीक्षा करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहे है कि लगातार तीसरैया बछर आयोजित होवत ए चिंतन शिविर सुशासन ला ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाए के दिशा मा जरूरी पहल है। युवा माइलोगिन किसान और नवा उद्यमी मन ला स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करे बर प्रोत्साहित करैया जिला व्यापार और उद्योग केंद्र डाहले काली 3 जुलाई के सुकमा के शबरी ऑडिटोरियम मा तेजस कार्यशाला के आयोजन करे जाही। कार्यशाला मा विशेषज्ञ प्रतिभागी मन ला स्टार्टअप पंजीकरण, आने आने शासकीय योजना, बैंक ऋण, वित्तीय सहायता, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और व्यवसाय शुरू करे और ओला आगु बढ़ाए के बारे मा जानकारी दी। संगे संग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करे के संभावना ऊपर घलो चर्चा करे जाही। दुर्ग पुलिस हा लगभग 1149 खाता के पहचान करके 39 लोगन मन ऊपर FIR दर्ज करे है। ए मामला मा अब तक 165 लोगन मन ऊपर कार्यवाही करे जा चुके है। जांच मा एक खुलासा होए है कि आम लोगन के बैंक खाता ला म्यूल अकाउंट यानी किराया खाता बना के करोड़ों रुपया के साइबर ठगी करे गए है। शुरुआती जांच मा ए आगू आए है कि बैंक खाता के प्रयोग साइबर अपराध ले अवैया पैसा ला छिपाए और आने आने खाता मा ट्रांसफर करे बर करे जात रहीस। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घों फेर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हा आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ करीन। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला ले घलो आज ए योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ होइस। प्रदेश मा सहायक प्राध्यापक के 700 खाली पद मा जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाही। उच्च शिक्षा मंत्री हा दिन निर्देश। और राजधानी रायपुर मा 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के आयोजन करे जाही। मुख्यमंत्री हो ही शामिल। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां मंत्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्याम आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, औषध, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके सन्धयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मू कश्मीरस्य भगवती नगर आधार शिविरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा। दक्षिण पश्चिम प्रावृत्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं संप्राप्तः तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन 2000 परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा, औषध रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखरस्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते, सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सुत्तीर्णा।

0: तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं सञ्जातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा गतसायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री रूपेण ताकायची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति, तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विकपटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं सङ्कल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, स्वास्थ्यक्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखाङ्कितं यत् वर्तमानसमये समग्रं विश्वम् आपूर्तिशृङ्खलावरोधैः, व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रान्तरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां, सुशासने, व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधानविषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदास्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनं कृतम्।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www

आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईवाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं रामशरण वैष्णव और साथी। पहले सुनते हैं लता खापड़े और साथियों के स्वर में लोकगीत।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ स्वास्थ्य और परिवार

समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक ही जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो संगी संगवारी मन ल तको सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

लोक संगीत आप सुन रहे हैं, कलाकार हैं रामशरण वैष्णव और साथी। अब सुनते हैं लता खापड़े और साथियों के स्वर में देवार कर्मा।

इसी गीत के संग लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में कलाकार थे राम शरण वैष्णव और साथी। हम आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार

0: रेडियो से करवाइए विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वीबीजी रामजी योजना का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तिरुपति से किया औपचारिक

0: आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वीबी जी रामजी योजना का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तिरुपति से किया औपचारिक शुभारंभ। कबीरधाम जिले के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने आज बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से संबंधित नगरीय निकायों के लिए 407 एल्डरमैन की नियुक्ति की और रायपुर में कल से 2 दिवसीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कल सुबह राजधानी के मरीन ड्राइव में होगी सहकार संकल्प दौड़। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव से विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी रामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी रामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: योजना के शुभारंभ अवसर पर आज छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि ये केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं बल्कि विकसित गांव से विकसित भारत के निर्माण का अभियान है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 3,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री शर्मा ने बताया कि योजना के तहत 318 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजों में प्राचार्यों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। वहीं सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातकोत्तर स्तर पर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आज बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से संबंधित नगरीय निकायों के लिए 407 एल्डरमैन की नियुक्ति की है। बिलासपुर नगर निगम में 197, दुर्ग नगर निगम में 147 और जगदलपुर नगर निगम में 63 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है। इससे पहले रायपुर संभाग के कई नगरीय निकायों के लिए भी एल्डरमैन की नियुक्ति की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के किसानों से मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खेती बाड़ी की समुचित योजना बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है।
2: किसानों के साथ सरकार है और मौसम विभाग पहले से ही अवगत कराए है कि साल अल नीनो के कारण मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा और हम लोग भी कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को अवगत करा रहे हैं, उस हिसाब से किसान मतलब अपना खेती बाड़ी का पूरा योजना बनाए।
0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह नगर पंचायत के नव निर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर चांपा एसडीएम पवन कोसमा ने अध्यक्ष रमेश डटसेना और पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री ने बमनीडीह दहिदा तक हसदेव नदी में पुल बनाने, बमनीडीह में विद्युत मंडल का सब डिवीजन ऑफिस खोलने और मंगल भवन निर्माण की घोषणा की। राज्य सरकार ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा राज्य शासन की ई कोष प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद ई केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण तथा सहमति की प्रक्रिया पूरी होने पर ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नवा रायपुर स्थित

0: भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम में आगामी 4 और 5 जुलाई को चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि लगातार 3रे वर्ष आयोजित हो रहा यह चिंतन शिविर सुशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
1: 4 और 5 तारीख को आईआईएम रायपुर में सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है। ये 3रा साल होगा, इससे काफी सहयोग होता है सरकार चलाने में। गुड गवर्नेंस के लिए काफी जानकारी, इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकार से समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। वहीं कल 3 जुलाई को सुबह 6 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच महिला और बाल विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। श्रीमती राजवाड़े ने केंद्रीय मंत्री को बस्तर के दूरस्थ और जनजातीय अंचलों में संचालित योजनाओं की प्रगति, चुनौतियों तथा संभावनाओं की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई से बढ़ाकर 12 जुलाई कर दी है। इच्छुक आवेदक श्रम विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र और श्रमेव जयते ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के कंसबहाल और धारवाडीह सेक्शन के बीच मरम्मत कार्य के कारण 3 जुलाई से 17 नवंबर तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। ये मेगा ब्लॉक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को अप और डाउन लाइन पर लिया जाएगा। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ यात्री गाड़ियां रद्द रहेंगी। इनमें हैदराबाद रक्सौल हैदराबाद, इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस और बिलासपुर टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन में समाप्त होगी तथा राउरकेला दुर्ग के बीच रद्द रहेगी। युवाओं, महिलाओं, किसानों और नए उद्यमियों को स्वरोजगार तथा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा कल 3 जुलाई को सुकमा के शबरी ऑडिटोरियम में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में विशेषज्ञ प्रतिभागियों को स्टार्टअप पंजीकरण, विभिन्न शासकीय योजना, बैंक ऋण, वित्तीय सहायता, मार्केटिंग, ब्रांडिंग तथा व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने लगभग 1149 खातों की पहचान कर 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में अब तक 165 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि आम लोगों के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट यानी किराए का खाता बनाकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की गई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध से अर्जित धनराशि को छिपाने और विभिन्न खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बद्री नारायण मीणा ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने सुंदर राजपी का स्थान लिया है, जिन्हें केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर एनआईए में पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। संस्कृति और राजभाषा संचालनालय ने वर्ष 2026-27 के सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों और सांस्कृतिक दलों से 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दुर्ग जिले में सिंचाई विभाग के कर्मचारी को जीपीएफ में जमा राशि निकालने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत

0: देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वीबी जीरामजी योजना का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तिरुपति से किया औपचारिक शुभारंभ। कबीरधाम जिले के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने आज बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से संबंधित नगरीय निकायों के लिए 407 एल्डरमैन की नियुक्ति की और रायपुर में कल से 2 दिवसीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कल सुबह राजधानी के मरीन ड्राइव में होगी सहकार संकल्प दौड़। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 7 बजने को है। हाजिर हैं हम चित्रपट संगीत के संग। खूबसूरत हो जाएगा ये समा जब मिल बैठेंगे आप, मैं और ये बारिश।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म मोहरा का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी की शब्द रचना थी, विजू शाह का संगीत था। सुनिए फिल्म खुददार का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, राहत इंदौरी की शब्द रचना और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म खुददार का गीत आप सुन रहे थे, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। राहत इंदौरी की शब्द रचना थी और अनु मलिक का संगीत था। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा धान की उन्नत सीधी बुआई विधि। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजय द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक शल्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को

11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। फिल्म गुलाम का गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, समीर के बोल और जतिन ललित का संगीत।

फिल्म गुलाम का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की, समीर के बोल थे और जतिन ललित का संगीत था। चित्रपट संगीत में फिलहाल इतना ही।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन रहे हैं।

श्रोताओं आपको बता दें, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल ओवल लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुन पाएंगे रात 10:30 से। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 7:21 होने को है। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: मोनिका दीदी राम राम।
1: राम राम लक्ष्मीकांत संगे संग कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमार दोनों के
0: राम राम। दीदी
1: हाँ
0: देख जुलाई महीना शुरू होगी
1: हाँ।
0: है ना माने मानसून जो हमार वर्षा ऋतु के शुरुआत के समय होते और ए मौसम मा उमस है ना नमी बाढ़े के कारण ठीक है हमूला ऐसे होते कि असहज स्थिति बनते नमी बाढ़ जाते तो और देख हमार पशुधन जोन है वह मन मा नमी बाढ़े ले बीमारी फैले के जोन खतरा है वो बाढ़ जाते। यही महीना जोन पशुपालक किसान संगवारी है हमार है ना वो मन ला प्रबंधन और ओकर जोन पशु स्वास्थ्य हवे ओकर खातिर सुघर ध्यान रखे के विशेष ध्यान रखे के हमला सलाह हमार विशेषज्ञ मन मिलत रही थी।
1: लक्ष्मीकांत एक दो बात होते एक तो ये कि पशुधन मन हमार बल भैया है हमार कतकोन काम बताओ खर मन बिना अधूरा है। दूसरे ये हमारे जिन पशुधन है ना वो नाने लेकर असन होते जैसे घर में नाने लेकर है वो मन तो बता नहीं सके की मतलब का समस्या है का दिक्कत है ओखर मन के रोज के जिन काम बता है जिन ओखर मन की खेल खिलई है तेला देख के हमन समझते हैं कि भाई मान ला ये समस्या है तो हम हमारे पशुधन मन भी है थोड़को ऊपर नीचे दिखते कि भाई आज पशु मन ऐसे करत है ये पशु ऐसे करत है तो हमला समझ में आते कि ओला का बीमारी हुआ थे का दिक्कत है तो हमन जाके फिर विशेषज्ञ मल्ला बतातन। तो ये जो बेरा है ना एमा टीकाकरण पशु बाड़ा प्रबंधन चारा और पोषण प्रबंधन

0: धन और खास करके दुधारू पशु मन के विशेष देखभाल के जरूरत पड़ते।
1: और दिसे गोठ्या होता है ना टीकाकरण कहके, तो देख टीकाकरण में ए समय गोठे है ना गलघोटू लंगड़ी के टीका यदि हम जून में नहीं लगा पाए हैं कुछ कारण ले है ना चुग गए, तो हमला का है ए महीना के शुरुआत में ही हमला है ना नजदीकी पशु चिकित्सालय हम संपर्क करन और टीका जरूर लगवावन है ना। बरसा ऋतु है तो बीमारी बढ़ते जिल फैलते।
0: सही बात कहा था भाई, देख बरसा के मौसम में पशु मन के पेट में कीड़ा जल्दी पनपते। पशु चिकित्सक मन जन है ना मन सलाह देते है ओखर मन ले बात करके पेट के कीड़ा मारे खातिर कृमि नाशक दवाई जरूर देना चाहिए।
1: और देख बाह्य परजीवी जो है ना पशु बाड़म कीटनाशक के जो छिड़काव कर लेवाने कर ले बचे खातिर उमस के कारण किलनी है जू है ना माखी है मक्खी हमार हाँ वो बाढ़ जाते और डॉक्टर के सलाह लेके हम पशु के शरीर में भी दवाई लगा लेवन और कीटनाशक के छिड़काव गोट करत रहे ना हाँ तो कौन कीटनाशक ला छिड़काव करन ऐसे हमारे डॉक्टर मन सलाह ले लेवन कि पशु स्वास्थ्य में ओकर ज्यादा हमला असर देखे झन मिले नुकसान।
0: सिर्फ तो बात है भाई, देख कीटनाशी कहन मतलब तो फिर कीड़ा मल्ला मारे काम करते तो पशु मन भी मन खातिर घलोक तो थोड़ा बहुत नुकसान करे तो ये बात के विशेष ध्यान देवन। जैसे हमन खेती किसानी में उपयोग करते ना कि हमारे मित्र कीड़ा मन झन नुकसान हुआ वैसे पशु मन ला झन नुकसान हुआ है। अब बात करन ओखर मन के रहे के जगह के, तो जिन हमन पशु धन मन के रहे के जगह बनाथन जिला हमन पशु शीतला गई थे ओमा पानी के भराव झन हुआ और ओला सीलन ने बचाव खातिर हमन जैसे पशुवाड़ा के तीर तक में पानी इकट्ठा झन हुआ इखर हमन ध्यान रखन। सीलन ने कहा है ना कि थनेला रोग की समस्या ज्यादा बढ़ जाते तो ये बात के विशेष ध्यान रखना। अभी काबर की बरसात के दिन है ये बेरा में कतकुन जगह ऐसे है कि दीवार में सीलन आ गए या पानी एक जगह इकट्ठा हो गए तो वो थोड़ा सा ढलान वाले जगह बनावन जिखले पानी वहां से आराम से निकल सके।
1: और बरसात के मौसम में मच्छर और मक्खी है ना बड़ पनपते है ना और ओकर काय देख पशुधन मन हम तो हमारे हाथ गोड़ है हमारे भगा लेथन हमारे पशुधन मन कुछ नहीं कर पाए बेचारा छटपट आत रहते है ना तो ओकर जो बाड़ा है तेमा नीम के जन सूखा पत्ती है ओकर धुआं कर नन है ना तेकर ले उनला मच्छर मक्खी ले बचाव हो सके और उनमा एकरो ले भी बीमारी होए के जन संभावना रथे है ना ओकरो ले हम बांध सकथन।
0: हाँ गुड़ बात करबो फिर पहली ये संदेश ला सुन लेथन।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई जैसे अभी हम पशु शेड की बात करते रहे ना, तो जैसे पानी के भराव जन हुआ है।

0: ये सब हमन गोट करें, एक बात के वो ध्यान रखें कि वो हवादार होना चाहिए,
1: हाँ
0: माने हवा के आवक जावक बराबर बने रहा है।
1: सेटन आओ दीदी, देख हम पशु सेट के गोट बात करा रहे हैं ना, उनका टीकाकरण के गोट करें, अब उनका चारा के गोट करथन। तो हरा चारा के अधिकता देख बरसात के मौसम में हरा चारा बढ़िया पनपे लगते है ना, मानसून में नवा नवा मुलायम चारा तेजी लगते है ना, तो पशु मन ला अचानक से हमला बहुत ज्यादा जो नया चारा है ओला झन खवावन, ऐसे की हमारे विशेषज्ञ मन बताते हैं कि उनला अफरा रोग माने पेट फूले के जो 10 तक शिकायत है वो झन हो ही की है ना। तो शुरुआत में काहे हम हरा चारा ला सूखा भूसा मिला के खवा सकथन।
0: और देख खनिज लवण पशु मन के दूध उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाते, तो ये खाते रोज उखर दाना मा 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और नमक जरूर मिलावन, तो एक हल्ले उखर मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और उखर मन के दूध उत्पादन घलोक बढ़ी।
1: हाँ, और पशु मन ला तालाब के जो गंदा पानी है या गड्ढा के जो पानी है ना वो झन पियन देवन, सिर्फ साफ और ताजा पानी ही पियावन और दूध निकाले के पहली और बाद थन ला जो लाल दवाई कहते हैं हमन पोटेशियम परमैंगनेट जल पोटास के नाम से जानते संगवारी मन, ओका हल्का घोल ले धो सकते हैं, इसे बताते विशेषज्ञ मन।
0: विशेषज्ञ मन घरों ये हूँ बताते कि भाई दूध दे के 20 से 30 मिनट बाद तक पशु मन ला नीचे झन बैठन देवन।
1: हाँ,
0: काबर की थन जिन होते ना उखला रही थे, तो एक हल्ले बैक्टीरिया आसानी ले उकमा जा सकते। अब ऐसे देख एक और बात है कि जैसे पशु मन के जिन रहे के जगह है ना वहाँ हमेशा आवक जावक बने रही थी, तो उमर एक अपन गड्ढा बना के उमर इसे दवाई डाल सकते कि जैसे जान तो पशु मन के पाँव घलाओ में जावे, तो बाहर के जिन कीड़ा बीमारी बैक्टीरिया एक्टीरिया है मन नहीं आई और हम मन जाबो तो हमरो जिन पाँव में बैक्टीरिया एक्टीरिया होते हैं खले घले सुरक्षित रहे। अब देख गुड बात करते करत किसान वाणी की बेरा हो गई, तो संगवारी हो किसान वाणी की बेरा है, प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संगवारी हो, बेरा बेरा में हमला सुघर सलाह मिलत रहते, तो आज हमर जोन सलाह के विषय हवे कटहल के व्यावसायिक खेती, ए संबंध में सुघर हमला जानकारी देवत हैं डॉक्टर अभय बिसेन, सहायक प्राध्यापक हवे फल वैज्ञानिक हैं पंडित शिव कुमार शास्त्री कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र राजनांदगांव में। ही करते हैं हमारे मोनिका दीदी गोड़ बात हो है, तो आवाब सुघर सलाह ला सुनथन।
1: संगवारी हो, रिकम रिकम के फल फलहारी साग भाजी हमार स्वास्थ्य पर बहुत लाभ के होते। मैंने एक तरह से देखे जाए तो भाई स्वाद वो बने देबे करते, संगे संग स्वास्थ्य खातिर घलोक लाभ के होते। और जब हम स्वास्थ्य और स्वाद के बात करत हन तो एखर ले हमन बने आमदनी घलोक कमा सकथन। और बात है भाई आज के जानकारी के, तो ये है कि कटहल के व्यवसायिक खेती हमन कौन प्रकार ले कर सकथन, एखर ले कैसे ज्यादा ले ज्यादा लाभ ले सकथन, ये विषय में गुट बात करे खातिर आज हमारे संग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अभय बिसेन जी। हाँ, आप मन सहायक प्राध्यापक हैं, फल वैज्ञानिक हैं, फल विज्ञान विभाग में पंडित शिव कुमार शास्त्री कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र राजनांदगांव में। डॉक्टर साहब, आप मन के स्वागत है हमारे क्रम में।
2: नमस्कार किसान भाइयों, जय जोहर
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हमारे विषय है कि हमन कटहल की खेती करके कैसे ज्यादा ले ज्यादा व्यावसायिक रूप ले लाभ ले सकते, तो सबसे पहले तो ये बताते हो कि कटहल उत्पादन खातिर कौन प्रकार के माटी बने होते और एक बार कौन प्रकार के जलवायु के जरूरत होते।
2: जी, कटहल बहुत हार्डी फल वाली फसल है, इसे हम सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं, किंतु गहरी दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही जल निकास, अच्छा जल निकास जहाँ पे अच्छा प्रबंधन होता है, थोड़ा ऊंची जगह जहाँ पे जल का भराव कम होता है, ऐसे क्षेत्रों की में ही इसकी खेती करना चाहिए। कटहल एक उष्णकटिबंधीय फल है, इसे शुष्क एवं नम दोनों प्रकार की जलवायु में

0: आसानी से उगाया जा सकता है। लगभग इसे मैदानी क्षेत्रों से या समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहाड़ों तक इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। और हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जशपुर, बस्तर, ये क्षेत्र इसकी जलवायु, यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी इसको उगाने के लिए और अधिक उपयुक्त मानी गई है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक बात जैसे हम शुरू में कहें कि फल फलहारी ही साग भाजी जिन होते हमारे मुंह के स्वाद ला तो बढ़ावे करते, संगे संग हमारे स्वास्थ्य पर घलो बने होते। तो ये बताते हो कि जैसे कटहल के जिन फल है एला हमारे कतकुन बखत अचार के रूप में खाथन, साग बना के खाथन, तो बात कर हमारे स्वास्थ्य के, तो हमारे का लाभ होते?
0: कटहल एक बहुत फायदेमंद फल है जिसमें मुख्य रूप से कटहल में विटामिन ए पाया जाता है। इसमें विटामिन थायमिन, कैल्शियम, राइबोफ्लेमिन, आयरन, जिंक जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। कटहल का जो पल्प होता है, गुदा होता है, उसमें हार्ट की बीमारियों से लड़ने की बहुत ज्यादा शक्ति होती है। कटहल में पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है जिसके कारण ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। रेशेदार सब्जी होने के कारण कटहल एनीमिया रोगों में एवं आयरन की मात्रा ज्यादा होने के कारण एनीमिया रोग में यह इसका लाभ मिलता है। कटहल की जड़ को उबालकर पीने से अस्थमा रोगों में लाभ मिलता है। थायराइड रोगियों के लिए भी कटहल लाभकारी देखा गया है। कटहल से हड्डियां मजबूत होती है, ऑस्टियोपोरोसिस के रोगों से बचाता है। कटहल में विटामिन ए और विटामिन सी पाए जाने के कारण यह वायरल इन्फेक्शन में भी लाभकारक होता है। इसके साथ साथ यह अल्सर, कब्ज, पाचन संबंधी रोगों में भी कटहल फायदेमंद साबित होता है। कटहल में विटामिन ए पाए जाने के कारण यह आंखों की परेशानी या रोशनी से संबंधित रोगों में भी यह फायदेमंद देखा गया है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बड़ सुघर सुघर जानकारी बतावा था। जैसे अब हम छत्तीसगढ़ की हमन बात कर रहे थे, तो यहाँ हमन कटहल के कौन कौन से किस्म लगा सकते हैं?
0: हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से जो हम किस्में लगा सकते हैं उसमें ख्वाजा, गुलाबी, रुद्राक्षी, सिंगापुरी, स्वर्ण मनोहर, स्वर्णपूर्ति और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से जो उन्नत किस्में निकाली गई है, NJ-1, NJ-2, NJ-15 एवं NJ-3 एवं केरल विश्वविद्यालय से मुत्तम वरक्का जो प्रमुख किस्में हैं, इन किस्मों को भी हम छत्तीसगढ़ राज्य में उगाकर किसान भाई अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी अब जैसे हमारे संगवारी मन खेती करना चाहते हैं, तो कटहल के जिन पौधा है वाला कब और कैसे लगाना चाहिए?
0: कटहल के पौधों को मुख्य रूप से लगाने के लिए भूमि की अच्छी तरीके से जुताई कर लेना चाहिए। जुताई करने के बाद भूमि को समतल कर लेना चाहिए एवं पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग 10 से 12 मीटर की दूरी रखी जाती है। और यह कटहल के पौधों को मुख्य रूप से लगाने के लिए गर्मी के मौसम में मई के महीने में हमें गड्ढा खोदना चाहिए। गड्ढे का जो आकार होता है वह लगभग 1x1x1 मीटर लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का होना चाहिए। इस गड्ढे में 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 500 ग्राम म्यूरेटा पोटास एवं 1 किलोग्राम नीम की खली एवं 10 ग्राम थाइमेट, जिन क्षेत्रों में दीमक की समस्या हो वहां 10 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस को मिलाकर पौधे को लगाना चाहिए। रोपाई करने का अच्छा समय जून के लास्ट माह में एवं जुलाई के महीने में होता है जब मानसून स्टार्ट हो जाता है। इस समय खेत में पौधों को लगाना चाहिए।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मन में आती रही, जैसे आप मन बोले हो कि एक बार हमला मई में तैयारी करना चाहिए, कतकुन संगवारी मन थोड़कुन देर हो जाती है मल्ला, तो क्या वो मन जून में भी एक तैयारी शुरू कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, जून में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साल में दो बार आप इस प्रकार के पौधे को हम लगा सकते हैं, एक जून जुलाई में भी लगा सकते हैं आप, अगस्त के महीने तक भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप जनवरी के लास्ट सप्ताह में जब ठंड कम होने लगती है एवं बसंत की ऋतु स्टार्ट होती है, फरवरी माह में भी हम कटहल के पौधों को अपने किसान भाई जहां पे पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, उन खेत में आसानी से लगा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात करें खाद और उर्वरक के, कबर की देखो बढ़वार खातिर जैसे हम मनखे मन के जैसे लेका मन होते, तो मतलब बढ़वार खातिर पोषण खातिर हमन पोषक तत्व ले भरपूर, पोषण ले भरपूर भोजन कराते हैं, तो हमारे जेन कटहल के पौधा है तो एमा जन इतना बने बने गुण हावे, तो एकला बने बनाए खातिर या खर बढ़वार खातिर हमन खाद उर्वरक प्रबंधन कैसे करें?
0: हर पौधे में अच्छे उत्पादन हेतु अच्छा खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन आवश्यक होता है। जब किसान भाई कटहल के पौधे को खेत में लगाते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि कटहल में प्रति वर्ष फल आते हैं और फलों के अच्छे उत्पादन के लिए खाद एवं उर्वरक को उचित मात्रा एवं उचित समय में खेत में देना चाहिए। प्रत्येक पौधे को 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद, 100 ग्राम यूरिया,

0: 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 100 ग्राम पोटास प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में देना चाहिए। जब पौधे की उम्र 10 वर्ष की हो जाए तब खाद एवं उर्वरक की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। उस समय प्रति पौधा 100 किलो गोबर की खाद, 1 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 1 किलोग्राम पोटास को जुलाई माह में देना चाहिए। यदि किसान भाई इस मात्रा को दो बराबर भागों में बांटकर पहली मात्रा में जून जुलाई में और दूसरी मात्रा को बसंत ऋतु में भी दे सकते हैं। इस तरीके से किसान भाई खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। यह देखा गया है जब किसान भाई अच्छे रूप से खाद एवं उर्वरक डालते हैं तो एक वृक्ष से 4 से 5 कुंटल तक उपज देखी गई है।
1: डॉक्टर साहब, अब जैसे कि हमन कटहल लगा डरे हैं तो कोनो भी फसल लगते हो रोग बीमारी की समस्या हमेशा देखा मा थे, कटहल मा कौन प्रकार की रोग राई या बीमारी की समस्या देखा मा थे?
0: जी, कटहल में भी अन्य फलों के समान कीट एवं रोग लगते हैं, इसलिए समय समय पे इनकी रोकथाम करना अति आवश्यक होता है। कटहल में लगने वाले प्रमुख कीट है माहू है, तना छेदक है, ये प्रमुख कीट लगते हैं। यदि माहू खेत में लगता है तो यह मुख्य रूप से पत्तियों एवं टहनियों एवं फूलों का रस चूसता है जिसके कारण पौधे की बढ़वार रुक जाती है। जैसे ही कीट के संकेत हमें मिलते हैं तो इमीडा क्लोरोपीड 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए, तब माहू का प्रकोप रुक जाता है। इसी प्रकार तना छेदक, यह जो कि कटहल की डालियों एवं शाखाओं में छेद करके घुस जाता है और अंदर ही अंदर पौधे को नुकसान पहुंचाता है जिसके कारण पौधा सूखने लगता है। इस कीट का प्रकोप दिखने पर हमें नुवाक्रॉन 10 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोलकर इसके फाये को जहां पे छेद हुआ है वहां पे डालकर हमें लगा देना चाहिए। इसके बाद गीली मिट्टी के लेप लगाकर उसे बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार ये तना छेदक के कीट के प्रकोप को हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार कटहल में बीमारियां भी लगती हैं, पिंक स्पॉट जिसे गुलाबी धब्बे के नाम से जाना जाता है। इस रोग में पत्तियों के नीचे की ओर से गुलाबी रंग का धब्बा बनने लगता है एवं इसकी रोकथाम के लिए कॉपर जनित फफूंदनाशी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लू कॉपर 3 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसी प्रकार मुख्य रूप से एक फल सड़न रोग होता है, यह कि फफूंदी नाशक रोग है। इस रोग के लगने के बाद फलों के कोमल डंठल के पास यह रोग लगता है जिसके कारण फल सड़ने लगते हैं एवं डंठल सड़ जाता है और फल गिरने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ब्लू कॉपर के 3 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से यह रोग में फायदा देखा गया है और इस दवा को 15 दिन के अंतराल से पुनः छिड़काव करने से लाभ मिलता है।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी जिसे मन कटहल की व्यावसायिक खेती की बात करत हैं तो आप हमारे संगवारी मल्ला जाति बिराती हो का बोलना चाहूँ कि उमन कैसे कटहल की खेती करके लाभ ले सकते हैं?
0: जी, किसान भाई, अगर आप जब कटहल के पौधों को बीज के माध्यम से आप तैयार करते हैं तो कटहल का पौधा 7 से 8 साल में फलता है। इसलिए किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जब हम कोई भी कटहल की किस्म किसी भी नर्सरी या कहीं से भी सरकारी संस्थान से हम खरीद के लाते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पौधे पूर्णतः ग्राफ्टिंग किए होना चाहिए। यदि ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे को किसान भाई चयनित करते हैं तो वो पौधे दूसरे से तीसरे साल फल देने लगते हैं और किसान भाइयों का समय बचता है और एक इस तरीके से प्रति वर्ष एक पौधे से 4 से 5 कुंटल फल प्राप्त होने लगते हैं। और जब 1 हेक्टेयर में किसान भाई इसके 150 से 200 पौधों को लगा सकते हैं और लगाने के बाद लगभग 3 से 4 लाख की आय प्रति वर्ष 1 हेक्टेयर से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आमदनी को 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हैं।
1: डॉक्टर भविसेन जी, आप मन आए हो कटहल के व्यवसायिक खेती खातिर, आप मन बड़ सुघर सुघर और लाभकारी जानकारी दियो, ये खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: संगवारी हो, हमर किसान वाणी क्रम आज के सलाह में सुघर कटहल के व्यावसायिक खेती के संबंध में हमला जानकारी मिलीस। हमर जानकारी देवत रहिन हमला डॉक्टर अभय बिसेन, सहायक प्राध्यापक फल वैज्ञानिक हैं, पंडित शिव कुमार शास्त्री कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र राजनांदगांव में। करती हमर मोनिका दीदी ले गोट बात होत रही।
1: लक्ष्मीकांत, देख अमन इतना सुघर सुघर जानकारी सुने, देख कटहल ना जिन होते बहुत कहे जाए भाई कि स्वाद में तो बने लागबे करते, संगे संग इखर स्वास्थ्य के बड़े सुघर सुघर जानकारी दिन हमारे डॉक्टर साहबा की भाई हमारे स्वास्थ्य पर कितना लाभ के इखर अलग अलग किस्म बताइन, तो इतना सुघर सुघर जानकारी के बाद ना एक सुघर असन गीत सुनथन भी और संगवारी मल्ला सुनाथन भी। तो संगवारी हो।

0: तो संगवारी हो, आषाढ़ महीना की मजा लेना है, वर्षा के मजा लेना है हमला। छाया शर्मा और संगवारी मल्ले सुघर गीत ला सुनत रहन।
1: अब हमारे संगवारी मल्ले ना हलो चौपाल ले जुड़े एक सूचना है तीन ला बता देते हैं।

0: तो संगवारी हो अषाढ़ महीना के मजा लेना है, वर्षा के मजा लेना है हमला। छाया शर्मा और संगवारी मल्ले सुघर गीत ला सुनत रहन।
1: और अब हमारे संगवारी मल्ले ना हलो चौपाल ले जुड़े एक सूचना है तिनला बता देते हैं। संगवारी हो अवैया शुक्रवार 3 जुलाई 2026 माने काली के दिन प्रसारित हुआ हलो चौपाल कार्यक्रम के विषय हुई धान की उन्नत सीधी बुआई विधि DSR। आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई डॉक्टर संजय द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक शस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर अमल्ला फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है, पहली फोन नंबर है 4003482, दूसरिया फोन नंबर है 4003483, और तीसरिया फोन नंबर है 4003484। रायपुर के STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 3 जुलाई 2026 के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक करे जाए। संगवारी हो ये कार्यक्रम की प्रसारण यही दिन हुई मैंने शुक्रवार के संझा 7:30 में हुई, और आप मन के फोन कॉल के अगुरा रही और सूचना ही चे सिरावत है।

0: हम है भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान
1: हम। तो संगवारी हो पेन और पेपर लेके तैयार हो जाओ, काबर की हमारा क्रम ही कृषक प्रश्न मंच, जिमा हमन आज आप मन ले जिन प्रश्न पूछिए हन भाई, हमारे जिन अभी आज की सलाम आप मन सुने हो ना जानकारी ओखरे ले जुड़े हैं। तो हमारा आज के प्रश्न लिखो, हमारा प्रश्न है कि कटहल के प्रमुख किस्म कौन कौन से है। प्रश्न एक घाव और बता देता हूँ, कटहल के प्रमुख किस्म कौन कौन से है। और सही जवाब भेजे खातिर मेल आई डी है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। इसने हमन पाछू हफ्ता पूछे रहे कि भाई बरसात के मौसम में हमार पशुधन मल्ला कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं। एकर सही जवाब है गलघोटू, एक टंगिया, खुरहा, चपका रोग हो सकते हैं। और सही जवाब भेजिए संगवारी मन के नाम ले बताइए हमार लक्ष्मीकांत भाई।
3: सही जवाब भेजे हैं हमारे संगवारी मन नर्मदा धाम सुरसुरी ले कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र और योगेश यादव, दलदल सिवनी ले मनोज कुमार पटेल, रेखा देवी, अमित कुमार, अजीत, जितेंद्र नौम्या हैं, कोपरा राजिम ले लक्ष्मी नारायण पटेल, देवकी पटेल, राधिका पटेल, सैलभाई पटेल हैं, केजूराम मालेकर, ठाकुर राम, अश्वनी मालेकर हमें मगरलोड जिला धमतरी ले, और लोरमी गांव चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी, गर्रा पार बांधा बाजार ले हमें गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र और राकेश साहू, भीम खोज तरपुंगी ले संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश गुप्ता हमें, रानीगांव नगरी ले हैं अखिलेश कुमार साहू, चित्रेखा, शुभम, सेजल साहू, बठेना पाटन जिला दुर्ग ले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, पार्थ कश्यप, कौशल, अरविंद और मुरली वर्मा, परसाटोला अंबागढ़ चौकी ले हैं मैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, कुमेंद्र और तुषारणी मसिया, देवरी भाटा पारा ले हैं गन्नूलाल रजक, मुकेश रजक, इवान हाविया, तन्नू रजक, डुमा टोला मंगचुआ जिला बालोद ले भगवानी राम काटे, कुमारी देवी का है ना गोविका, भावेश, माधुरी देवी काटे हैं, अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, गुड़िया और रेहांश ठाकुर हैं।
1: तो सही जवाब भेजिए जम्मो संगवारी मल्ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। लक्ष्मीकांत देख हमारे जिन चौपाल है ना इमा हर तरह की हमन गुड़ बात करते हैं, जिन खेती किसानी ले पशुधन ले जुड़े रही थे, हमार मतलब हमार किसान मन ले जुड़े रही थे। अब भाई ऐसे है कि जो गांव की चौपाल हमार चौपाल बिना मनोरंजन बिना गीत संगीत के अधूरा है। तो यही बात ला पूरा करे खातिर सुनथन ये गीत जिला गाय है भारती बारले मना।

0: संगवारी हो अभी सुनेंगे ये सुगर सुगर गीत जिला गावत रहीन भारती बारले हो संगवारी मन। तो भाई ये रहीस किसान वाणी प्रायोजक रहीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: संगवारी हो जाए के बेरा हुआ थे तो जाए के पहली काली के कार्यक्रम बता देथन। काली आज की बात में गोट करबो ने महीना के मछली पालन के जोन काम बूता है ओकर ऊपर और हेलो चौपाल में सुने बा मिलही धान के उन्नत सीधी बुआई DSR विधि जोन हवा एकर ले जुड़े हमार प्रश्न और समस्या के समाधान। डॉक्टर संजय द्विवेदी मन हमार समाधान करी हमार समस्या के। प्रमुख वैज्ञानिक हवे स्वच्छ विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले और संगवारी हो गीत संगीत तो होबे करही तो देव अलविदा।
0: कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला।

किसान साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम चौपाल, आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 8 बजने को है, फिर हाजिर हैं हम चित्रपट संगीत के संग।

0: अजनबी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत आरडी बर्मन का और बोल आनंद बख्शी के।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन, ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमर बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म हम जोली में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अब सुनिए रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत, वर्मा मलिक की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुनेंगे आवाज़ लता मंगेशकर की।

चित्रपट संगीत में फिलहाल इतना ही। चित्रपट संगीत सुनिएगा रात 9:15 पर और रात 10 बजे आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत, कलाकार है मदन मेहर और साथी। पहले सुनते हैं मदन मेहर और साथियों के स्वरों में देवी गीत।

लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे मदन मेहर और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। 8:30 होने को हैं। समाचार अब इसे फिर से सुने। स्पोर्ट्स कैन अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा रेखा जोखा लेकर के हमारे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान की खबर और हर खिलाड़ी का हाल, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन हेडलाइंस की जिन पे आज का हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में आज रात स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से, इंग्लैंड, बेल्जियम और अमेरिका राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर तथा महिला सिंगल्स में आर्यना सबालेंका और कोको गौफ तीसरे दौर में पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ और वेलवन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना पीएसए चैलेंजर स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए फुटबॉल के महासंग्राम के साथ, जो कि चल रहा है कनाडा और अमेरिका में फीफा विश्व कप, जिसके राउंड ऑफ 32 यानी नॉकआउट के मुकाबले शुरू हो गए हैं। और आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होना है, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा और कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया की टीमें आमने सामने होने वाली हैं। इससे पहले आज की बात की जाए तो इंग्लैंड, बेल्जियम और अमरीका फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं।
1: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हरा दिया। सैन फ्रांसिस्को के एरिया स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही अमेरिका ने अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है। मैच की शुरुआत से ही खेल पर अमेरिका का नियंत्रण देखने को मिला। पहले हाफ के इंजरी टाइम में बालोगुन ने मलिक टिलमैन के शानदार पास और डिफेंडरों को छकाते हुए गेंद को गोलकीपर निकोला वासिलस के नीचे से नेट में पहुंचाकर अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में 64 मिनट में अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा जब बोलागुन को रेड कार्ड दिखा दिया गया। मैच के अंतिम चरण में मलिक टिलमैन ने फ्री किक पर बेहतरीन गोल कर टीम की बढ़त 2-0 कर दी।
2: It is Tillman, and it's in. If this stadium had a roof, it would have just lifted off. A second goal that the USA desperately wanted. For the United States of America, the dream continues. Their World Cup ambitions very much alive. USA 2, Bosnia and Herzegovina 0.
1: अब अमेरिका 7 जुलाई को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम से भिड़ेगी। इससे पहले बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। मैच की शुरुआत में सेनेगल की टीम बेल्जियम के डिफेंस पर हावी नजर आई। सेनेगल की तरफ से मैच के 24वें मिनट में हवीब डियारा ने बेहतरीन गोल किया और स्कोर 1-0 कर दिया। मैच का दूसरा हाफ रोमांच से भरा रहा। 51वें मिनट में इस्माइला सार ने बेहतरीन गोल दागते हुए सेनेगल की बढ़त को 2-0 कर दिया। अब तक बैकफुट पर नजर आ रही बेल्जियम की टीम ने इसके बाद मैच में बेहतरीन पलटवार किया। 86वें मिनट में रोमेलू लुकाकू ने बेल्जियम के लिए पहला गोल दागा। इसके ठीक 3 मिनट बाद ही यूरी टाइलेमान

0: ने बेल्जियम की ओर से दूसरा गोल करते हुए स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। थोड़ी देर पहले सेनेगल की जीत की तरफ जा रहा मुकाबला 90 मिनट में 2-2 की बराबरी पर आ गया। अतिरिक्त समय में दोनों ही टीमों की तरफ से कई प्रयास किए गए, लेकिन इस दौरान यूरी टाइलेमांस ने पेनल्टी को गोल में तब्दील कर बेल्जियम की टीम को जीत दिला दी। इनके पहले मैच में भी लोगों को एक शानदार मुकाबला देखने को मिला, जहां हैरी केन ने 2 गोल की बदौलत इंग्लैंड के डीआर कांगो को 2-1 से हरा दिया। अटलांटा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने शानदार खेल दिखाते हुए 2 गोल किए और मैच में 1 गोल से पीछे इंग्लैंड को वापसी कराते हुए राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया। डीआर कांगो के लिए 7वें मिनट में ब्रायन सिपेंगा ने पहला गोल किया। इसके बाद दोनों टीमों की तरफ से गोल करने के कई मौके बने, पर कोई भी सफल नहीं हो सका। लेकिन 75वें मिनट में हैरी केन ने का गोल किया और 86वें मिनट में शानदार विनिंग गोल करके मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया।
1: हैरी केन, इट्स केन, ओह वाओ, दैट इज सो गुड फ्रॉम हैरी केन, इंग्लैंड देयर इनटू द राउंड ऑफ 16 दे गो।
0: अब 6 जुलाई को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको सिटी स्टेडियम में मैक्सिको के साथ होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो कहा जा सकता है कि फीफा विश्व कप में इस समय फुटबॉल के मैदान रोमांच का टॉप गियर लगा चुके हैं, और अब इसके बाद बात की जाए साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की। इस टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं, जबकि महिला सिंगल्स में आर्यना सबालेंका और कोको गॉफ भी तीसरे दौर में पहुंच गई हैं।
3: 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को सीधे सेटों में हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। जोकोविच ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सित्सिपास को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। जोकोविच को सित्सिपास से पार पाने में सिर्फ 98 मिनट लगे और उन्होंने पूरे मुकाबले में शानदार खेल दिखाया। टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 4 सेट तक मुकाबले में जीत दर्ज करने वाले जोकोविच इस मैच में पूरी तरह शानदार लय में नजर आए। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और सित्सिपास को ज्यादा मौके नहीं दिए। इसी का परिणाम रहा कि जोकोविच ने पहला सेट मात्र 27 मिनट में 6-3 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में सित्सिपास ने वापसी की कोशिश की और जोकोविच को कड़ी चुनौती दी, लेकिन जोकोविच ने धैर्य बनाए रखा और सही समय पर ब्रेक हासिल कर सेट को 6-4 से जीत लिया। तीसरे सेट में जोकोविच पूरी तरह हावी नजर आए और 3-2 की बढ़त के बाद सित्सिपास की सर्विस तोड़ी। लगातार शानदार शॉट्स लगाते हुए उन्होंने सेट को 6-2 से अपने नाम करते हुए शानदार जीत हासिल की। पुरुष वर्ग में नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन इटली के यानिक सिनर ने नूनो बोर्गेस को 7-6, 7-6, 6-4 से हराया। अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो अमेरिका की कोको गॉफ ने सोलोना सियरा को 6-3, 3-6, 7-6 से हराकर महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका ने भी मैकार्टनी केसलर पर 6-1, 7-6 से जीत दर्ज की। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो विंबलडन अपने तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहा है और इसके बाद अब राउंड ऑफ 16 और प्री क्वार्टर फाइनल्स का दौर शुरू होगा। इस पूरे टूर्नामेंट पर ताजा जानकारी लेके हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, बहुत ऐतिहासिक टूर्नामेंट है, बहुत फेरबदल और बहुत चैंपियन बनने देखे हैं हमने इस टूर्नामेंट में। बड़े खिलाड़ियों का सफर अब कहाँ तक पहुँच रहा है
4: ये शक्ति? जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिला और पुरुष सिंगल्स दोनों में ही अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो हैं वो वॉल्टन रॉयर के साथ खेल रहे हैं और 2 सेट जीत चुके हैं। अगर वो ये मुकाबला जीत जाते हैं तो तीसरे राउंड में उनकी जगह बिल्कुल पक्की हो जाएगी। वहीं महिला सिंगल्स में अमांदा अनिसिमोवा जो है वो सोफिया केनिन के साथ खेल रही हैं और उनका जो सेट है वो 1-1 से बराबरी के साथ चल रहा है, तो वहाँ मुकाबला जो है कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है। अगर ज्वेरेव जीत गए तो वो मेदवेदेव, सिनर और जोकोविच के साथ तीसरे राउंड में पहुंच जाएंगे। और वहीं महिला सिंगल्स में इगा स्वाइटेक पहले से ही पहुंच चुकी हैं। एलिना रायबकीना का जो मैच है वो कैटी मैनली से अभी होगा कुछ ही देर में। और इसी के साथ ही नाओमी ओसाका, अरेना सबालिंका, जेसिका पेगुला, कोको गॉफ और इगा स्वाइटेक ये लोग अपनी जगह तीसरे राउंड में बना चुकी हैं।
2: जी बिल्कुल, आपने तमाम दिग्गज खिलाड़ियों की बात की। श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय खिलाड़ी जो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनकी स्थिति इस समय कैसी है?
4: जी, भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ पुरुष डबल्स में अपनी चुनौती पेश कर रहे थे और पहले ही

0: उनमें यूकी भामरी अपने साथी माइकल वीनस के साथ हारकर बाहर हो गए, वहीं अनुरुद्ध चंद्रशेखर भी टकेरा युजुकी के साथ हारकर बाहर हो गए और एन श्रीराम बालाजी को भी हार का सामना करना पड़ा। तो इसी तरह भारत का जो सफर था इस टूर्नामेंट में वो समाप्त हो चुका है।
1: जी, तो कहा जा सकता है कि हालांकि भारत का सफर समाप्त हो गया, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी दर्शकों के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। और अब रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां कल मौसम ने थोड़ा सा खेल बिगाड़ते हुए नजर आया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल बारिश के कारण रद्द हो गया।
2: भारत और इंग्लैंड के बीच T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला बारिश की बेट चढ़ गया और मैच का नतीजा नहीं निकल सका। चेस्टर ले स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड पर भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। संजू सैमसन महज एक रन और ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 6 के स्कोर पर 2 विकेट गिरने के बाद अभिषेक शर्मा ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 गेंदों में 82 रन जुटाकर टीम को संभाला। अभिषेक 24 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान अभिषेक ने सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद कप्तान अय्यर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने तिलक वर्मा के साथ 36 रन और शिवम दुबे के साथ 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। अय्यर 47 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 68 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दुबे ने 21 गेंदों में 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 42 रन की नाबाद पारी खेली। मेजबान टीम के लिए साकिब महमूद ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। आदिल रशीद और सैम करण ने एक एक विकेट निकाला। भारतीय पारी के दौरान बूंदाबांदी होती रही। 20वें ओवर के बाद जब खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे तभी बारिश तेज हो गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के इंतजार के बावजूद लगातार बारिश होती रही। आखिरकार अंपायर्स ने फैसला किया कि मैच दोबारा शुरू नहीं हो सकता और इसे रद्द कर दिया। अब श्रृंखला का दूसरा मुकाबला शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: वहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए भी एक खबर आ रही है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए श्रीलंका जाएगी। ये दोनों मैच मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा होंगे।
3: टेस्ट क्रिकेट को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है, उन्हें भारतीय टीम जल्द ही एक बार फिर सफेद जर्सी में नजर आएगी। भारत श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगा। सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त तक गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त को कोलंबो के सिंगलेस स्पोर्ट्स क्लब में होगा। यह मुकाबले भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। यह सीरीज 2017 में श्रीलंका में 3-0 से शानदार जीत के बाद भारत का पहला टेस्ट दौरा है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अहम पॉइंट्स दांव पर होने के कारण दोनों टीमों की नजर जीत पर रहेगी। फिलहाल भारत पॉइंट्स टेबल में 5वें और श्रीलंका 6ठे स्थान पे है। अगर दोनों टीम के रिकॉर्ड की बात की जाए तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 22 मैच जीते हैं। वहीं श्रीलंका को 7 मुकाबलों में ही जीत हाथ लगी है, जबकि 17 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कह सकते हैं कि टेस्ट प्रेमियों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है कि 2 और मैच उनको देखने को मिलेंगे। और अब सुनते हैं कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबलों का हाल।
4: हाल ही में हुए US ओपन के उपविजेता 33 वर्षीय किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में मलेशिया के ली जिया जिया के खिलाफ 10-11 से पिछड़ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कोच बी साई प्रणीत से चर्चा के बाद मैच से हटने का फैसला किया। महिला सिंगल्स में आकर्षी कश्यप ने फ्रांस की अन्ना तात्रानोवा को 21-14 21-12 से हरा कर दूसरे दौर में प्रवेश किया, जहां उनका सामना अमरीका की चौथी वरीयता प्राप्त बेइवेन झांग से होगा। दूसरी ओर तानिया हेमनाथ ने अमरीका की दिशा गुप्ता को 21-16 21-18 शिकस्त दी और अब उनका मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। भारतीय खिलाड़ियों के लिए कुल मिलाकर दिन निराशाजनक रहा। कल मैदान पर उतरे 9 भारतीय खिलाड़ियों में से 7 पहले ही दौर में बाहर हो गए। 5वीं वरीयता प्राप्त देविका सिहाग चीनी ताइपे की तुंग सियो तोंग से 14-21 15-21 से हार गई। कनाडा की रेचल चान के खिलाफ रक्षिता रामराज ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन 15-21 21-14 15-21 से हार कर बाहर हो गई। इस साल अबू धाबी में अल एन मास्टर सुपर 100 का खिताब जीतने वाली श्रेयांसी वालीशेट्टी को चीनी ताइपे की हुआंग चिंग पी के हाथों 9-21 18-21 से पराजय झेलने पड़ी। अनमोल खरब ने शीर्ष वरीयता प्राप्त मेजबान खिलाड़ी मिशेल ली को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 6-21 26-24 13-21 से मुकाबला गवा बैठी। पुरुष सिंगल्स में सनीत दयानंद और शंकर सुब्रमण्यन भी पहले दौर की बाधा पार नहीं कर सके। सनीत को जापान के तीसरी वरीयता प्राप्त युदाई ओकिमोतो ने 21-7 21-11 से हराया, जबकि

0: शंकर को दक्षिण कोरिया के यू ते बिन ने 19-21, 21-15, 21-15 से मात दी। पुरुष सिंगल्स में भारत की एकमात्र जोड़ी अच्युतादित्य राव और अर्जुन रेड्डी पोचाना भी शुरुआती दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। आज आकर्षी कश्यप का मुकाबला बेवेन झांग से होगा। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कनाडा ओपन से भारत को कोई अच्छी खबर मिलती हुई नजर नहीं आई। इस बीच भारतीय बैडमिंटन संघ बाई ने यह फैसला किया है कि इस महीने से होने वाले सभी घरेलू बैडमिंटन टूर्नामेंट नए नियमों के अंतर्गत होंगे, जिसमें 3 गेम खेले जाएंगे और प्रत्येक गेम यानी सेट 15-15 पॉइंट्स का होगा। अब बात करते हैं स्क्वाश की, जहां वेलवन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफेज को 15-13, 11-4, 11-3 से हराया। वहीं तन्वी ने जापान की जोई फू को 11-6, 11-7, 8-11, 11-6 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और श्रोताओं, आज विश्व खेल पत्रकार दिवस है और ये दिन उन तमाम पत्रकारों को समर्पित है जो अपने अथक प्रयासों से, अपनी मेहनत से खेल के मैदान की तमाम खबरों को हम तक लेकर के आते हैं, श्रोताओं तक लेकर के आते हैं और उनको खेल से जोड़ते हैं। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे इस कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। आप अपने सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
3: प्रधान

0: स्मृति ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों

0: प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड

0: और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान

0: की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defence and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: Briefing media in New Delhi this evening, Foreign Secretary Vikram Misri said that both leaders recognize that this is a relationship of trust and trust.

0: बरसात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, बोल हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए, इनसे मिलिए।

हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

बाबुल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शमशाद बेगम और तलत महमूद की आवाजों में। नौशाद का संगीत था, बोल थे शकील बदायूनी के। अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी की रचना, एसडी बर्मन की धुन है और फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रूपक कही देबे धनीला संदेश, लेखक श्री जीवन यदु, प्रस्तुतकर्ता मोहन सी रामानी।

0: सुना आपने ये गीत, ये छत्तीसगढ़ का सुआ गीत है। कितनी पीड़ा है इस धुन में और गीत के शब्दों में। ऐसा लगता है जैसे ये धुन हृदय की गहराइयों से पीड़ा में डूब के निकल रही हो और शब्दों को आंसुओं में भिगो कर लिखा गया हो। जो गीत हृदय की गहराइयों में अवस्थित हो, उन्हें लिखा ही नहीं जा सकता। वे आप से आप अपनी समस्त अनुभूतियों के साथ होठों से फूट पड़ते हैं। सुआ अर्थात तोता, शुक, सुग्गा। वास्तव में सुआ को माध्यम बनाए जाने की एक लंबी परंपरा है, एक सुदीर्घ परिपाटी है। यही नहीं, पक्षी ही मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम प्रारंभ से बनते आ रहे हैं।
1: जो मनुष्य मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए हैं, वे वाल्मीकि की क्रौंच मिथुन की पीड़ा को कैसे भूल सकते हैं, जिस पर पूरा रामायण महाकाव्य टिका है, और वो भी विश्व का प्रथम काव्य, प्रथम महाकाव्य। जिनके हृदय में आध्यात्म की भावना है, वे कबीर जैसे निर्गुणियों के हंस को कैसे विस्मृत कर सकते हैं, जो प्राण तत्व ही है, और जो प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं। वे उस तोते या सुआ से निकटता का अनुभव करते होंगे जिसने कल्कि पुराण में सिंहल द्वीप की राजकन्या पद्मावती को विष्णु अवतारी कल्कि से मिलवाया था।
2: हे सुग्गे, मैं तुम्हारी चोंच का श्रृंगार अमूल्य पद्मराग मणि से करूंगी, तुम्हारे गले को सूर्यकांत मणि से सजवाऊंगी, तुम्हारे पंखों और संपूर्ण देह को कुमकुम से चित्रित करवा दूंगी, तुम्हारी पूंछ में मणियों की माला पिरो दूंगी, तुम्हारे पैरों को नुपुर से सजवा दूंगी। मगर हे तोते, हे सुग्गे, शर्त ये है कि तू कल्कि को मेरे पास लेकर आ, उन्हें मेरे हृदय की पीड़ा बता।
0: ये थी सिंहल द्वीप।

0: की राजकुमारी पद्मावती, जो एक तोते से विनती कर रही थी, वाहरे तोते, तुम पुराण में भी मौजूद हो, आखिर मनुष्य जाति से तुम्हारी ऐसी निकटता क्यों? रहस्य क्या है तोते? शायद इन प्रश्नों के उत्तर मनुष्य की कोमलतम भावनाएं ही दे सकती हैं।
1: कल की पुराण का वही सुआ पुराण काल की सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ मध्य काल में भी आ पहुंचा। सूफी संत कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में सुआ को पद्मावती और रतन सेन का गुरु ही बना दिया है।
0: चाहे कल की पुराण का शिवदत्त सुआ हो अथवा मध्य काल में पद्मावत का हीरामन सुआ, दोनों ही प्रेमी युगलों की वेदना से द्रवित होते हैं, संदेशवाहक बनते हैं और उन्हें मिलवाने का उपाय करते हैं। लेकिन ये गगनचारी सुआ काल का ही नहीं संस्कृति का भी अतिक्रमण करता है। वो केवल शिष्टों के साहित्य में ही उपस्थित नहीं है, लोक के साहित्य में भी मौजूद है। छत्तीसगढ़ में गाए जाने वाले गाथा गीत कुंवर अछरिया में उसी सुआ को गाथा नायिका सांवर कैना अपने हृदय की पीड़ा बताती है।
2: हे बहन सांवर कैना, पूरे 15 दिन हो गए, ना तो तुम खाती हो ना पीती हो, सिर्फ रोती रहती हो। अपने दुख के कारण को मुझे बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने का उपाय करूंगा। मैं पिंजरे में परतंत्र हूं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा दुख हरूंगा।
3: हे मेरे तोते भाई, मैं तुम्हें कैसे बताऊं अपनी पीड़ा। लोग कहते हैं कि तुम्हारे जीजा कुंवर अछरिया की मृत्यु हो गई है। मैंने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं, किंतु मैंने उनके साथ न सुख जाना न दुख। मेरी इंद्रियां फूट फूट कर रो रही हैं, मेरी आंखें रोती रहने के कारण कमजोर होती जा रही हैं।
2: हे सावर कहना बहन, सुआ को सब स्वार्थी कहते हैं, पर मैं स्वार्थी नहीं हूं। आपके दूध भात का कर्ज चुकाऊंगा। मैं जब तक जीवित हूं तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने जीजा कुंवर अछरिया को मृत्यु के मुख से भी खोज निकालूंगा। तुम मेरे पिंजरे को खोल दो और एक चिट्ठी लिखकर मेरे गले से बांध दो।
0: सुना आपने ये संवाद? मनुष्य और सुआ की निकटता का प्रमाण है ये। किसी पक्षी की ऐसी सुदीर्घ काव्य परंपरा भी हो सकती है। आश्चर्य में डालने वाली बात है, किंतु सत्य है ये परंपरा।
1: छत्तीसगढ़ में नारियों ने हृदय की पीड़ा को मुखर करने का माध्यम सुआ को ही बनाया। ये सुआ कल्कि पुराण का शिवदत्त भी हो सकता है और पद्मावत का हीरामन भी, किंतु सर्वत्र नारी की वेदना है और है वही सुआ। इसी परंपरा में है छत्तीसगढ़ का सुआ गीत, जो पूर्णतः सुआ को ही संबोधित है।

0: जैसे स्वर्ग से निष्कासित यक्ष घन मेघों से अपने हृदय की पीड़ा कहता हुआ पथ में पड़ने वाले स्थानों की पहचान भी बताता चलता है। बिल्कुल यही बात छत्तीसगढ़ के नारी प्रधान सुआ गीतों में भी देखी जाती है। कैसा अद्भुत साम्य है ये। इतना ही नहीं, पूर्वकाल की नायिकाओं की तरह तोते को स्वर्ण के आभूषणों का लोभ भी देती हैं छत्तीसगढ़ की विरहा कुल नारियां।
1: तरी हरी नाना मुर नाना रे सुआ हो, धनी के तें दे दे संदेश। मोती के झालर डेना गोथई हो रे सुआ हो, लाबे तें धनी के संदेश। सोना के थारी मा जेवना जेवई हो रे सुआ हो, पैया टेक सही हो हमेश।
0: वास्तव में सुआ गीत का ये कथ्य नारियों को परंपरा से प्राप्त है। हाँ, सुआ गीत को लेकर दो प्रश्न उठाए जाते हैं। प्रथम प्रश्न है कि नारियों ने सुआ को ही संदेशवाहक क्यों बनाया, और दूसरा प्रश्न है गीत में सुआ को ही संबोधित क्यों किया गया, अन्य पक्षी को क्यों नहीं, जिनके उत्तर कोई नारी ही दे सकती है।
2: वास्तव में ये दोनों प्रश्न अलग अलग नहीं है, अपितु एक ही है और उत्तर भी एक ही है। मनुष्य मात्र की ये प्रकृति है कि वो अपना दुख दर्द अपने जैसे लोगों से ही कहता है। सुआ ऐसा पक्षी है जिसे बालपन से पिंजरे में डाल दिया जाता है, उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। बिल्कुल इसी तरह पुरुष प्रधान समाज में नारियां भी बालपन से वृद्धावस्था तक परतंत्र मानी जाती रही हैं। दोनों अपने अपने पिंजरे को खोलने अथवा तोड़ने में असमर्थ। इसीलिए पिंजरे में कैद सुआ सामाजिक वर्जनाओं से घिरी नारी की संवेदना के अधिक निकट रहा है। यही कारण है कि सुआ संदेशवाहक भी बना और गीत में संबोधित भी हुआ।

ऐसे सुआ गीतों की संख्या अधिक है जिनमें पति द्वारा व्यापार करने के लिए दूरस्थ स्थानों में चले जाने का वर्णन मिलता है। पत्नी विरह भोगती हुई सास और ननद से सताई जाती है। वो अपने मन की बात किससे कहे, वो पड़ोसियों से भी नहीं कह सकती। अगर उस विरहाकुल और पीड़ित नारी की पीड़ा को कोई समझता है तो मात्र वो सुआ, जो उस नारी की तरह पिंजरे में कैद है।

0: सुआ को सुआ गीत कहने की रूढ़ी सी बन गई है, लेकिन सुआ गीत भर नहीं है, वो नृत्य भी है। अतः सुआ को नृत्य गीत कहना उपयुक्त होगा। इस नृत्य गीत से एक धार्मिक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति भी होती है।
1: उस धार्मिक सामाजिक उद्देश्य का संबंध गौरी गौरा पर्व से होता है, जो सुरहोती अर्थात दीपावली के दिन मनाया जाता है।
0: वास्तव में गौरी गौरा पूजन के लिए अर्थव्यवस्था सुआ नृत्य गीत से प्राप्त धन और धान्य से ही होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष से यह नृत्य गीत प्रारंभ होता है और गौरा पूजन तक चलता है। सुआ दल प्रत्येक द्वार पर नृत्य करता है। घर वाले सुआ दल को रुपए और धान्य देते हैं। सुआ दल विदा होते समय सबको सुख समृद्धि का आशीष

0: सुआ नृत्य करने के लिए महिलाएं दल बनाकर घूमती हैं। इनमें से एक महिला अपने सिर पर एक छोटी सी टोकनी रखती है जिसमें अनाज और मिट्टी से बना सुआ रहता है, जिसे कपड़े से घूंघट की तरह ढांक कर रखते हैं।
1: सुआ नृत्य की ये विशेषता है कि थिरकनों में अनुकृति की प्रधानता रहती है। स्त्रियां

दोनों पैरों को गतिवान बनाती हुई धीमी गति से चलती हुई, झुकती हुई, घूमती हुई चलती हैं। दो दलों में विभक्त युवतियां गीत गाती हुई आगे बढ़ती हैं, तो कभी पीछे हटती हैं, कभी अपनी कमर को मोड़कर गोले के रूप में नृत्य करती हैं। इस तरह प्रत्येक दल बारी बारी से सुगना की आराधना में झुकता और घूमता जाता है।

0: अधिकांश सुआ गीत प्रश्नोत्तर शैली में आगे बढ़ते हैं। दुख पीड़ा की लंबाई के अनुसार गीत भी लंबे हो जाते हैं।
1: क्योंकि इस नृत्य गीत में कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती, अतः बालिकाएं नृत्य गीत को देखकर स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षित होती रहती हैं। इन्हीं में कोई लड़की सुक्की भी बनने लगती है, जो सुआ की टोकरी को सिर पर रखकर आगे आगे जाती है। सुआ को सुग्गा भी कहा जाता है। इसी आधार पर टोकरी वाली कन्या अथवा महिला को सुग्गी कहा जाता है।
0: इस नृत्य गीत में दुख आनंद में रूपांतरित होता हुआ दिखाई देता है। शायद इसीलिए स्वर्गीय पंडित रामकृष्ण तिवारी ने सुआ नृत्य को लास्य प्रधान नृत्य कहा है।
1: सुआ नृत्य गीत कला के स्तर पर लास्य है तो कथ्य के स्तर पर वेदना की करुण अभिव्यक्ति। ये सही है कि सुआ गीत में करुणा का स्वर प्रमुख है, तथापि अन्यान्य विषयों को भी इसमें अभिव्यक्ति मिलती है। कहीं प्रकृति प्रेम झलकता है तो कहीं छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति के दर्शन।

0: इस लास्य प्रधान नृत्य गीत की सुमधुर धुन ने आधुनिक रचनाकारों को भी आकर्षित किया है। अनेक कवियों ने स्वगीत की धुन पर गीतों की रचना की है। ये भी एक तरह से स्वगीत की परंपरा का विकास ही है।
1: आज सुआ पकड़ने और बेचने पर शासकीय प्रतिबंध है। पिंजरे रिक्त हैं। सुआ मुक्त पवन में सांसें ले रहा है। इसी तरह नारियां भी पहले की अपेक्षा अधिक मुक्त हैं और सबला भी हुई हैं। अतः कुछ लोग सुआ गीत की प्रासंगिकता पर सवाल भी उठाते हैं।
0: सुआ नृत्य गीत अपनी प्रासंगिकता नहीं खो सकता, क्योंकि इसे संपूर्ण लोक समाज की स्वीकृति प्राप्त है। ये लोक के धर्म से जुड़ा है, ये समाज की सहभागिता से जुड़ा है, ये लोक की करुणा भरी कला का मुखर प्रवक्ता भी है। यही है इस सुआ नृत्य गीत की अजरता, अमरता।

अभी आप सुन रहे थे रूपक कही देबे धनीला संदेश, लेखक श्री जीवन यदु, संगीत संयोजन विदुषी मोक्षदा चंद्राकर, वाचन दीपक हटवार, वंदना अग्रवाल, नाट्यांश के कलाकार योगेश नैयर, प्रीति राजवैद्य, गायन विदुषी ममता चंद्राकर, गरिमा दिवाकर, पुराणिक राम साहू और साथी वाद्य कलाकार टीकम साहू, युगल साहू, प्रस्तुतकर्ता मोहन सी रामानी, आकाशवाणी का

0: फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था।
1: देख चुके हम दिल नजराना दिल का

किशोर कुमार और गीता राय की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जाल का गीत। एसडी बर्मन की धुन थी और साहिर लुधियानवी के बोल थे। मिस्टर एंड मिसेज 55 का गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में, ओपी नैयर का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के बोल।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुनिए साहिर लुधियानवी की शब्द रचना, एस डी बर्मन की धुन है और फिल्म का नाम है प्यासा।

राम और श्याम इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी के बोल और नौशाद का संगीत है।

आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। एक सूचना सुनिए, आगामी शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा धान की उन्नत सीधी बुआई विधि। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजय द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक शस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

इसी गीत के संग चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। रात के 10:30 होने को हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल ओवल लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन? कौन
2: लाया? विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप मुंबई केंद्र से सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को है समाचार, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में

0: श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's